भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है,
जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है, हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है, लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना, ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं, उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय
कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज।

आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारिणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में एक बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नौसिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ना।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भूरी भूरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूँ आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रहीं। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनकी भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका पहुंचे, लंकनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है, राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है, रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषता रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

छोटागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कुटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण छाती देख

तो श्रोताओं, आज हमने बात की माता सीता की और उनके जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त की हमने। सीता की रीति हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं जीवन के मूल्यों में बसता है, और जब ये मूल्य आधुनिक शिक्षा से जोड़ दी जाएं, तो इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित और श्रेष्ठ बनता है। सीता की रीति और आधुनिक शिक्षा का संगम हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जहां ज्ञान के साथ चरित्र और प्रगति के साथ संस्कार भी जुड़े हों। तो सुबह के पहली किरण के साथ मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ था 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और उम्मीद है कि आज के दिन आपने माता सीता से बहुत कुछ सीखा होगा जो आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं और अपने जीवन को बखूबी बहुत सरल और सहज बनाने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी दुआओं के साथ और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। राधे राधे, जय जिने।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: Oh, I hate making love songs.
1: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: ए झब्बू, तुमने होमवर्क का ही नहीं किया है?
1: मास्टर जी, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वैसे ही लाइट चली गई।
0: अरे तो लाइट आने के बाद कर लेते हैं।
1: बाद में मैं इस डर से नहीं पढ़ने बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट ना चली जाए।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: हेलो,
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: अरे तुम्हें वो जोली शॉप याद है ना, जहाँ तुम्हें एक बार मैं लेकर गया था?
1: कौन सी?
2: अरे जहाँ तुमने वो हीरे का हार पसंद किया था।
1: हाँ, याद है।
2: लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे।
1: हाँ।
2: और मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हें ये हार जरूर दिलवा दूंगा।
1: काश आदमी कुछ और मांग लेती। जी हाँ, याद है।
2: मैं बस उसी के सामने वाले सलून में बाल कटवा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा।

0: फिलहाल सुबह सुबह रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद ही अपने हिस्से का रो लिया है। अरे भाई बारिश हो चुकी है, और जब बारिश हो जाती है तो आपको पता है ना कि शहर किस तरह से चमकने लगता है। ऑब्वियसली, और इसी तरह का रोमांटिक सा मौसम फिलहाल हो रखा है गुंडाम में। सो इस रोमांटिक मॉर्निंग की विशेज आपको रोमांटिकली अंदाज तक पहुंच जाए आप तक होते हुए, ऐसी हम जरूर कामना करते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो फाइनली जिस बरसात की बात आप जिस सीजन की सोच रहे थे मनी मन की भाई कब आएगी आ ही गई। और देखिए ना किस तरह से आन मिली कि अब जो है ऐसी बारिश हमारे इर्द गिर्द बहुत आपस से रहती है। फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं और आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, बताते हैं कि आज का क्या है थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है कि ये प्रतीक्षाएं ही रहीं जिन्होंने मुझे सब्र करना सिखाया। ये प्रतीक्षाएं ही रहीं जिन्होंने मुझे सब्र करना सिखाया। मेरी सभी प्रतीक्षाओं ने मुझे दुनिया के सबसे सुंदर उपहार दिए हैं और तुम उनमें से एक हो। मैंने कहा था ना कि आज की ये विशेष जो है वो बड़े ही रोमांटिकली अंदाज में होनी चाहिए। तो देखिए आज का थॉट ही कह रहा है, बड़ा खूबसूरत सा थॉट है। थॉट कह रहा है कि ये प्रतीक्षाएं यानी ये जो इंतजार है, ये जो प्रतीक्षाएं रही जिन्होंने मुझे सब्र करना सिखाया, मेरी सभी प्रतीक्षाओं ने मुझे दुनिया के सबसे सुंदर उपहार दिए हैं। यानी जब जब हमने इंतजार किया है, जब जब सब्र के साथ काम लिया है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मुझे मिली है और तुम उनमें से एक हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और ये बात सच है, लाइफ में अगर देखें तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है। ऐसा होता ही होता है कि जब हम सब्र के बाद कोई चीज़ हमको मिलती है एक तय वक्त के बाद, तो फिर वहाँ पर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बड़ी ही खूबसूरती नज़र आती है। और ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे बड़ा ही प्यारा है। और याद करिए ना अपनी हर उस खूबसूरत चीज़ को जो अभी तक आप जिसको खूबसूरत मानते चले आए हैं, और अगर आप उनके पाने का प्रोसेस पे जाएंगे यानी किस तरह से वो आप तक पहुंचा, तो आप यही पाने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। सो आप यही पाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ों का मिलना है ये अपने आप में बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसीलिए शायद ये सब्र की इतनी इंतहा बताते हैं। हालांकि सब्र का मतलब ये नहीं होता है कि हर तरह से छोड़ दिया जाए। सब्र का मतलब बस इतना ही होता है कि जो कुछ भी है यानी जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम जान रहे हैं, उसको करते रहें। उसको करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए ना, जिस दिन सब्र का सही मतलब जानते हैं और सब्र कर लेते हैं, उस दिन के बाद से जो चीज़ें मिलती हैं वो दुनिया में आपके लिए सबसे खूबसूरत होती हैं। और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे अगर गहराई से समझेंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपका क्या है मानना, चलिए आप माने या जाने, लेकिन फिलहाल वक्त है दो कप कॉफ़ी का साथ पीने का। तो ये कैसे पॉसिबल होने वाला है? हम स्टूडियो में, आप घर में कॉफ़ी कैसे पी सकते हैं साथ में? कोई बात नहीं, हमारे पास सारे जुगाड़ हैं। डोंट वरी, जस्ट लिसन दिस सॉन्ग ब्यूटीफुल वाला एंड एन्जॉय योर कॉफ़ी विद मी।

0: सो देखिए ना, मैंने कहा था ना कि भाई जुगाड़ मेरे पास है, और देखिए फाइनली हमने कॉफ़ी को एंजॉय किया है, वो भी एक साथ। सबसे बड़ी बात ये है, सो थैंक्स टू यू यार कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे हम कभी भी कॉफ़ी पीने का अगर मन हुआ करेगा तो आपसे कह दिया करेंगे, आप थोड़ा सा बस ऐसे वक्त निकाल लिया करिएगा। 3 से 4 मिनट के अंदर देखिए हमारी कॉफ़ी भी मुकम्मल हो ही गई। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सो चलिए इन्हीं सारी बातचीत के बीच में आज का थॉट ऑफ द डे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था, आपने सुना, उसको एंजॉय किया है। अब देखते हैं कि उस थॉट के बाद आपका रिएक्शन क्या है, किन लोगों की विशेज आ चुकी है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, ऑफ कोर्स कौन लोग जाग चुके हैं और जागने के बाद आ गए हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन के चैट पर। सो चले ऑफ कोर्स बिना देरी के चलते हैं सीधे चैट बॉक्स की तरफ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

तो जाहिर है अब आप भी जानना चाहेंगे किन किन लोगों ने विशेज भेजी है मॉर्निंग शो में चैट पर आ करके। तो बता दे भाई, सबसे पहले जो आई है वो प्रीति जी की आई है, बहराइच से लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। महेंद्र देपन है राजस्थाना, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। कमल नयन जी भी हमारे साथ में हैं और वो काफ़ी झूमते नज़र आ रहे हैं, साथ ही गीता श्रीवास्तव जी भी हमारी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं आज के सॉन्ग्स। और आपने भी लिखा है गुड मॉर्निंग डियर राजेश सर, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपने साथ ही बताया सॉन्ग्स भी बहुत रोमांटिक प्ले हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड हमारी प्रीति जी ने भी रिएक्शन दे दिया है, क्या लिखा है कि प्यारा थॉट, सब्र के बाद यदि परिणाम अच्छा मिले तो अनेकों बार सब्र करना कुर्बान है, बट सब्र का इंतहा अच्छा नहीं होता किसी भी सूरत में। हाँ ऑफकोर्स, सब्र का कोई इंतहा लेता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर इतना सब्र हमेशा ज़रूर रहना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको सब्र दिखाना है और कहाँ पे हमको अब सीधे वहाँ से चले जाना है, राइट। सो भाई इसके बाद जो है हमारी आशु जी ने भी लखनऊ से भेजा है मैसेज, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं और एक कप चाय के लिए बहुत शुक्रिया। गीता जी हमारी लिखती हैं गोंडा से, आज का थॉट सच में बहुत प्यारा है, सब्र का फल मीठा ही नहीं बहुत मीठा होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, जो किस्मत में वो एक दिन ज़रूर मिलकर रहेगा, बस हमें हिम्मत और सब्र बनाए रखना है, थैंक यू सो मच। किस्मत से याद आया, कल हमने जो शो किया था नाइट शो वो सब्र था ना, सब्र के साथ सुना था और उसका उन्वान था नसीब, किस्मत शायद आपने सुना हो। एंड इसके साथ ही आप हमको फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, जिसके जरिए आप सीधे जुड़ जाते हैं अपने फेवरेट आरजेस से गोंडा एफएम पर, उनके शोज में जो कुछ लिखते हैं वो सीधे लाइव पहुंच जाता है, सो थैंक्स टू एवरीवन। और साथ ही कॉफी एंजॉय करने के लिए एक बार वापस से शुक्रिया। अब चूंकि आज जो है डे वो सैटरडे है और सैटरडे को एक टास्क मैं दे रहा हूं आपसे, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही मस्त सा है, या यूं कहे कि बड़ा ही दिलकश सा थॉट है ये जो मेरे मन में आया है कि आपको ये टास्क दिया जाए। सो टास्क क्या है, अब इस गाने में आप जो सुनने वाले हैं एक कोई वर्ड पकड़ लीजिए और ख़ुद को आज बोलिए, बस सैटरडे इसलिए कह रहा हूँ, कौन सा वर्ड पकड़ते हैं और कौन सा खुद के लिए बोलते हैं ज़रा कमेंट करके बताइए,

0: सो भाई कोई वर्ड आपने चूज किया इस गाने से अपने लिए? आई थिंक कि आपको आपको मिल गया होगा आपका अपना वर्ड. क्यों? क्योंकि मुझे भी मिल गया है जो मुझे सैटरडे में बोलना था और इस गाने में कई बार उसको यूज किया गया है. आपने अंदाजा लगा लिया ऑफ कोर्स. और इसी के साथ फिलहाल अक्षय भी आ गए हैं. लिखा है गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग टू यू अक्षय. आपका भी वेलकम करते हैं रोमांटिक सी मॉर्निंग में. और आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो आरजे अदनान लेकर चले आए हैं. और न सिर्फ लेकर आए हैं बल्कि आज तो बहुत सारी बातें आपसे बतियाने के लिए है और सैटरडे को मिल करके एंजॉय करने के लिए. फिलहाल आप पराठों की खुशबू के बीच हैं आज और बोल दीजिएगा मम्मी को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि भाई ऐसे वक्त में ऐसा कुछ मिल जाना बड़े किस्मत की सच में बात होती है. गीता जी ने बोल भी दिया है. ऑलराइट, दैट्स वेरी स्वीट. क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सो भाई आप लोग भी अपने को बोल सकते हैं जो भी आप खुद को बोलना चाहते हैं. और जो भी आपने गाना जस्ट सुना उसमें का कोई एक वर्ड मैंने कहा था कि आप खुद को भी डेडिकेट कर सकते हैं. फिलहाल आपने अपने हस्बैंड को किया, दैट्स वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच टू यू.
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम. अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग. तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए. अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM. और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM. अब गुना सुनेगा अपना FM.
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी.
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग. कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे.
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन.
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए. पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा.

0: हाँ भाई, सजनावे सजनावे। और देखिए ना, इतना वक्त होते होते आखिर वापस से आ गए हैं। और आने के साथ ही साथ, चूंकि अब आपको पता है कि भाई अगर गोंडा की अपडेट आप तक ना पहुंचाई जाए तो दिन थोड़ा सा अधूरा सा लगता। खैर कोई बात नहीं, आज हम ये रहने नहीं देंगे क्योंकि आज है सैटरडे और आपको बताना है कि क्या कुछ हो रहा है गोंडा में। आइए ले चलते हैं आपको आपकी सिटी अपडेट की तरफ, ओनली ऑन गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बता दें कि किस तरह से अपडेट आई हुई है। सबसे पहले तो देखिए, बारिश लगातार हो रही है, इसलिए पानी के बढ़ने की बातें ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सरयू में 66,860 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि तटबंध को बचाने में बाढ़खंड जो है वो जुटे हुए हैं। किसानों की ज़मीन लगातार नदी में कटान होकर समाती जा रही है। फिलहाल बारिश और बैराजों से जो छोड़े जा रहे हज़ारों क्यूसेक पानी से सरजू नदी उफान पर आ गई है, और सरजू नदी का जो जलस्तर है वो एल्गिन ब्रिज पर मामूली घटा है, लेकिन कटान ने तटवर्ती गांव में जो है फिक्र वो बढ़ा दी है। हालांकि अभी नदी किसानों की उपजाऊ ज़मीन को लील रही है, जिससे तटबंध को कोई ख़तरा नहीं है, और बाढ़खंड का दावा है कि फिलहाल तटबंध सुरक्षित है। इसके अलावा आपको बता दें कि शहर के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 11 और विज्ञान वर्ग में दाखिले के लिए जो है वो कल शुक्रवार को एंट्रेंस की एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। 152 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है। सो जीव विज्ञान वर्ग के लिए 87 और साइंस में अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसके लिए 65 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। और इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुवल के पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी विषयों से जुड़े सवाल भी पूछे गए। सो परीक्षा परिणाम से मेरिट के आधार पर अब इसमें एंट्रेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको बताते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो है कि भाई बाढ़ की सुरक्षा से ही जुड़े कामों की ढिलाई पर जो है प्रमुख सचिव भी आई थी, और उन्होंने काफ़ी बिफरी भी उस पर, यानी काफ़ी ज़्यादा आदेश दिया है उसको बेहतर करने का। प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू ने जो है बाढ़ की मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा जो संवेदनशील प्रदेश के 18 ज़िले हैं वहाँ राहत बचाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए तटबंधों पर चल रहे कामों की धीमी जो प्रगति है उस पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि 70% काम ही पूरे हुए हैं, जबकि बाढ़ का खतरा सामने है। उन्होंने बैठक में मौजूद अफसरों को एक हफ्ते के अंदर सभी काम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। चूँकि कल शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू की अध्यक्षता और राहत आयुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोदा की मौजूदगी में देवपाटन, अयोध्या, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के 18 बाढ़ संभावित ज़िलों में बाढ़ से पहले की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश के 44 ज़िले और 118 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें 18 ज़िले अति संवेदनशील हैं। कहा कि अगले 3 दिनों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उन्होंने चेताया कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही ना की जाए। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं, और भाई लगातार एक और प्रॉब्लम जो है वो देखी जा रही है मिलावटी पेट्रोल को लेकर के, जिसके आरोप में 4 नोज़ल जो है वो सीज़ किए गए हैं और लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बेस पर ही होगी कार्रवाई। जी हाँ, अभी फ़िलहाल लखनऊ रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पम्प पर मिलावटी पेट्रोल मिलने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, और वीडियो के आधार में प्रशासन ने जांच भी शुरू की है। पूर्ति विभाग की टीम ने कहीं ना कहीं बृहस्पतिवार को ही पहुंच करके पंप पर 4 नोज़ल सीज करके पेट्रोल के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ वाहन चालकों ने पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल और पानी की मिलावट का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, जिससे जिला प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। पेट्रोलियम नोडल अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा गया था। फिलहाल अभी 4 नोज़ल सीज़ किए गए हैं और साथ ही साथ नमूने को प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, तीसरी लाइन को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, गोंडा बुढ़वल रेलखंड पर गोंडा जंक्शन से गोंडा कचहरी के बीच 4.89 किलोमीटर लंबी जो तीसरी विद्युत रेल लाइन है, उसका कल यानी शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त CRS प्रणजीव सक्सेना ने निरीक्षण किया, जो कि हमने कल आपको बताया भी था कि कल होने वाला है। कल वो निरीक्षण हो चुका है, और निरीक्षण के जो अंतिम चरण है उसमें CRS स्पेशल ट्रेन का 71 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा अनुमेय गति से सफल स्पीड ट्रायल किया गया है।
सुनिरीक्षण सफल रहने के बाद नई लाइन के संचालन की मंजूरी मिलने की लगातार उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीआरएस ने गोंडा कचहरी स्टेशन से निरीक्षण शुरू करके स्टेशन यार्ड पॉइंट क्रॉसिंग संख्या 226A और इसकी तकनीकी जांच भी की, जिसके बाद मोटर ट्रॉली से गोंडा कचहरी से गोंडा जंक्शन तक पूरे रेल खंड का निरीक्षण किया और इस दौरान पुल संख्या 354 और 362, लिमिटेड हाइट सबवे और संपार फाटक संख्या 261 एक ही सुरक्षा व्यवस्था भी परखी। सो गेट मेन से जो जुड़ी सुरक्षा प्रक्रिया है उसकी जानकारी लेकर के कार्यकुशलता का परीक्षण भी किया है। इसके अलावा गोंडा जंक्शन पर सीआरएस ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, सेंट्रल रिले रूम, बैटरी रूम, स्टेशन यार्ड सिग्नल और दूर संचार व्यवस्था, बिजली आपूर्ति का जो सिस्टम है पूरा इसका निरीक्षण किया। इसके बाद तीसरी लाइन पर स्पीड ट्रायल करके ट्रैक ओवरहेड उपकरण जो होते हैं और उन सभी संरक्षा मानकों की जाँच की है। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचा देनी होगी, क्योंकि गूगल मैप के भरोसे पानी में फंस गई थी कार, पुलिस ने चालक को बचाया है। सो ये गूगल मैप जो है, कई बार ऐसी खबरें आई हैं, इससे पहले फ्लाईओवर से भी गिरकर कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी गूगल मैप के सहारे चल करके। सो आपको बता दें कि फ़िलहाल ये विश्नोहरपुर का मामला है और गूगल मैप के भरोसे शॉर्टकट लेना एक कार चालक के लिए काफ़ी जानलेवा साबित होते होते बस बच गया, चूँकि ढेमुआ मार्ग पर जलभराव और पीपा पुल हटने से के बाद कई बार पड़े रास्ते पर कल के से पहले यानी बृहस्पतिवार की रात कार गहरे पानी में फंस गई थी। सो चालक ने चिल्लाया चीख पुकार सुनकर के जो वहां गश्त कर रही पुलिस है और ग्रामीण है, उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सो घटना ने बंद मार्ग पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेटिंग नहीं होने की गंभीर लापरवाही भी उजागर कर दी है। फिलहाल उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के जो 28 निवासी हैं, उन्होंने बताया कि वो बृहस्पतिवार कानपुर से बैठक करके घर लौट रहे थे। शॉर्टकट के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया और सुहावल से ढेमुआ मार्ग पर पहुंच गया। ढेमुआ पुल पार कर दत्तनगर की तरफ मुड़ते ही उनकी कार गहरे पानी में चली गई। सो खतरा महसूस होने पर उन्होंने कार का शीशा खोल करके मदद के लिए आवाज़ लगाई। इसी दौरान गश्त पर निकले ढेमुआ चौकी जो प्रभारी हैं, उन्होंने आवाज़ सुन ली और साथी पुलिसकर्मियों के साथ पानी में उतर करके मौके पर पहुंच गया। सो ग्रामीणों की मदद से जो है उनको बाहर निकाला गया। इसके बाद कार को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। सो चौकी प्रभारी ने भी बताया, कुछ देर बाद गूगल मैप के सहारे दो और वाहन भी उसी रास्ते पर पहुंच गए थे, जिन्हें वक्त रहते वापस कर दिया गया। सो देखिए, ये इसलिए हम आपसे बता रहे हैं क्योंकि ये गूगल मैप आप भी यूज़ करते हैं, मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके सहारे अगर हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं और कहीं हम उस पर डिपेंडेंट हैं, तो ये जानलेवा भी साबित ऑफकोर्स हुआ है कई लोगों के लिए, बट हमको रात में स्पेशली सतर्क रहना होता है। सो कुछ अगर सावधानियों का आप रखेंगे ख्याल तो बेहतरी इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या क्या इसका ख्याल रखना है? सो पहले तो आपको रूट को अच्छे से स्टडी कर लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो पहले पूरे रास्ते का रिव्यू ले लें, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ मिलेगा, क्या सब कुछ सही है कि नहीं। दूसरा है कि सड़क की सिचुएशन भी देखना है। सो गूगल मैप जो है वक्त बचाने के लिए अक्सर खेतों, गांव, कच्चे रास्तों और फास्टेस्ट रूट दिखाता है। सो अनजान इलाकों में हमेशा जो है मेन हाईवे या चौड़ी सड़कों पर ही आपको चलना रहे। जब आप अनजान जगह हो तो आप प्लीज़ हाईवे ही लिए, भले ही कई किलोमीटर लंबा पड़ जाए, लेकिन अंदर जाने पर आप मसला आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा आपको अपडेटेड रखना है अपना ऐप। सो गूगल मैप को हमेशा जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसको अपडेट रखें, ताकि नए फ्लाईओवर्स और रास्ते उसमें जो अपडेट किए जाते हैं वो ऐड हो जाएं। फ्लाईओवर और अंडरपास, सो बड़े शहरों में सिर्फ मैप पर ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, देखना है आपको कि ऊपर जाना है या नीचे सर्विस रोड पर, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, सर्विस रोड से जाना होता है या ऊपर से। इसके अलावा सब्र के साथ आपको चलना होता है। अगर आप मैप पर रास्ता खुला आपको दिख रहा है लेकिन सामने बैरिकेटिंग या टूटा पुल है, तो मैप की बात नहीं मानना है, क्योंकि मैप पे सारी चीज़ें नहीं अपडेटेड हो पाती हैं, वो स्थानीय ही घटनाएं होती हैं कि अचानक से कुछ हुआ तो रोक दिया गया या भी ऐसा है, बट गूगल को सारी चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए वो अपने हिसाब से दिखाता है, बट आपको उसके हिसाब वाले पे नहीं चलना है। इसके अलावा अंधेरे में आपको बहुत ख़ास मोहतात रहना होगा, क्योंकि रात के वक्त मैप के बताए शॉर्टकट या संकरी गलियों में जाने से आपको पूरी तरह बचना है, आपको मेन रास्ता ही लेना है जैसा कि हमने बताया आपको। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं अगली अपडेट क्या है। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो किसान मेला को लेकर के आ रही है। आज सुबह 10 बजे से गन्ना विकास समिति मनकापुरा गौरा चौकी पर किसान मेले का आयोजन किए जाने की बात है। इसके अलावा ITI चलो अभियान भी चलाया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शहर के राजकीय ITI से ITI चलो अभियान कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बस अब किया जाएगा कुछ ही देर बाद। और इसके साथ ही साथ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की लॉ डिग्री को मिल गई है BCI की मान्यता। जी हाँ, सो आपको बता दें कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की विधि उपाधि से बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI से मान्यता मिल गई है। BCI की विधि शिक्षा स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण करके वहाँ अवेलेबल जो अभिलेख हैं उनका परीक्षण करने के बाद ये स्वीकृति प्रदान की है। और अधिवक्ता अधिनियम और विधि शिक्षा नियम के प्रावधानों के तहत दी गई ये मान्यता विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। सो विश्वविद्यालय को BCI के सभी मानकों और शर्तों का पालन करना होगा। BCI ने 6 महीने के अंदर ज़रूरी शपथ पत्र और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं परिषद को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। चूँकि निर्धारित अवधि में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय नियमित रूप से विधि पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकेगा। सो विश्वविद्यालय को ये मान्यता मिलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख अब नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय लेवल पर ही गुणवत्तापूर्ण जो विधि शिक्षा है वो उपलब्ध होने से वक्त और खर्चा दोनों की बचत होगी। सो जिले में युवाओं के लिए अधिवक्ता और न्यायिक सेवाओं सहित जो अन्य विधिक क्षेत्र हैं उसमें करियर बनाने के नए अवसर मिलने की बात समझ में आ रही है। इसके अलावा माँ पाटेश्वरी के जो कुलपति हैं उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के विधि उपाधि से BCI की मान्यता मिलना पूरे देवी पाटन मंडल के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें अब बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा समेत आसपास के ज़िलों के विद्यार्थियों को बेहतर विधि शिक्षा का लाभ मिलेगा ज़रूर। सो ये फिलहाल अगली अपडेट थी। इसके बाद अगर बताएँ तो रोपाई के बीच में खाद के लिए जो है वो किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। सो ज़िले में 2 दिन की अच्छी बारिश के बाद धान की रोपाई ने चुकी रफ्तार पकड़ ली। इसके साथ ही यूरिया और DAP की मांग भी अचानक बढ़ गई है। तो कल शुक्रवार को कई सारे साधन सहकारी समितियों पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। कहीं सर्वर और कहीं टेक्निकल खराबी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रफ्तार को रोक दिया, तो किसानों को घंटों इंतज़ार भी करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। आई होप कि ये सारी अपडेट्स आप तक पहुंच गई है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप तक भी ये बातें पहुंचने के बाद कुछ बातें आपके भी काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूर रही होंगी। सो फिलहाल चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और आपको हमने अपडेट्स दे दी है गोंडा की यानी सिटी की अपडेट, एंड आई होप कि आप तक ज़रूर काफ़ी कुछ पहुँच चुका है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली। बने रहिए क्योंकि हम वापस से आने के बाद बताने वाले बहुत सारी बातें। आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अतार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां, यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं, दूषित भोजन और पानी से बचें, कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं, छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें, पानी को गर्म करके पिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आओ आओ आओ, मैं कू आओ, कैसे हो?
1: अरे डॉक्टर साहब, बहुत भयानक बीमारी हो गई, हमका कौनो इलाज बताए दो बस।
0: अरे हुआ क्या भाई?
1: अरे बहुत बहुत भयानक सपना आवत है, बहुत बहुत भयानक सपना। एक बारी मैंने सपने में देखा कि मैं बैल बन गया हूँ।
0: अच्छा,
1: अब वहाँ वो बैल में या वो घास चल रहा हूँ, बहुत भयानक सपना आवत है।
0: तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो जो ख्वाब है वो तो ख्वाब आखिर ख्वाब होते हैं, और उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।
1: अरे कैसे परेशानी नहीं, सवेरे उठ के ने देखे तो अपनी चटाई आदि चबाई गए, तुमको परेशानी नहीं।

आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौकार चेयरमैन। इस वक्त 10:04 हो गया आपके 89.6 एफएम के स्टूडियो में और आप बने रहिए। वापस से लौटते हैं, बहुत सारी बातें लेकर आए हैं आपके लिए आपके मॉर्निंग शो में। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, क्या बात है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो यस, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं भाई, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन जब कुछ मिल जाता है ख़ास तो हो जाता है और भी अलग अंदाज। सो देखिए, बहुत कुछ तो है जो हम आपसे साझा करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या किन चीज़ों से हम साइबर फ्रॉड से बच जाते हैं, कैसे हम घर में कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, करियर को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारी बात होती है। फ़िलहाल अभी चूँकि बारिश लगातार हो रही है, सो बारिश में चूँकि कुछ बीमारी ऐसी है जिनसे ख़तरा बढ़ जाता है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बारिश के आने से ही अटैक करती हैं ज़्यादा, सो कैसे ख़ुद को बचा कर रखना है और कौन कौन सी वो बीमारियां हैं, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बीमारी है और किस तरह से उनसे बचना है ज़रूरी।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए भाई कौन कौन सी है। आप ये तो जानते हैं कि बारिश के आते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। अब इससे क्या होता है, डेंगी। डेंगी का आप नाम जानते हैं बहुत अच्छे से, जिसको आप डेंगू भी बोलते हैं। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया आपको भी पता है कि भाई ये भी मच्छरों से ही फैलने वाला है। इसके अलावा चिकनगुनिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पेट का इन्फेक्शन, सर्दी, ज़ुकाम और फ्लू, ये सब जो है बारिश में ख़ास तौर पर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बारिश आते ही, बरसात आते ही हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। और अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उससे लड़ने में सक्षम रहता है, और ज़रा सा भी वीक पड़ने पर ऑफकोर्स हमलावर हावी हो जाते हैं। सो क्या करना है? हाँ, कुछ ऐसी कॉमन सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी, अगर इनका ख्याल रख लिया तो बरसात में हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं इन बीमारियों से। कैसे? तो सबसे पहले भाई ये ज़रूर अपने आसपास आप देख ले कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा कबाड़, कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसा गड्ढा तो नहीं जहां बारिश का पानी जमा होता जा रहा है और उससे गंदगी हो रही है, छत पर, कहीं आपकी बालकनी पर, कहीं छज्जे पर, क्योंकि ये बड़ा मसला है। अगर मान लीजिए, मैंने ये भी देखा है कई लोगों के यहाँ बहुत पुराने छज्जे होते हैं जिसमें जो ड्रेन पाइप होता है वो भट जाता है, जिससे कि वो रास्ता बंद हो जाता है और पानी जब बारिश होती तो वहीं भर जाता है। तो ऐसे जगहों पे या ऐसे गड्ढों में या ऐसा कोई बर्तन पड़ा हो जिसमें पानी भर रहा हो, उसको तुरंत साफ़ कर दे, इसको जमा ना होने दें। दूसरा क्या है, साफ़ और उबला ही पानी पिए। जी हाँ, ये बरसात तक का थोड़ा सा ज़्यादा इसको ख्याल रखना होता है। अगर आप उबला हुआ पानी एक बार ज़्यादा से उबाल दें, उसके बाद आराम से पीते रहें और साफ़ पानी पिए, तो ये जो इन्फेक्शन वाली बात है ये होने का ख़तरा काफ़ी कम हो जाता है। एक जो गलती हम करते हैं वो होता है बासी खाना खाना। सो ताज़ा और हेल्दी ये फूड ज़रूर खाना होता है, जो ताज़ा हो, फ्रेश हो और हेल्दी हो, तला भुना नहीं, मतलब हेल्दी हो। राइट, हेल्दी से आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा मच्छरों से बचाव करना होता है। मच्छरों से बचाव कैसे होता है कि मच्छरों को एप्लीकेशन दे के मना कर दे, भैया हमारे यहाँ मत आओ, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। सो मच्छरों से बचाव होता है पूरी बाह का कपड़ा पहनना, सोने से पहले मच्छरदानी या आप जो भी जुगाड़ ऐसा करते हैं जो आपको हार्म पहुँचाए बिना मच्छरों को भगाता है। और जैसा कि बताया था कि भाई दरवाज़ों पर बाहर जाली लगवा सकते हैं जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके, इन सब बातों का ध्यान रखना। इसके अलावा हाथों को साफ करना हमारे लिए बड़ा कॉमन सा होता है। अरे साफ तो किया था कुछ देर पहले, अभी कोई ऐसी जगह छुआ नहीं, गए नहीं, नहीं। इधर बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा हैंड वॉश बार बार करने पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ही फैल जाती हैं प्रॉब्लम्स, इससे ही बढ़ जाती हैं दिक्कतें, इसलिए हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। कैसे? जैसा आपने बढ़ाया था कोविड के टाइम पर, सो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भी इस्तेमाल आप काफ़ी करिए और हेल्दी खाइए, खुद ब खुद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर ना करें। अगर कोई भी ऐसा फ्लू है, कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है, तो मे बी जैसा कि हमने कहा था, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और पेट का जो है इन्फेक्शन, सर्दी, ज़ुकाम या फ्लू, इनमें से कुछ हो सकता है, तो इससे आप खुद को बचा सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बीमारियां हैं ये स्पेशली इसी में आती है, यानी बारिश और बरसात के ही दौरान नज़र आती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड आई होप कि आपको अब तरीके पता चल गए हैं और आप भी इस पे अमल करते हुए अपने और अपनों की फैमिली सबको सुरक्षित रखने वाले हैं।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आइला कुछ पता चला कि भैया स्पाइडरमैन के रंग में रंग गई है अपनी माया नगरी मुंबई? ये जानकारी आपको मिली या नहीं मिली? अरे आपको नहीं मिली, चलिए कोई बात नहीं, हम बताने वाले हैं कि आखिर क्यों स्पाइडरमैन के रंग में रंग गई है मुंबई, आम ची मुंबई। सो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुई कि मुंबई रंग गई? चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस सॉन्ग को एंजॉय करिए, वापस से आएंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में। आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो विद योर मॉर्निंग जॉकर जे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो बड़ी खबर है भाई कि आखिर क्यों मुंबई स्पाइडरमैन के रंग में रंग गई है। सवाल तो ये होता है, लेकिन फिर जवाब आखिर है किसके पास? क्या है कोई जो बता सके इस सवाल का जवाब?
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, सवाल बड़ा ही पेचीदा कि आखिर स्पाइडरमैन के रंग में क्यों रंगी हुई है मुंबई। सो इसका जवाब मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आखिर क्यों रंगी हुई है मुंबई। तो देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि स्पाइडरमैन के रंगों में इसलिए रंगी है मुंबई क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज से पहले मुंबई में टॉम हॉलैंड का अनोखा अंदाज में वेलकम किया गया है और शहर भर में लगे क्रिएटिव होर्डिंग्स ने फैन का उत्साह और भी बढ़ा दिया है। सो सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है और अब दर्शकों को फिल्म रिलीज होने का इंतज़ार जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बेसब्री से हो गया है। जी हाँ, सो भाई स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन ये सब आपने देखा है, ये हमने भी देखा है और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है इन मूवीज़ को देखने का। बचपन में तो खैर एकदम दीवानगी रहती थी, आज भी कहीं ना कहीं बचपना ही याद करने के लिए जाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। बट जब बात आती है स्पाइडरमैन की, सो एक ऐसा हीरो जो घर में रही मकड़ी से हम लोग डरने वाले इंसान मकड़े मैन को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं कि ज्यों से करता है मकड़ा निकल के जाता है जाल और सट से पहुँच जाता है। सो इस तरह से हमेशा एक सुपर पावर न जाने कितनी बार देखने के बाद हमने भी हाथ ऊपर किया कि शायद कोई जालल निकले अंदर से, लेकिन इतने कम बजट में कहाँ कुछ निकल सकता भाई साहब। सो फिर हुआ क्या कि मुझे लगा कि मूवीज़ देखना ज़्यादा बेस्ट है, मूवी तो खैर बहुत अच्छा रहता है। सो फिलहाल मुंबई इसीलिए रंगी हुई है क्योंकि हमने आपको बताया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज़ होने वाली है और इस रिलीज़ से पहले जो पूरी मुंबई है माया नगरी वो इंतज़ार कर रही है इस मूवी का, क्योंकि जैसे ही ये मूवी आएगी बहुत

ये जाल कहां कहां तक पहुंचने वाले हैं, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं और साथ ही साथ फील भी करने वाले हैं। सो ये सब कुछ चलता रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन मूवी जब तक हमें लगेगा नहीं कि भाई इसमें कोई बात है या ये मूवी जो है कुछ अलग नहीं है, तब तक मज़ा कहाँ आता है। तो सुपर अगर पावर्स हमको देखनी होती है तो ऐसी ही मूवीज़ की तरफ हम जाते हैं। फिलहाल क्या आपको भी इस मूवी का इंतज़ार है जिसका नाम हमने बताया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे? अगर है तो आप भी कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं और साथ ही साथ जब मूवी रिलीज़ होगी तो उसके बाद तो हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मूवी में था क्या। लेकिन उससे पहले अपने इंडिया में ही बनी हुई रावण का गाना सुनते हैं क्योंकि फिलहाल स्पाइडरमैन का गाना आपको समझ में नहीं आएगा ना मुझे समझ में आएगा, तो बेहतर है कि अपने इंडियन मूवी का ही गाना सुना जाए और फील लिया जाए स्पाइडरमैन वाला। कैसा लगा मेरा आइडिया?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भाई सभी के लिए अपडेट्स होती है, लेकिन ख़ास करके जो हमारे ग्रामीण एरिया से सुन रहे हैं, अब ये अपडेट उनके लिए है, यानी हमारे किसान भाइयों के लिए है। क्या है अपडेट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि किस तरह से वो फसल बीमा करा सकते हैं और जिसका वक्त है 31 जुलाई। आइए बताते हैं विस्तार से आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो हमारे किसान भाई जो है खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। सो इस योजना के लिए किसान क्या है, PMFBY पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, बैंक शाखा या कृषि विभाग के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर और ज़मीन से जुड़े हुए कागज़, बोई गई फसल का जो डिटेलिंग होती है ज़रूरी होती है वो दिया जाता है, जिससे कि फसल बीमा इसके लिए आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स है जो किसान भाइयों के लिए है धान की रोपाई को लेकर के। सो धान की अच्छी पैदावार के लिए पहली क्रॉप ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सो रोपाई के 7 से 10 दिन बाद पहली बार खाद डालनी चाहिए, इसी वक्त में पौधे में नई जड़ें और कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। सो प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। जिंक की कमी होने पर 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट यानी 21% और ज़रूरत के हिसाब से 4 से 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर या 25 से 30 किलोग्राम जिप्सम और 10 से 15 किलोग्राम पोटाश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। टिप्स ये है कि खाद डालने से पहले ये देख लें कि खेत में पानी ज़्यादा ना हो, खाद समान रूप से बिखरे। 24 घंटे बाद 2 से 3 सेंटीमीटर पानी आपको देना होता है और माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा और स्टूडोमोनास जैसे जो जैविक उत्पाद हैं उसके संग यूरिया को नहीं मिलाना होता है। सो ये कुछ ख़ास और ज़रूरी जानकारी और बात थी हमारे स्पेशली किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त इस वक्त जो बारिश का होता है वो बहुत अहम होता है। और जब हम बात करते हैं धान की तो धान की रोपाई का वक्त यही सबसे अहम होता है, जिसको लेकर के हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कोशिश में भी लगे हुए हैं कि इस बार वो अपने वक्त पर धान की रोपाई कर सके ताकि उनको अच्छी फसल मिल सके। सो इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फ़िलहाल हम आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि उसके बाद आ करके कुछ मैसेजेस भी आपके आए हैं चैट बॉक्स पर और एक बात बतानी है आपसे। सो इसलिए आप बने रहिएगा अपने मॉर्निंग वाले शो में अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: सो भाई, मैसेजेस भी आए हैं, और मैसेजेस में तमन्ना अरजू का मैसेज है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम करते हैं तमन्ना आपका। और साथ ही साथ मुंबई से सुनने वाले, गोंडा के रहने वाले हरीश चंद सविता जी भी मौजूद हैं, उनको सॉन्ग्स पसंद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे कमल नयन जी भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो यस, आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी इन्जॉय करने के साथ साथ हर उस चीज़ को भी लिया होगा जो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि कहते हैं तो ये कि भाई, अगर आपको पसंद आई कोई चीज़ और आपने अमल कर लिया तो वो आपका सबसे बेहतरीन दिन है। मैंने कहा था एक बात बतानी है, बात ये कि कोई अगर आपका मन चुरा ले जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगर आपका कोई मन चुरा ले जाए तो उसे क्या कहेंगे, पता है या नहीं? हैं, नहीं पता है? पक्का नहीं पता है? चलिए हम बताते हैं, दरअसल उसे मंचूरियन कहेंगे।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: अरे किरण दी, जल्दी करिए, कहाँ हैं आप? बस लग गई है नौबस्ता मेला के लिए, चलना भी तो है हमें।
6: हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और जया, ये क्या कर रही हो? ये सब्जी और पूड़ी किस लिए बनाया है भाई? रास्ते के लिए। ओहो,
7: अरे जया, वहाँ मेला लगा है और तुम पहली बार जा रही हो ना? तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या चीजें खाने को मिलती हैं? हमारे रेडियो वाले डायरेक्टर सर और हमारी अनु मैम ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है मेले में आने वालों के लिए।
8: दीदी, क्या मेले में हम सब भी जा सकते हैं?
5: हाँ हाँ, सब लोग जा सकते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ।

0: अरे वाह, अब तो मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ आऊंगी।
1: चलो चलो सब लोग, बस चलने वाली है।
2: समता दी, अभी कितनी दूर है भाई गांव?
3: अरे 45 मिनट तो लगते हैं जया, इतने में ही तुम थक गई। वजीरगंज से आगे 9 बजता और इससे ज्यादा समय तो लोगों को गांव में आने में लगता है।
2: अरे नहीं, मैं पहली बार मेरा जा रही हूँ ना, इसीलिए इंतजार नहीं हो रहा मुझसे।

0: चलो भाई चलो, आ गया नौबस्ता। देखो कितना सुंदर मेला लगा हुआ है। उतरो उतरो उतरो, आराम से आराम से।
1: अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। चारों तरफ कितनी भीड़ भाड़ है और दुकानें भी हैं।
2: वाह, सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे शिवानी, वो देखो हाथी। मैं तो जा रही हूँ हाथी की सवारी करने, तुम भी चलोगी?
1: अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, अब हम नहीं बैठेंगे हाथी पर।
3: वो देखो ऊँट भी दिखाई पड़ गया, मैं तो ऊँट की सवारी करने जा रही हूँ।
0: हाँ हाँ, तुम ऊँट पर जरूर बैठो, क्योंकि तुम दिखती भी तो ऊँट की तरह ही हो।
4: सवर रंग मोर पिया नीको न लागे। हे सवर

0: क्या किरण दी, आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं।
1: भाई मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए मैं तो कुछ खाने जा रही हूँ, आप लोग करिए बैठ के सवारी।
2: रुको रुको जया, हम सब एक साथ ही चलते हैं कुछ खाने के लिए।
3: अरे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, वो देखो चाट के ठेले भी हैं, चाउमीन, बर्गर, कचौड़ी, समोसे और तो और मिठाइयाँ भी हैं।
1: शिवानी जाओ किरण दी को इधर बुला लाओ, क्योंकि उनको मिठाइयाँ बहुत पसंद है।

0: फेवरेट चीज तो इधर है।
1: आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे वाह मिठाइयाँ, मजा आ गया। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कितनी दुकानें हैं, बाप रे। आओ आओ जल्दी से छेना निकालो और खाना शुरू करो। वाह भाई मजा आ गया।
2: अरे किरण दी, मिठाई ज्यादा ना खाइएगा और ना सबको खिलाइएगा भी, वरना सबको शुगर हो जाएगा।
3: चलो मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी थी, अब तो मैं बताशे खाने जा रही हूँ मीठे वाले।
0: अरे किरण दीदी वो देखिए वहाँ पर स्टेज क्यों बना हुआ है?
4: अभी हम लोग वहाँ पर गाना गाएंगे।
3: क्या सच में शिवानी हम लोग वहाँ गाना गाएंगे?
1: चलो मिलकर हम सब एक गाना गाते हैं। अरे

0: वाह किरण दी, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। और देखिए नौबस्ता गांव पूरा यहीं पर आ गया है, सब बहुत ध्यान से आप लोगों का गाना सुन रहे हैं।
1: किरण दीदी आज जल्दी घर चलने के लिए मत कहिएगा, आज हम लोग खूब मजा करके और खा पी कर घर चलेंगे।
2: अरे भाई हमने जो खाया था वो सब पच गया, मुझे फिर से भूख लग गई। अब मैं जा रही हूँ बर्गर खाने, और कोई चलेगा?
3: इसे तो बस हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। वो देखो वो झील है जहाँ पानी है और वहाँ बोटिंग भी है, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ी बोटिंग भी कर ली जाए। शहर में ये सब कहाँ मिलता है।
1: पर जय दीदी हमें तो पानी से डर लगता है, ये झील ज्यादा गहरी तो नहीं है? नाव वाले भैया से कहिएगा कि नाव किनारे ही रखेंगे, बीच में ना ले जाएं, मुझे डर लगता है पानी से।

0: चलो चलो झील के पास चलते हैं। रचना तो पहले से ही डरी जा रही है।
1: अरे रचना परेशान मत हो, हम लोग तुम्हें डूबने नहीं देंगे।
2: नाव वाले भैया जी, अरे थोड़ा इधर अपनी नाव तो ले आइए, हम लोग भी बैठ जाएं और खूब दूर तक अपनी नाव को ले चलिएगा।
3: अरे कितना मजा आ रहा है। जया दीदी जरा पानी में हाथ डालिए, पानी कितना ठंडा है।
4: भाई मजा आ गया, मेरे तो कपड़े गीले हो गए। पर शिवानी जरा इधर आओ, तुम्हारे कान खींच लूँ, बहुत नहला रही थी तुम मुझे नाव में।
2: हाँ हाँ लाओ, मैं भी खींच लूँ इसके कान, मुझे भी इसने पूरा भिगा दिया है।
3: सॉरी दीदी, पर बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को पानी से भिगोने में।
1: रचना, ओ रचना, कहाँ गई रचना? अरे भाई इतनी भीड़ है और ये लड़की पता नहीं कहाँ गायब है। घर भी तो चलना है और बस भी लग गई है, ये बस मेले की तरफ ही लगी हुई है।
3: दीदी मैं रचना को देख के आ रही हूँ, आप परेशान मत होइएगा।

0: किरण दी, रचना तो जलेबियाँ खा रही थी और ये देखिए हम लोगों के लिए भी जलेबियाँ लेके आई है।
1: अरे किरण दी, आपने देखा कितने सारे झूले लगे हुए हैं। भाई मैं तो झूला झूल कर ही जाऊंगी।
2: ओके ओके, जल्दी से झूला झूल लो, फिर घर के लिए निकलते हैं वरना रात हो जाएगी। सब लोग झूल चुके झूला। हाय राम, मैं तो बहुत थक गई हूँ। चलो सब जल्दी से बस में बैठो और घर के लिए रवाना होते हैं।
3: सभी को राम राम, राम।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
11: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
12: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: खाना के खन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

गुड आफ्टरनून एवरीवन, भाई बज चुके हैं 12, आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द और सैटरडे की तरह आपके साथ बैठ चुकी हूँ एक कप चाय लेकर के और दिल से जुड़ी कुछ बातें करने। आज हम सुनेंगे भाई दिल से दिल का हाल। आपको क्या लग रहा है, आज हम बहुत इमोशनल बातें करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, आज तो हम बहुत ही पते की बात करने वाले हैं और दिल से जुड़ी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सुना होगा आपने ये वर्ड अक्सर कहीं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या फिर किसी रिश्तेदार के मुंह से। उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका बीपी हाई रहता है, उनको हार्ट की बीमारी है और न जाने कितनी सारी चीजें जो कि दिल से जुड़ी हुई है। पर क्या आप सच में जानते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है? भाई नाम तो बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है ये शायद आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा। आज मैं आपको इसी बारे में सारा कुछ समझाने आई हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि दोस्तों हेल्थ की बातें कॉम्प्लिकेटेड होनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब बात हमारे दिल की हो रही हो, जो दिन रात बिना रुके बिना छुट्टी लिए बस काम करता रहता है। बस आप एक बार अपने दिल की आवाज सुनिए। जी हाँ, क्या आपका दिल क्या कह रहा है? हाँ हाँ भाई, वही धक धक धक धक, ये है आपके दिल की धड़कन। अंदाजा लगाइए एवरेज एक इंसान एक दिन में कितनी बार उसका दिल धड़कता होगा। बताऊंगी भाई, मैं भी आपको इसका जवाब दूंगी, अराउंड 1,00,000 बार। एक दिन में 1,00,000 बार ये धड़कता है, और पूरी जिंदगी में अगर आप 70 से 75 साल जीते हैं तो ये दिल अराउंड 2.5 से लेकर के 3 बिलियन बार धड़कता है। सोचिए कितना मेहनती है ये छोटा सा ऑर्गन और इतनी सारी मेहनत जिसका साइज बस आपकी मुट्ठी जितना है। जी हाँ, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो गया हो या ओल्ड एज का इंसान हो, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा आपका दिल होता है। ये बिना रुके बिना थके ब्लड को पंप करता रहता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और जब यही दिल यही मेहनती वर्कर थोड़ा सा भी स्ट्रगल करता है तो पूरी बॉडी पर भी इसका असर पहुंचता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक अम्ब्रेला टर्म है। जी हाँ, मतलब एक छाता जिसके नीचे बहुत सारी हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। आपने सुना होगा कि किसी किसी के नसों में ब्लॉकेज आ गई या दिल में ब्लॉकेज आ गई, तो वो यही होता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर आता है हार्ट अटैक, जब हार्ट के किसी हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाए तब इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और स्ट्रोक, जिसका नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे, स्ट्रोक भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तब हमें स्ट्रोक आ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, भाई ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप सोचेंगे ये तो बीमारी है, हमें क्या लेना देना है इससे, हम तो भाई हेल्दी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी हेल्दी लोग दिखते हैं लेकिन ये बीमारी उनको भी हो सकती है। पर दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारे बीच सबसे ज्यादा है, कि आप दिखते तो हेल्दी हैं लेकिन अंदर ही अंदर कोई और बीमारी चल रही हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया में नंबर 1 किलर है, यानी कि एक ऐसा किलर जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ज्यादातर लोगों की मौत का कारण भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। मतलब जितनी भी बीमारियों से लोग मरते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही मरते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में, ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हमारे देश में लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 से 15 साल पहले ही हार्ट डिजीज के शिकार हो जाते हैं। मतलब जहां तक एक अमेरिकन 60 से 65 साल में हार्ट अटैक आता है, वहीं हमारे इंडियन को 45 से 50 साल में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिर्फ हार्ट अटैक तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कई तरह के कंडीशंस भी आते हैं। पहला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है और वक्त के साथ कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है।
दूसरा है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। अरे यही भाई, जो लोग बीपी के, तो आपके घर में मुझे लग रहा है कि हर 10 में से 8 इंसान बीपी का शिकार ज़रूर होता है। और यही बीपी की अगर हम बात करें तो यही एक साइलेंट किलर भी कहलाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहता है। और तीसरा है अरिथमिया, जिसमें हार्ट की धड़कन इररेगुलर हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का बीपी फ्लक्चुएट होता है। और अगर ये कई दिन तक लगातार चलती रही और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई तो इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसके बाद चौथा है हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता। ब्लड को जितनी बॉडी को जरूरत होती है उससे कम ही ब्लड पंप होता है। और पांचवा है स्ट्रोक, जो कि टेक्निकली ब्रेन से रिलेटेड है लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्लड वेसल से है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बड़ी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम है, पर यही सबसे बड़ा मिथ है आजकल लोगों का। देखिए भाई, आजकल 25 से 30 साल के यंग प्रोफेशनल जो कि अपने डेली लाइफ को एक रूटीन से जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में लंच करते हैं, शाम को आते हैं और अपना खा पी के सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल तो 25 से 30 साल के लोग जो कि बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, वो भी इससे बचे नहीं पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखिए, ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। पहले लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, खेत में काम करते थे, पैदल चलते थे, घर का खाना खाते थे, लेकिन अब क्या है, अब सारा दिन डेस्क पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने, जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं, स्ट्रेस लेके सोते हैं और स्ट्रेस के साथ ही उठते हैं। एक्सरसाइज का नाम सुनते भाई ऐसा भागते हैं कि एक्सरसाइज क्या ही हमारा दुश्मन आ गया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ भाई, ये जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीज थी तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा हो रखा हो तो 100% है कि आपको हो जाएगा, बस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक लोडेड गन की तरह होती है और लाइफस्टाइल वो ट्रिगर है जो डिसाइड करता है कि वो गन चलेगी भी या फिर नहीं। मतलब अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप अपने जेनेटिक रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज हम ये विषय लेकर आए हैं, वो है अवेयरनेस के लिए हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस टॉपिक को समझेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी और अपनों की जान बचा पाएंगे। कई बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ही दोस्तों लोग अपने सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते और चीज़ें बिगड़ जाती हैं और बात जान पर बन जाती है। तो ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें और साथ ही साथ उनको भी बैठा के ये चीज सुनाएं। अगर आप नहीं शेयर कर पाते हैं तो याद कर लीजिए इसको, जो भी चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊंगी मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज शनिवार के दिन हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भैया रिस्क फैक्टर की, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या मिथ है, क्योंकि हम इंडियंस मिथ्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और फैक्ट्स को दरकिनार कर देते हैं। फिलहाल इंजॉय करिए आप अपना प्रोग्राम, लेती हूँ आपसे थोड़ा सा विराम, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, अभी तक हमने बात की कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता क्या है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग आज की बातों पे लगाइए, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो हमने पिछले सेगमेंट में समझा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है, अब बात कर रहे हैं हम कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। और दोस्तों, रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ। पहला, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, और दूसरा जो हम अपने हाथों में ले करके कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोनों को हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें सबसे पहला है उम्र। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आर्टरीज थोड़ी सी स्टिफ होने लगती हैं और रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है जेंडर, आदमी औरत के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है, लेकिन मोनोपॉज के बाद विमेन का भी रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोटेक्शन देता है वो कम हो जाता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो हमारे हाथों में है, यानी कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है आज के एपिसोड का। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हें हम बदल सकते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, बीपी को साइलेंट किलर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। ज्यादातर केस में जब बीपी होता है तो वो बिन बुलाए और अचानक से पता चलता है, कोई सिम्टम हमें कभी नहीं नजर आता। आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे, पर अंदर ही अंदर आपकी आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा। इसीलिए साल में कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक करवाइए। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, पहला LDL, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दूसरा है HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब LDL बढ़ जाता है तो ये आर्टरीज की दीवारों में जमा होने लगते हैं, जैसे पाइपलाइन में कचरा जमा हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हमारी आर्टरीज में जम जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तीसरा है डायबिटीज। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर आर्टरीज को डैमेज करता है। चौथा है ओबेसिटी, मतलब ज्यादा वेट। जितना ज्यादा वेट, उतना ही ज्यादा लोड, वो भी हमारे दिल पे, यानी कि हमारे हार्ट पे। पांचवा है स्मोकिंग और टोबैको, यानी कि स्मोक करना और तंबाकू। जी हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि इसकी सिगरेट का हर एक कश आपकी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को टाइट कर देती है, ब्लड क्लॉट बनाने का रिस्क बढ़ जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा। अब कई लोग ऐसे हंसी मजाक में दोस्तों के साथ कहते हैं, अरे भाई एक कश ले ले, लेकिन याद रहे वो दोस्त नहीं है जो आपको कह रहा है कि भाई एक कश ले ले, क्योंकि वो एक कश आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। छठा है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं बिना हिले डुले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चाहे आप वेट में पतले हो और चाहे आप ज्यादा हो, अगर आप बिना हिले डुले 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। सातवा है अनहेल्दी डाइट। अब इसके बारे में अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो, और ये एक बहुत बड़ा कारण भी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, तो आप समझ जाइए कि हम इंडियंस कितने ज्यादा लापरवाह हैं। जी हाँ, ज्यादा नमक, ज्यादा तेल और ज्यादा प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड, कम फाइबर, ये सब कॉम्बिनेशन डायरेक्टली हार्ट के लिए खतरनाक है। आपका दिल भी बेचारा चीख चीख के कहता है कि यार मालिक, पेट की सुन रहे हो तो कभी दिल की भी सुन लिया करो, इतना नहीं बाहर का खाना खाया करो। आठवीं चीज है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो गया है कि हम जिस तरह से खाना खाते हैं ना, कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रेस भी लेने लग गए, यानी हमारे रोजमर्रा का हिस्सा हो गया ये। लगातार स्ट्रेस दोस्तों कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। नौवीं है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल यानी वही शराब। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना भी बीपी को बढ़ा सकता है और हार्ट मसल को वीक करता है।
अब दोस्तों चलिए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। जी हाँ, अब आपका दिल थोड़ा सा टूट सकता है क्योंकि शायद आप भी अभी तक इस मिथ के चक्कर में बैठे होंगे। पहला मिथ है, सिर्फ मोटे लोगों को ही हार्ट डिजीज होता है और वही इसके शिकार बनते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं है। पतले लोगों को भी हार्ट डिजीज हो सकता है और इक्वल चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो स्मोक करते हैं, तब तो भाई और भी ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है। मिथ नंबर टू है, हार्ट डिजीज सिर्फ बूढ़ों की बीमारी है। हार्ट डिजीज सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं है, आपको यंग एज में भी हार्ट डिजीज हो सकती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल यंग लोग भी इस प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग से इस मिथ को तो भाई बिल्कुल निकाल के फेंकिए। उसके बाद बात करते हैं मिथ नंबर थ्री की, अगर मुझे सिम्टम्स नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशन में अक्सर कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। सिम्टम का वेट बिल्कुल मत करिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। मिथ नंबर फोर है, हार्ट डिजीज जेनेटिक होते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स एक फैक्टर है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस इस रिस्क को काफी मात्रा में कम भी कर सकते हैं। मिथ नंबर फाइव है, विमेन को हार्ट अटैक कम आता है। क्यों भाई, विमेन पे दिल नहीं होता क्या? होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से विमेन को भी हार्ट डिजीज हो सकती है। ये भी गलत है। देखिए, विमेन में हार्ट अटैक के सिम्टम अलग होते हैं, जैसे चेस्ट पेन के बजाय थकान होगा, सांस फूलेगा, जॉ पेन होगा, यानी कि जो हमारी जबड़े हैं वो दर्द करेंगे, इसीलिए बार बार डायग्नोसिस होने पर देरी हो जाती है। दोस्तों, इन सब रिस्क फैक्टर को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि अरे मुझ में तो कोई फैक्टर मैच ही नहीं हो रहा है, तो मैं घबराऊं क्यों, यही अवेयरनेस का पहला स्टेप है। आपने जो भी समझा, अभी तक जो भी सुना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि खतरा कहाँ से है, तब तक हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो प्लीज अपने आप को ऑनेस्टी के साथ इवेल्युएट करिए कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, या अगर नहीं हो रहे हैं तो भी आपको साल में एटलीस्ट दो बार अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना कि भैया दुर्घटना से देर भली है, थोड़ा सतर्क रहें। जी हाँ, सतर्क रहना दुर्घटना से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा दिल आपसे जो बातें करता है, आखिर उसे समझें कैसे, दिल की बातें समझना कैसे है, उसकी भाषा क्या है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या ये थोड़ा रोमांटिक बनने वाली है। दिल की बात यानी सिम्टम्स को कैसे समझना है, उसको हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके आपसे फिर से बात कर देंगे।

वापस से स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके शो में स्वास्थ्य संगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है और कौन से फैक्टर इसे ट्रिगर करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो

रोज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिल के संकेत को पहचानना, यानी कि जो वो आपसे बात कर रहा है उसको समझना। क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी कभी भी सीधा सीधा SOS नहीं बोलता। जी हाँ, वो छोटे छोटे सिग्नल देता है हमें और हमारा काम है उन्हें समझना, उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम की। दोस्तों फिल्मों में हम देखते हैं ना कि हार्ट अटैक का मतलब अचानक से चेस्ट पेन हुआ, इंसान गिरा और फिर खत्म। लेकिन रियलिटी में हार्ट अटैक अक्सर इतना ड्रामेटिक होता नहीं है, वो तो बस फिल्मी दुनिया में होता है। कई बार ये धीरे धीरे शुरू होता है हल्का सा डिस्कम्फर्ट के साथ और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद एसिडिटी होगी या थकान से हो रहा होगा। और सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, जैसे कोई चीज चेस्ट पर रख दी गई हो, या जकड़न सी महसूस हो रही हो, या प्रेशर सा फील हो रहा हो। ये पेन कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है और इस तरह इसका आना जाना बना रहता है। दोस्तों इसे ऑन ऑफ पेन समझकर इग्नोर बिल्कुल ना करें। दूसरा सिम्टम है अपर बॉडी में डिस्कम्फर्ट, मतलब कि ये पेन सिर्फ चेस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लेफ्ट आर्म में भी और दोनों आर्म्स में भी, बैक पे, नेक पे, जॉ यानी आपके जबड़े पे और आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोग जॉ पेन को दांत की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं या बैक पेन को नॉर्मल बॉडी एक समझकर छोड़ देते हैं, जबकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तीसरा सिम्टम है सांस फूलना, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सिम्टम कभी चेस्ट पेन के साथ आता है और कभी अकेला भी हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करते वक्त सांस फूलने लगती है जो पहले नहीं होती थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। चौथा सिम्टम है कोल्ड स्वेट, मतलब अचानक ठंडा पसीना आ जाना बिना किसी वजह के, स्पेशली अगर मौसम गर्म है तब भी आपको ठंडा पसीना आ रहा है। पांचवा सिम्टम है चक्कर आना। जी हाँ, अगर हल्का फुल्का चक्कर आता है तो वो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है हार्ट अटैक का। कई लोग हार्ट अटैक के वक्त उल्टी जैसी फीलिंग भी करते हैं। जी हाँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि अब उल्टी होने वाली है या उन्हें लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे। ऐसी चीज अगर आपको महसूस होती है तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट डिजीज का। छठा पॉइंट है एक्सट्रीम थकान। अब कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार हमारे तो नेचर में ही है थकान, हम तो दिन भर थके रहते हैं, लेकिन भाई अगर आपको एक्सट्रीम थकान हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है जो बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी आपको महसूस हो रही है। दोस्तों ये सिम्टम स्पेशली वुमेन में ज्यादा आते हैं और उनमें ज्यादा कॉमन होते हैं और यही वजह है कि वुमेन में हार्ट अटैक अक्सर मिस हो जाता है क्योंकि लोग इसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ तक आपको एक बहुत जरूरी पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि वुमेन और मेन में हार्ट अटैक के सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए आदमियों में ज्यादा कॉमन होता है टिपिकल चेस्ट पेन, जबकि वुमेन में सिम्टम ज्यादा सटल होते हैं। जी हाँ, जैसे थोड़ी थकान होगी, सांस फूलेगी, जॉ पेन होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए वुमेन को और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कई बार ये सिम्टम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिए जाते हैं, इसीलिए इस बार आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं स्ट्रोक के सिम्टम की। जी हाँ, क्योंकि ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक पार्ट होता है। स्ट्रोक को पहचानने के लिए सिंपल फॉर्मूला है जो पूरी दुनिया में यूज होता है, वो है फास्ट, FAST। एफ मतलब होता है फेस, अगर चेहरे का एक साइड ड्रॉप कर रहा है या मुस्कुराने में एसिमेट्री दिख रही है तो ये एक सिम्टम है। उसके बाद ए फॉर आर्म्स। जी हाँ, अगर दोनों हाथ ऊपर उठाने में आपको दर्द हो रहा है या हाथ ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथ से गिरता हुआ जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका खून रुक ही नहीं रहा है और वीकनेस फील हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद है एस। एस मतलब स्पीच, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है, वर्ड्स थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ आप हल्का सा तुतला रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड्स क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद टी, यानी कि फास्ट का आखिरी वर्ड टी, जिसका मतलब है टाइम। अगर ये सब सिम्टम दिखे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें,
तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए। दोस्तों, स्ट्रोक में हर मिनट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना ही कम ब्रेन डैमेज होगा। तो देखा दोस्तों, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा सिम्टम देती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए। इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को ये सिम्टम होते हैं या बीपी इशू होता है तो वो सोचते हैं अरे बीपी लो हो रहा है, चलो नींबू पानी पी लो, अभी नॉर्मल हो जाएगा। हाई हो रहा है तो थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये इतनी हल्की चीज नहीं है जितने हमने हल्के में इसको ले रखा है। और कहीं ना कहीं यही हमारा इग्नोर कर देना, चीजों को ढील देना ही इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बढ़ने का और उससे होने वाली मौत के बढ़ने का कारण बन सकता है। जी हाँ, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो कह रही थी यही एक इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। अब भैया दिल का बात समझ ली, दिल क्या कहना चाहता है वो समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि दिल का ख्याल कैसे रखना है, यानी कि प्रिवेंशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए अपना शो स्वास्थ्य संगिनी। लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक।

दोस्तों वापस से स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी के आखिरी सेगमेंट में। भाई देखिए समय बहुत जल्दी से भाग रहा है और हमने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस तो किया ही नहीं, वो है कि आखिर इसका प्रिवेंशन क्या है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है प्रिवेंशन। क्योंकि दोस्तों जैसा कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब बात दिल की हो तो ये लाइन और भी ज्यादा सच हो जाती है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी डाइट में बदलाव लेना। अगर आपकी डाइट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको सिम्टम आ रहा है तो आपकी डाइट जरूर बदलनी चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप अचानक से अपनी पूरी डाइट को पलट के रख दीजिए या फेवरेट चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करिए और आप अपनी डाइट को बदल सकते हैं। जैसे फ्राइड फूड की जगह ग्रिल्ड या रोस्टेड ऑप्शन ट्राई करिए। नमक का यूज थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन शामिल करिए। दोस्तों घर का सिंपल दाल चावल सब्जी जो कि हमारी दादी नानी बनाती थी वो अक्सर सबसे हेल्दी ऑप्शन हुआ करता था। बस उसमें ऑयल और नमक की मात्रा का ख्याल रखिए। हेल्दी फैट्स की बात करें तो भाई घी और ऑयल को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्रा को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और नट्स जैसे वॉलनट और आलमंड्स, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इसमें अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक्ड स्नैक, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें जितना कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस रोज 30 मिनट आपको वॉक पे जाना है, या आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपको थिरकना पसंद है ना यानी कि डांस करना, तो आप 30 मिनट डांस भी कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो घर में ही थोड़ी बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, जस्ट कि आपका बॉडी एक्टिव रहे। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, थोड़ी दूर तक पैदल चलिए। दोस्तों कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं। जी हाँ, रोज थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हफ्ते में एक दिन इंटेंस वर्कआउट से ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। जी हाँ, कई लोग वर्कआउट के नाम पे सोचते हैं हफ्ते में संडे है, संडे के दिन खाली रहेंगे, उसी दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, हो गया हमारे हफ्ते भर का कोटा पूरा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही गलत तरीका है। आपको डेली अपनी लाइफ से 30 मिनट निकालना है और वर्कआउट जरूर करना है। अब आप इसमें चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, डांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओहो भाई मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे अरे स्ट्रेस ही तो मैनेज करना है, लेकिन मैं बता दूं ये एक ऐसी चीज है जहां पे हम सभी फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसे मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए, और अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से बात करिए, उसमें आपको जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने दोस्तों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। होता है ना कभी अपने दोस्तों से हम बात करते हैं, अरे भाई शाम को मिलते हैं, चाय पीते हैं, इतनी पक्की दोस्ती होती है आपकी, बिल्कुल इसी तरीके से मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं या कोई ट्रॉमा लगता है तो हम बेहोश हो जाते हैं या हमारे सीने में दर्द होने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है भाई। एक को कोई नुकसान होता है ना तो दूसरा तुरंत इफेक्ट हो जाता है। चौथी चीज है स्मोकिंग और तंबाकू से दूर रहना। दोस्तों अगर आप स्मोक करते हैं तो ये जान लीजिए कि इसे छोड़ने में सिर्फ सिर्फ 24 घंटे बाद ही आपके हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, और रिस्क कम होना भी शुरू होने लगता है, और एक साल के अंदर ये रिस्क काफी हद तक नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों अगर आप या आपका कोई अपना स्मोकिंग करता है तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए कि सिगरेट की मात्रा धीरे धीरे कम करने लग जाइए। जैसे आप मात्रा कम करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिगरेट छोड़ देंगे। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर हेल्थ चेकअप। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर ये सारी चीजें
हो रही हैं और आपका ये बढ़ा रहता है या फ्लक्चुएट होता है, तो आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत है। चाहे आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, चाहे आपको कोई पेन ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो रही हो, फिर भी आपको इसको रेगुलर चेक करवाना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई प्रॉब्लम बिना सिम्टम के भी आ जाती हैं और डेवलप होने लगती हैं। 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, हमारा दिल हमारी जिंदगी भर का सबसे वफादार साथी है। ये कभी कंप्लेन आपसे बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही आपसे छुट्टी मांगता है, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अब वक्त है कि हम इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। छोटे छोटे चेंजेस जैसे हेल्दी खाना, थोड़ा मूवमेंट, स्ट्रेस कम करना, स्मोकिंग से दूर रहना, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये सब मिलकर हमारे दिल को सालों साल तक हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए स्वास्थ्य संगिनी बस यहीं तक। इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आप में हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम कम हो सकती है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार घर के सदस्य हैं, तो अपना और अपने घर के बच्चों में भी इसका खास ख्याल रखें। लेती हूँ आपसे विदा इसी थॉट के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान उससे भी ज्यादा रखिए।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
3: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
1: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी, बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा।
0: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
2: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को समान बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
1: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
2: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
0: और किस तरह का जोखिम?
2: समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
1: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
3: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं, बच्चा भी चुकाता है।
3: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
3: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: आपने बिल्कुल सही कहा।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHEA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
3: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
3: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
4: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
3: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
4: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
2: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
3: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
4: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
4: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
1: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
3: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
4: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
2: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
3: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
4: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।

तो आज कुछ अलग सी आवाज आपको सुनाई दे रही है दोस्तों, और वक्त तो अगर मैं कहूंगी तो हो गए हैं 1:32 बाय स्टूडियो क्लॉक, क्योंकि जब 31 पे हमने एंट्री ली तो हमने कहा थोड़ा सा ये जो मधुर वाला बीजीएम है ना वो मेरे कान में पड़ जाए, मैं उतर जाऊं पूरी तरह से इस शो में।

0: गुमसुम और गुपचुप नहीं बैठी थी, मैं इंतजार कर रही थी कि आपकी बातें जब खत्म हो जाएं तो फिर मैं अपनी बातें।
1: ओके, तो भाई हमारी बातों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों के खत्म होने का इंतजार कर सकती हैं, ये चाहती हैं कि मैं बस ऐसे बोलती जाऊं नॉन स्टॉप बोलती जाऊं और खाली मुझे सुनती जाए, क्यों?
0: हाँ बिल्कुल।
1: अच्छा, मतलब मैं आपको बकबकी दिखती हूँ?
0: नहीं दिखती तो नहीं है पर करती है।
1: ओहो, तो मतलब मुझे कम बोलना चाहिए?
0: नहीं नहीं, आपको कम नहीं बोलना चाहिए, आप जैसे बोल रही हैं अच्छा बोल रही हैं।
1: अच्छा, मतलब मैं जैसा बोल रही हूँ अच्छा बोल रही हूँ
0: जी।
1: मैं बहुत अच्छा क्यों नहीं बोल रही हूँ फिर, क्योंकि अभी तक मुझे आरजे अंशिका ने सिखाया ही नहीं ना।
0: हाँ सिखाऊं?
1: ओह माय गॉड, मतलब दोस्त अगर दोस्त को नहीं सिखाएगा तो हम कैसे सीखेंगे? फिलहाल आप लोग जान गए होंगे भैया दो सहेलियां अगर बैठ के नोकझोंक कर रही हैं और ऐसे बकाबक बातें कर रही हैं तो भाई किस चीज का वक्त हो गया है। जी हाँ, वक्त हो गया है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि सुन सहेली का। और आज दो सहेलियां सैटरडे के दिन यानी कि शनिवार के दिन यानी कि वीकेंड के दिन खास आपके बीच मौजूद है। भाई आज हम बातें करते हैं थोड़ा लव शव पे और साथ ही साथ में आप सभी की डिमांड्स मतलब कि एज अ गेम, और उसके बाद में थोड़ा सा आपसे मेहनत कराते, थोड़ा सा आपके दिमाग को शार्प करते हैं, देन आपके डिमांड्स को लेते हैं। और इसके अलावा आज हम बात किस पे करते हैं बताएंगे हमारी प्यारी सखी?
0: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आप सभी को बताएं लिसनर्स की प्यारी सी पोयम होगी और आज प्यार है तो प्यार पे ही होगी।
1: प्यारे ही प्यार है, हाँ ठीक है, सॉरी
0: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ न्यू टीवी शोज और OTT सीरीज, और फिर कैसे भूल सकते हैं हमारा इंटरेस्टिंग वाला सेगमेंट जो कि लव राशिफल। लेकिन वो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि आज ये चेंजिंग वाला सेगमेंट क्यों, तो आज वो इसलिए क्योंकि आपकी प्यारी आज समता जी जो हैं वो है छुट्टी पे।
1: छुट्टी पे नहीं है, वो घूमी शुमी करने गई है, मैं बताती हूँ।
0: अले अले अले, रुक
1: जाइए, चली गई, हमको लेके नहीं गए हैं।
0: आपको लेके जाती तो फिर घूमी कैसे करती
1: है? हाँ ये बात भी है, मेरा ख्याल रखना पड़ता है ना।
0: हाँ दोस्तों, हमारी मस्ती थी बट था उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम, इसलिए
1: नहीं बारिश में इंसान घूमी करने जाता है। झूठ झूठ मत बोलो,
0: झूठ झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, आप चुप रहो। चुप हो गई, कितनी सीधी है हमारी। वो क्या कहते हैं, आरजे अंशिका,
1: वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: चुप हो गई वो। नहीं हम तो कर रहे हैं मस्ती, लेकिन मस्ती एक तरफ है तो वो आज नहीं है, इसलिए आज आपकी आरजे अंशिका आपके साथ है। तो जैसे कि मैं हमेशा जब भी मैम होती
1: हूं, आज करेंगे मस्ती ओनली ऑन ज्ञान असली बस्ती, क्या बात।
0: अरे वाह, मतलब इसको कहते हैं असर। मैं अभी कुछ बोलने ही वाली थी,
1: हाँ?
0: उससे पहले इन्होंने बोल दिया, तो चलिए कोई बात नहीं।
1: पर मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ आपसे, जवाब मतलब चाहिए मुझे,
0: बताइए
1: कि न्यू OTT सीरियल्स की ही बात हम क्यों करेंगे और पुरानी OTT सीरियल्स के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों क्यों क्यों?
0: तो आज आकांक्षा जी आपको बता दूं कि नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होती है।
1: हाँ।
0: अगर हम न्यू बताते हैं तो उसमें कुछ पुराने का तड़का भी लगाते हैं।
1: ओके, तो मतलब जीरा राई होगी फ्राई,
0: बिल्कुल आज फ्राई भी होगी, फ्राई होके बाहर भी निकलेगी, बाहर निकल के हम थोड़ी सी मेहनत भी करवाएंगे, फुल एंजॉय करवाएंगे, क्योंकि आज है सुपर से भी ऊपर वाला
1: सैटरडे। मैं सॉरी,
0: मतलब जैसे जब मैम होती हैं,
1: हाँ?
0: तो मैं उनके लिए दो लाइन्स हमेशा जब वो पोएट्री पढ़ती हैं तो मैं बोलती हूँ, तो आज आपके लिए भी दो लाइन बोल ही देती।
1: क्या बात है, हमारे बीच में सिद्धू पाजी आ गए। अरे मैंने इतना गलत कॉम्बिनेशन दे दिया था। अच्छा हमारे बीच में और कोई कवित्री? हाँ महादेवी वर्मा जी आ गई हैं अभी, ठीक है।
0: कोई तो ढंग का एग्जाम्पल दीजिए।
1: अरे यार आरजे अंशिका जी आ गई हैं, एग्जैक्टली
0: ये चलेगा।
1: हाँ इधर उधर जाने से बेहतर है जो ओरिजिनल है वहीं पे फोकस करते हैं।
0: बिल्कुल, मैं ओरिजिनल हूँ और एक ही पीस हूँ।
1: हाँ सिंगल पीस,
0: सिंगल
1: बात तो है,
0: तो आप मुझ पे फोकस करें। वैसे महादेवी वर्मा बहुत
1: जस्ट फोकस ऑन
0: पोएट्री है, नो डाउट, मतलब बहुत अच्छी पोएट्री करती है,
1: बट
0: मैं महादेवी वर्मा नहीं, और जो पहले वाला नाम इन्होंने लिया वो तो बिल्कुल ही नहीं।
1: क्या बात है,
0: वो जो बता रही है हमारी प्यारी सखी जी,
1: ठोको ताली। चाहे हो साला चाहे हो साली, या हो किसी के घर वाली, बिना रुके ठोको ताली।
0: हाँ मतलब इंसान को अगर स्पीचलेस होना हो तो वो आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मैं भी फिलहाल हो गई थी। खैर
1: जी वापस से आते हैं।
0: यस, तो सबसे पहले तो भाई सुन सहेली।

0: और सुन सहेली का दस्तूर अभी तक पूरा नहीं किया तो कैसे सुन सहेली है। तो चलिए आज अपनी हम सहेली के साथ दस्तूर पूरा कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका अपना पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
0: और एक साथ एक ही फ्रेम में वही मौसम बहुत प्यारा सा है, बहुत खूबसूरत सा है, बहुत क्यूट सा है, बहुत अच्छा सा है।
1: तो
0: लेकिन दोपहरिया तो है,
1: दोपहरिया लेकिन हैप्पी मानसून के साथ।
0: ओके हाँ। तो सबसे पहले हैप्पी मानसून और फिर शुभ दोपहरिया।
1: जी हाँ।
0: तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में सबसे पहले विश कर देते हैं
1: हैप्पी मानसून एंड देन
0: शुभ दोपहरिया।
1: जी हाँ,
0: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, क्योंकि हम आ गए हैं और बिना शुभ दोपहरिया के भाई आगाज कैसा।
1: बिल्कुल। और आपने कहा चलते हैं, कहाँ चले?
0: चलते हैं प्यारी सी पोइट्री की तरफ।
1: मुझे लगा चाय कॉफी पे ले जाएंगी, क्या बताएं मेरी किस्मत कितनी।
0: वो किसी और का डिपार्टमेंट हो सकता है।
1: ओह माय गॉड, इतनी इंटेलिजेंसी, बाय गॉड, ऐसी नहीं तारीफ करती मैं आपकी। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।
0: जी तो भाई जैसा मैंने कहा था कि मैम के लिए मैं दो लाइन बोलती हूँ जब वो पोइट्री पढ़ती हैं, तो अब आपकी आरजी आकांक्षा जी पढ़ेंगी और फिर मैं भी उसमें कुछ अपनी पंक्तियाँ कहूंगी। तो सबसे पहले उनसे पढ़वाते हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए कुछ हम लाइंस भी बोलेंगे।
1: ओके मैं रेडी हूँ।
0: रेडी हैं आप?
1: या
0: तो चलिए रेडी स्टेडी एंड गो।
1: एवर रेडी।
0: तो भाई हम पूरा मूड का इन्होंने एवर रेडी कर दिया।
1: एवर रेडी मतलब टॉर्च में सेल नहीं लगेगा, कैसे चलेगा सर? मतलब टॉर्च नहीं सर,
0: एवर रेडी ही था याद आपको?
1: मुझे एवर रेडी ही याद था।
0: चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं मूड फिर से क्रिएट कर लेती हूँ। तो भाई हमारे पूरे स्टूडियो में फैली हुई है खुशबू खुशबू खुशबू, क्योंकि आ गई है गुलाब।
1: अरे बाप रे, इतना
0: अच्छा नहीं लगा?
1: नहीं नहीं, मैं सोच में पड़ गई।
0: अच्छा, इतना बुरा लगा?
1: जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं आती हूँ, आगे सुनेगा, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ। भाई खुशबू फैली है और वो भी गुलाबों के थ्रू, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, वहां तक तुमने मुझे पहुंचा दिया है। मुझे लगा था कि नॉर्मल दो चार लाइनें होंगी जैसे नॉर्मल होती हैं, पर इतनी बड़ी वाली तारीफ, मतलब जिसके लिए हम जाने जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और शुक्रिया को कबूल भी कर लिया, तो अब कृपया
1: हाँ आगे बढ़ते हैं। बेशक। तो एक अनकहा एहसास हो तुम।
0: ओहो।
1: तुम सुबह की पहली धूप जैसे हो।
0: ओहो।
1: जो आते ही सब कुछ रोशन कर दे। तुम रात के शांत चांद जैसी हो जो इस दिल को सुकून से भर दे। प्यार क्या है मुझे नहीं पता था, तुमसे मिलकर मैंने ये जाना है। अब तो धड़कन भी तुम्हारी सुनती है और ये दिल भी अब तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही दीवाना है।
0: वाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें शब्दों में कही नहीं जाती, कुछ जज्बात बस महसूस किए जाते हैं।
1: कर रही।
0: जब तुम पास नहीं होती हो मेरे तो तुम्हारा ही ख्याल दिल में आता है। न कोई वादा चाहिए न कोई कसम, न कोई वादा चाहिए न कोई कसम, बस तुम्हारा उम्र भर का साथ चाहिए।
1: ओह माय गॉड।
0: भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी हो इस दुनिया में, भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी हो इस दुनिया में, मुझे थामने के लिए बस तुम्हारा हाथ चाहिए।
1: क्या बात।
0: तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो,
1: ओहो
0: इस अधूरी जिंदगी की मुकम्मल आस हो तुम।
1: ओह।
0: जो बयां ना हो सके वो अल्फाज हो तुम, जो बयां ना हो सके वो अल्फाज हो तुम। तुम वो सबसे खूबसूरत और प्यारा एहसास हो, तुम वो सबसे खूबसूरत और प्यारा एहसास हो, जिसे कहा भी नहीं और जिसे रहा भी नहीं।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मतलब एक तड़प, एक तलब, एक छटपटाहट, मतलब जिससे कहा भी नहीं और कहे बिना रहा भी नहीं। उफ
0: उफ, कुछ ऐसा ही होता है इश्क विश्क प्यार व्यार लव, फिर चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो।
1: बेशक बेशक बेशक।
0: जब प्यार की बात आती है आरजी आकांक्षा, तो हम सीधा एक मतलब दिमाग लगाते हैं या मन में ख्याल आता है एक लड़की हो एक लड़का हो और वो एक इमेज हो, बट ऐसा नहीं होता। प्यार हर रिश्ते की नींव है, फिर चाहे दोस्ती हो, मदर फादर से हो, फ्रेंड्स से हो, मतलब फ्रेंड्स से तो कुछ बहुत ज्यादा ही लेवल का होता है, या फिर आपकी लाइफ में आपका कोई समवन स्पेशल हो,
1: बेशक। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि उसकी तारीफ़ में हम इतने अल्फाज बुन जाते हैं, और कई दफ़ा होता है कि एक भी अल्फाज नहीं बुनते हैं और सारी बातें हो जाती। कई दफ़ा नज़रों से बातें होती हैं, कई दफ़ा खामोशी से बातें होती हैं, कई दफ़ा बस महसूस करना होता है, कई दफ़ा यादों में बातें होती हैं। तो भाई बातों का ज़रिया बहुत सारा होता है, लेकिन जब हम तारीफ़ करते हैं तो कुछ प्यारे प्यारे नगमों से भी कभी कभार कर लेते हैं, डेडिकेशन में दे देते हैं। तो आप भी सोचिए और गुम जाइए इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, हम यू गए यू आए, लेकिन इस गाने को महसूस करिएगा ज़रूर जनाब, क्योंकि बात आज हो रही है प्यार मोहब्बत की, और उसमें अगर तारीफ़ में ऐसे वाले सॉन्ग ना हो तो फिर तारीफ़ करना ही बेकार है। ज़रा सुनिएगा गौर फरमा के, जस्ट यू गए यू आए, आपका शो चल रहा है सुन सहेली, स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, और आप सुन रहे हैं आपका बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, और मैं हूँ आपकी होस्ट अंशिका, और मेरे साथ हैं आपकी बहुत ही अच्छी वाली कॉलेजियन वाली आरजे, यानी कि आरजे आकांक्षा। और भाई आज देखिए, यही होता है जब दोस्त होते हैं, दोस्तों के चक्कर में आज तो हम आपको विश करना ही भूल गए।
1: क्या जाने मेरे यार,
0: आए और आपको विश भी नहीं किया।
1: हाँ, यही होता है ना जब दो दोस्त मिलते हैं इतने दिन बाद, और इतने सारे गप्पे शप्पे होते हैं यार, इकट्ठा निकालने होते हैं हम लोगों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इस वजह से कहीं ना कहीं चलिए फिर आज दस्तूर अभी कर देते हैं, उसमें क्या है।
0: बिल्कुल, देर आए हैं बट बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। और इसी के साथ आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका बेहद पसंदीदा वाला शो जो कि है सुन सहेली। सुन सहेली, और विश भी कर दिया है आप सभी को। और जब हम विश करते हैं तो वो हमारा एक आह्वान होता है कि फटाफट से आप सभी आ जाएं, मैसेजेस करें, बताएं अपना हालचाल, और हालचाल के साथ सुने, एंजॉय करें। और आज के दिन तो एंजॉयमेंट बनती है क्योंकि आज है आपका सैटरडे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे हम। तो ब्रेक पे हम अभी जब गए थे और हमने बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग सुना, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा है नहीं है। तो
1: ऐसा है या नहीं है?
0: है भी और नहीं भी।
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कुछ लोग मासूम होते हैं,
1: हाँ?
0: इसलिए मासूम है,
1: कुछ लोग जानलेवा होते हैं क्या,
0: और कुछ लोग नहीं भी मासूम होते।
1: ओके, बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात कर रहे हो यार। तुसी मेरे को दसो कि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब मासूम होते हैं नहीं होते हैं, जहर होते हैं कहर होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं,
0: वो क्या होते हैं, ये हम ऑफ माइक डिस्कस करेंगे।
1: ओके,
0: फिलहाल हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि टाइम है उसमें लगे हुए हैं पंख, और हम उसे आज भागने नहीं देंगे, आज पकड़ कर रखना है क्योंकि आज हमारा गेम सेक्शन भी होने वाला
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, लेकिन अभी जो आपने बात बोली है ना उस पे चार लाइन आई है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ डालूं, क्या कहती हैं?
0: जल्दी।
1: तो लिखा है हमारे प्यारे श्रोता ने, जिन्का नाम है प्रबल मिश्रा जी, और आपकी इन्हीं बातों पे कि होती है नहीं होती है, जो हम असमंजस में फंस गए थे इन्होंने क्लियर कर दिया है। लिखा है खबर छुपाई जाती है, गौर फरमाइएगा अंशिका जी, खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है, ये वो जमाना और दौर है दोस्तों, ये वो जमाना और दौर है दोस्तों, कहानी कुछ होती है और सुनाई कुछ जाती है। क्यों, सही कहा ना?
0: वाह, अच्छा लिखा है प्रबल जी आपने।
1: जी हाँ, बिल्कुल बेशक। और हमारे प्यारे श्रोतागण भी जुड़ना शुरू हो गए हैं, और धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज विकास कॉलोनी गुंडा से सुनते हैं।
0: गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र जी।
1: जी, और कह रहे हम भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सुनिए।
1: नेक्स्ट मैसेज में लिखा है आकांक्षा जी, अंशिका जी, गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया।
0: शुभ दोपहरिया और गुड आफ्टरनून आपको भी।
1: इसी के बीच में हमारी एक सखी जुड़ गई है जिनका नाम है नीना। नीना जी ने लिखा है दोनों बहनों को नमस्कार। क्या बात, क्या संबोधन किया है, दोनों बहनों को। आप मतलब समझ पा रही है
0: जी, जी,
1: ये
0: जी।
1: बहनों वाला दर्द बहने ही समझ पाती है।
0: बिल्कुल, तो नमस्कार नीना जी, कैसी है आप, और बहुत बहुत स्वागत है सुन सहेली में। चलिए फटाफट बिना देरी किए नेक्स्ट वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हो गया है समय जो है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकलता है। हाँ, तो हम भी समय के साथ चलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज क्या कहता है, आज कुछ कहता है, और जो कहता है वो फटाफट से आपको बताते
1: कुछ
0: हैं।
1: कहता है ये सावन, क्या कहता है?
0: कहता ये है कि जब हम हमेशा कहते हैं ना कि रिश्तों में दो चीजें हों तो रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, तो आज उन दो चीजों पर ही है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आपको दिल से सुकून मिलता है और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता है।
1: हाँ, और उससे पहले आप खुद आगे बढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज़ है।
0: तो कहने का सेंस यही है लिसनर्स कि आज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यही बताना चाहते हैं इस रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के माध्यम से कि अगर किसी ने आपके साथ कभी कुछ बुरा भी किया है ना, कुछ आपको कह भी दिया है, तो माफ करिए और आगे बढ़िए।
1: माफ करिए, दिल साफ करिए, खुद भी आगे बढ़िए, उनको भी बढ़ने दीजिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम कहते हैं ना नफरत रखें दिल में या प्यार रखें, जब तक किसी भी इंसान के लिए कोई भी हमारी फीलिंग जिंदा होती है तब तक वो हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर एक बार फीलिंग ही नहीं रहती है दिल में तो वो फिर हो या ना हो वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही
1: नहीं करता है। क्या बात, क्या बात।
0: माफ करें, आगे बढ़े, खुद भी और उस इंसान को माफ कर दीजिए ताकि वो भी अपने गिल्ट से निकलकर आगे बढ़ सके। और अगर गिल्ट उसे नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर आपने अपने मन से उसके लिए सारी जो बुरी भावनाएं हैं या जो भी कुछ आपके मन में है, मान लीजिए कोई ऐसी बात है कि आपको लगता है कि अरे यार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो आपको बार बार पिंच कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसे माफ कर दिया तो फिर आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमेशा आगे बढ़ें, लाइफ में जो मिला है उससे खुशियां मनाएं। जो खो गया वो आपका अपना नहीं था, पर जो आपको मिला है वो आपका अपना है और हमेशा आपके पास रहेगा, और उसे सहेजना भी आपकी ही जरूरत है। तो सहेजें उसको, संभाल के रखें और अपनी लाइफ को हमेशा रखें जबरदस्त, क्योंकि लाइफ में सिर्फ खुशियों की जगह होती है,
1: बिल्कुल
0: कभी और भी दर्द की जगह नहीं होती।
1: और अगर कभी आपको लगे ना कि बदला लेना चाहिए, कतई मत लीजिएगा, बहुत जरूरी बात है। कारण क्या है मैं बता देती हूँ। कारण ये है दोस्तों कि कई दफा होता है कि हम रिवेंज पे आ जाते हैं, बट ना ही रिवेंज लेना होता है ना ही एवेंज लेना होता है। रिवेंज का मतलब होता है हम अपने लिए तो एक दफा छोड़ देते हैं, लेकिन अपने अपनों की अगर बात आती है तो हम बदला लेने पे आ जाते हैं, पर यहीं पे हमें रुकना होता है। क्योंकि अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ जिसने बुरा किया है वो देखे या ना देखे ऊपर वाला देख रहा है, और उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। आपको कितना ऊपर वाला कब देगा ये आपके चयन पर निर्धारित है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा करने से पहले हजार बार सोचें, और ये सोच लीजिए कि उससे ज़्यादा आपको खुद को पेन होगा इन फ्यूचर। दो पल को आपको सुकून मिल जाएगा, पर पूरा फ्यूचर आपका उसी चयन पे आपके डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल। तो वही, अभी जब हमने बात की थी कि हम OTT सीरीज और नई सीरियल्स के बारे में आपको कुछ बताएंगे, तो आरजे आकांक्षा जी ने कहा था कि भाई ये क्या बात हुई, आप नहीं बताएंगे और पुरानी को छोड़ देंगे। तो चलिए आज आगाज ही कुछ पुराने से करते हैं।
1: क्या बात है, हमें हमारे बचपनों में लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है?
0: ऐसा भी है।
1: तो ये सवाल है किसके लिए, मेरे लिए या हमारे लिसनर्स के लिए?
0: दोनों के लिए।
1: ओके,
0: और आपको देना है जवाब। तो भाई देखते हैं कि कितना लगाती हैं आरजे अंशिका, अरे सॉरी मेरे मेरा ही नाम आता है
2: क्या बात है,
0: आरजे आकांक्षा जी
1: सेल्फ लव कहते हैं इसे जनाब।
0: नो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये पता है इफेक्ट है, क्योंकि मैम जब वहाँ पे होती हैं तो वो हमेशा मेरा नाम लेती है ना, और मुझे हैबिट हो गई है कि वो मेरा नाम लेती हैं और फिर मैं सुनती हूँ तो ऐसे आरजे अंशिका बार बार मैं मैम के मुंह से।
1: हाँ, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ
0: तो
1: भाई, क्योंकि
0: वो वाला है,
1: ये जब प्यार इश्क मोहब्बत होता है भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है, इनको मैम से है तो मुझे भी
0: कोई शक नहीं,
1: मुझे भी किसी से है। तो जब मैं मतलब सुबह सुबह सो के उठती हूँ बस उन्हीं का नाम मेरे जहन में होता है, तो मैं इस बात को मतलब अच्छे से समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड।
0: यस, तो मुझे अपना नाम सुनने की आदत है, इसलिए अब ऐसा हो रहा है कि बार बार मेरे मुंह से मेरा ही नाम निकल रहा है, क्योंकि वो आज किसी और के मुख से नहीं निकल रहा है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और वैसे ही रहें, इंजॉय करें। बहुत सारी खुशी लेकर वो भी गई हैं और बहुत सारी खुशियां लेकर लौटे, ऐसी हमारी विश है। तो चलिए इसी
1: चेहरे की उनकी स्माइल और वो ग्लो बता रहा था।
0: यस, तो उसी वो ग्लो बना रहे, वैसा ही प्यार बना रहे, वैसे इमोशंस बने रहे, और वैसी खुशी तो 100% में 200% बनी रहे
1: जी।
0: उसी के साथ चलिए बता देते हैं, वरना हमारा
1: आज का सवाल क्या है।
0: हाँ, सवाल बताना है
1: या देखो
0: किसी को फंसाना,
1: ये कमाल है कि इनको सवाल ही नहीं याद है। चलो पूछो।
0: जिसकी बात मैं कर रही थी उसमें तो मैं भूल गई थी। अच्छा, वो आपने मुझे याद दिलाया।
1: मैं बैठी हूँ ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दारमदार देके गई है, दोनों कंधे मेरे भारी हो रखे हैं।
0: अच्छा,
1: चलिए सवाल पे आते हैं।
0: तो चलिए, अब आप बहुत कर रही थी ना पुराने सीरियल्स।
1: हाँ,
0: अब पूछते हैं सवाल, देखते हैं आपके पुराने कितना अच्छा है आपका।
1: हम भी अपना ज्ञान चक्षु खोल के बैठे हैं। चलिए
0: तो बताइए कि पहले बहुत पहले एक शो आता था, वो तीन बहनों की कहानी थी।
1: हैं,
0: क्या नाम था?
1: हरे राम हो।
0: पहली बहन का नाम, चलिए बहनों का नाम भी मैं बता देती
1: हूं। चलिए,
0: आप शो का नाम बता दीजिएगा।
1: तब भी ना हो पाई हमसे, हमें लागत है।
0: तो ये पुराने सीरियल्स मुझे कह रही थी।
1: नहीं नहीं, चलिए बोलिए नाम, देखते हैं।
0: अच्छा, ए, पहली का नाम वाड़ी था।
1: हाँ?
0: दूसरे का नाम, एक का नाम था
1: प्रज्ञा।
0: नहीं, पहले का नाम बता दिया आपने,
1: वाणी था। दूसरे का क्या था, बताओ ना, बताओ ना, मैं बता दो, बता दो।
0: तनु था।
1: तब वो नहीं हमको मालूम है। हम
0: उसमें, अच्छा चलो एक हिंट और दिया।
1: हाँ,
0: देखते हैं शायद बता लें।
1: हाँ,
0: उसमें एक थे मिस्टर वालिया, अब तो आपको बता ही लेना चाहिए।
1: आलू वालिया,
0: ये यही कर सकती है। आप नहीं बता पाएंगी, यू गिव अप।
1: नहीं, मैं बता रही ना, सीरियल का नाम था आलू वालिया, मतलब आलूया लिया, ऐसा कुछ करके था, समथिंग लाइक दैट।
0: लिसनर्स, इनसे तो नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठता, आप बताएं। तब तक
1: सवाल ही तो उठा है, उसी का तो जवाब ढूंढ रहे हैं। आलू वालिया, आलूया लिया।
0: अच्छा, आप रहने दीजिए, आलू और जो बुखार है जो भी, आप रहने दीजिए। अब हम आते हैं न्यू OTT सीरियल्स पे, तब तक हमारे लिसनर जवाब देंगे कि बताइए लिसनर्स, वो पुराना कौन सा शो था जिसमें मिस्टर वालिया थे और वो तीन बहनों की स्टोरी थी और उसका नाम भी बड़ा प्यारा था।
1: भाई नीना जी ने बोला है नागिन, क्या ये सही है?
0: सॉरी नीना जी, आपका जवाब सही नहीं है।
1: हे भगवान, मुझे लगा था अभी सही होगा तो मैं ऐसे गाना गा पाऊंगी, नागिन गिन गिन गिन गिन गिन।
0: फिलहाल हम कुछ और गिन लें प्लीज।
1: हाँ, क्वेश्चन।
0: यस, क्वेश्चन नहीं, ओटीटी सीरीज है कुछ हमारे पास जो मैं लेके आई हूँ अपने लिसनर्स के लिए।
1: तो अब मैं
0: थैंक यू सो मच। खैर ये मजाक था, आप दिल पे न ले।
1: अरे मैं दिल, लीवर, फेफड़ा, कलेजा हर एक जगह ले चुकी हूँ, सबसे पहले तो कंधों पे।
0: चलिए कोई बात नहीं
1: जी,
0: तो आज शुरुआत करते हैं कुछ टीवी शो से। एक बहुत ही प्यारा सा टीवी शो है जो शुरू होने वाला है, जिसका नाम है छुई मुई।
1: हैं?
0: यस, ये कॉमेडी ड्रामा है।
1: हाँ, तब
0: जो आप वुड ऐप पे देख सकते हैं रात को 9:30 बजे। बहुत ही प्यारा सा है और कॉमेडी होने वाली है जबरदस्त।
1: आरजी समता मैम पूछ रही है, मैं बताऊं?
0: बिल्कुल मैम बताइए।
1: हाँ, चूंकि आज आप लिसनर के रूप में हमारे चैट बॉक्स में उपस्थित है, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत
0: है अभिनंदन है। आप कैसी हैं?
1: हाँ नहीं, वो तो बहुत मस्त है, उनका ग्लू बता रहा था फेस का। प्लीज आप आंसर दें, ताकि भाई हम तो आलू आलूया लिया ऐसा कुछ बता रहे हैं।
0: आपको जो लगे बंद करिए, क्योंकि मैम सही जवाब देंगी। तो बिल्कुल भाई, हमारी मैम जवाब देंगी। तो मैम
1: मेरा आलू बंद करा दिया, कोई बात नहीं।
0: तो चलिए मैम तब तक जवाब देती हैं, और आई थिंक वो अच्छा ही देख लीजिएगा आप, मैम सही जवाब देंगी।
1: ठीक है, मुझे नहीं पता उत्तर। राही जी जो हमें नवाबों के शहर लखनऊ से सुन रहे हैं, कह रहे हैं आकांक्षा मैम जी मैं नई श्रोता हूँ, तो मुझे नहीं पता उत्तर। भाई मैं पुरानी श्रोता होने के बाद आरजे हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता है। बस मुझे एक ही बात पता है, आलू वाली नहीं, अब नहीं बोलेंगे सॉरी।
0: फिर आ गई आलू पे,
1: आगे आगे
0: चलिए कोई बात नहीं।
1: कसम से भाई, इतना कसम तो हमने भी नहीं खाई जितना आज मैम ने बता दिया।
0: थैंक यू सो मच मैम, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपकी अपनी आरजे समता जी ने।
1: जी हाँ, और महेंद्र दीपन जी जो हमें सुने राजस्थान से, इनका कहना है बताओ बताओ जल्दी बताओ मैम, हमको भी पता चले। और धर्मेंद्र मोहन जी ने भी भाई बता दिया कसम से, तो भाई सबने कसम खा ली है, हमने आलू खा लिया।
0: अब आप आलू ही खा सकती हैं, और मैम ने दिया है बिल्कुल करेक्ट जवाब, तो भाई तालियां बनती हैं।
1: हाँ तालियां, तो ताली बजाया जाए क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल बजाते हैं, नेकी और पूछ पूछ।
1: हो हो हो हो, मुझे ढूंढना पड़ रहा है ताली। अब एक बार तो नहीं बजेगी, अब बजेगी लगातार, 2-3 बार कम से कम बजेगी। इतना सही जवाब दे करके हमको जिसने बाहर निकाल लिया बचा लिया।
0: आपको क्यों बचा लिया?
1: क्योंकि हम आलू वाली आलू वाले कर रहे थे इतनी देर से।
0: तो देखा मैम ने कितना अच्छा जवाब दिया, तो ये क्लैपिंग मैम के लिए थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक शो मैंने आपको बता दिया जो कि है छुई मुई, और ये बहुत ही अच्छा कॉमेडी ड्रामा है, क्योंकि इसमें एक बार फिर आपको देखने को मिलने वाले हैं भारती जी, कृष्णा, गुत्थी, उन सभी की कॉमेडी। तो जरूर देखिएगा और इंजॉय करिएगा।
1: अच्छा, अगर कहीं हम लोगों ने छुई मुई देखा उसके बाद हम लोग कहने लगे उई उई, तो
0: ऐसा नहीं होगा।
1: नहीं होगा, मतलब हंसी के अलावा कुछ मिलेगा?
0: कुछ नहीं, बहुत ही जबरदस्त शो है।
1: ओके, हाँ पुराने चेहरे जो आ रहे हैं ना इस वजह से कहीं ना कहीं, और गुत्थी जिसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं, कुछ दिनों के लिए बीच में चले गई थी, फिर उसके बाद में आई थी वो स्ट्रीमिंग पे जिसपे आपको पेमेंट करके देखना पड़ता था, तो हो सकता है कि अभी आप फिर से एक बार इनको देख पाए। क्या बात है भाई, वैसे भी आज सुबह सुबह किसी का ग्लोइंग चेहरा देखा है, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा भाई, इतना एक ही दिन में मतलब क्या बोले, अच्छे वाले इत्तेफाक करा दीजिए। आरजी जी,
0: वो सॉन्ग है ना आकांक्षा जी, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या राज है जो छुपा रहे हैं?
1: नहीं नहीं मैम ने बोल दिया, अरे बस कर पगली, क्या रुलाओगी क्या? नहीं नहीं,
0: नहीं, नहीं आपको रुलाएंगे नहीं, आपको हंसाएंगे।
1: ये बताओ इस तरह कौन रोता है? ऐसा कौन रोता है?
0: हमारी मैम रोती भी अच्छे से, आपको पता है?
1: ना ना ना, भगवान ना करे वो कभी रोए।
0: अच्छा वाला, अच्छा
1: ना ना ना, हो ही नहीं सकता है।
0: खुशी के आंसू?
1: कतई नहीं।
0: अच्छा, खुशी के भी नहीं?
1: बिल्कुल नहीं,
0: गम के भी नहीं, मतलब आंसुओं की नो एंट्री।
1: हाँ, नो एंट्री,
0: स्माइली फेस की एंट्री।
1: हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं
0: जी, बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ये बातें करेंगे ना तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, और फिर जो बातें करनी है वो रह जाएगी।
1: हाँ,
0: तो इसलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारा जो टाइम है वही फटाफट से जा रहा है। तो दो मेरे पास, 3 और हैं, मैं बताऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे लव राशिफल और प्यारे से गेम के साथ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यू शो है जो कि आप देख सकते हैं Z5 ऐप पे, और इसका नाम आपको पता है क्या है? कैसी क्या? तेरी दिल लगी।
1: कैसी तेरी खुद, अच्छा दिल लगी है, चलो ठीक है।
0: ये तो मतलब अपोजिट वो उसमें बैठती है पोल में, इतने अच्छे में प्यारे से रोमांटिक शो का नाम बता रही हूँ, तो लीजिए।
1: क्यों बता रही हूँ, यही तो बात है,
0: क्योंकि लाइफ में ऐसे मतलब ऐसे शोज देखने चाहिए, एंजॉय करने चाहिए, अच्छा होता है,
1: रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती है। तो देख के हमें खुराफाती बनना चाहिए जो सास बहू वाला होता है।
0: नहीं वो तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये आप
1: एक्चुअल में अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से कौन से ऐसे सीरियल्स होते हैं, ओटीटी सीरीजेस होते हैं जो हमें देखने चाहिए एक्चुअल में माइंड को बिल्डअप करने के लिए?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसका जवाब देती हूँ कि कॉमेडी अगर आप पसंद करते हैं तो थ्रिलर, और सबसे अच्छा अगर वो किसी की बायोपिक हो, जैसे अभी हाल ही में आई थी,
1: बिल्कुल डेफिनेटली वो मोटिवेशनल होता है इसलिए।
0: अभी कृष्ण जी की आई हुई थी, मैंने अभी नेक्स्ट वीक बताया था उसके बारे में, मुझे नाम थोड़ा सा स्किप हो गया है, बट वो बहुत ही अच्छी थी और पूरी राधा कृष्ण के प्रेम पे आधारित थी, तो वो आप देख सकते हैं। किसी की बायोपिक आती है, जैसे अभी उनकी आई थी बाल गंगाधर तिलक जी की बायोपिक आई थी, मतलब ऐसे बहुत सारी आती रहती है, तो वो आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का शो आता है, वो आप देख सकते हैं, उसमें उनकी बायोपिक है, तो ये सारी चीजें देखने से मोटिवेशन मिलती है। और बाकी तो आपको पसंद है तो क्राइम भी, थोड़ी सी कॉमेडी भी, थोड़ा सा रोमांस भी, और थोड़ा सा थ्रिलर भी, सब कुछ, फुल ड्रामा। खैर चलिए बताते हैं नाम, वरना रह जाएगा काम। तो नाम मैं बता रही थी आपको, कैसी तेरी दिल लगी जरूर देखिए Z5 ऐप पे रात को 10 बजे, बहुत ही मस्त और जबरदस्त। और उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट शो देखना है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ये नेक्स्ट शो है ना, ये है थोड़ा सा थ्रिलर, थ्रिलर है जिसका नाम है गुमनाम है कोई। बहुत ही अच्छा शो है गुमनाम है कोई, जरूर देखिए, जो कि स्टार प्लस पे आने वाला है और बहुत मजे देने वाला है आपको।
1: क्योंकि मतलब ये कैसा है सीरियल है, क्या लगता है आपको यहाँ पे?
0: थ्रिलर है।
1: थ्रिलर है, ओके, मेरे को लगा हॉरर ना हो।
0: हॉरर भी है, नाम है, बहुत अच्छा सा थ्रिलर और हॉरर है, गुमनाम है कोई। चलिए थोड़ा सा हिंट में बता देती हूँ,
1: नाम है, हाँ हाँ आप बताइए। सॉरी,
0: तो जब ये इतना प्यारा गा दिया है तो प्यारा सा नाम भी मैं बता देती हूँ, रीजन भी बता देती हूँ थोड़ा सा, बट क्योंकि फिर अगर मैं सब बता दूंगी तो आपको देखने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए है गुमनाम है कोई, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें जो हीरोइन होती है वो मर जाती है और उसके बाद वो फिर मिलती है उसे एक नए रूप में, तो वैसे ही कुछ है गुमनाम है कोई। आप जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा, और जाते जाते बहुत अच्छे शो की एक नाम और देके जाते हैं, जो कि है अपना टाइम भी आएगा। इस शो का नाम है अपना टाइम भी आएगा। तो कैसे एक लड़की होती है जो सीधा गांव से निकलकर वो अपनी एक लाइफ बनाती है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। तो आप जरूर देखिएगा Z5 ऐप पे, इन सभी शोज को एंजॉय करिएगा। तो आज की ये थी हमारी अपडेट, अब चलिए करते हैं प्यारे से गाने के साथ वापस आने का वेट।
1: हाँ, लेकिन उससे पहले लेंगे तो कुछ मैसेजेस, क्योंकि हमारे साथ में और भी कुछ श्रोतागण जुड़ गए हैं और गाना भाई बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी के लिए डेडिकेशन में है, गाना वाकई बहुत प्यारा है, क्योंकि हमारे पास में आज कोई मिसिंग भी है तो स्पेशली उन तक ये गाना अगर पहुंच जाएगा तो काफी मुझे खुशी होगी।
0: अच्छा।
1: जी हाँ, और गाना आप भी सुनिएगा गौर से, हर एक लिसनर के लिए है भाई, हर एक लिसनर के लिए, मैं नाम एक एक का नहीं ले रही लेकिन आप सभी के लिए। और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं फिलहाल के लिए, लास्ट मैसेज हमने नीना जी का लिया था, महेंद्र दीपन जी हैं जो कि राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, नमस्कार मैम जी, नमस्कार आपको। तरन्नुम नाज जी हैं, और तरन्नुम आरजू जी हैं जो कि लिखती हैं गुड आफ्टरनून मैम, और महेंद्र जी लिखते हैं हम भी राजस्थान के नागौर जिले से सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो सही है मैम जी लोग, ओके। और उस्मान खान जी भी जुड़ गए हैं भाई, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं ये हमारे, बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो राही जी हैं नवाबगंज लखनऊ से, और गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड डियर सिस्टर भैया बोला है भाई इन्होंने, संबोधन काफी अच्छा है।
0: आपको भी, कैसे हैं आप?
1: जी हाँ, संबोधन काफी अच्छा है। और इसके बाद में हम सभी की प्यारी आरजी समता जी भी हमारे साथ में बनी हुई हैं, और कसम से बोला इन्होंने, फिर नीना जी का कहने भैया सब लोग कसम का है खा रहे हैं, तो कोई खा नहीं रहा है, बस सीरियल का नाम बता रहा जा रहा था। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे बीच में जो जुड़े हैं उससे पहले भैया एक बहुत ही प्यारा सा चुटकुला आया हुआ, तो जरा आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि सुन सहेलियों की बात हुई, सहेलियों का ससुराल बहुत फेमस होता है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा चुटकुला आया हुआ है पंडित जी की ओर से, लिखते हैं हम अकेले ही चल रहे थे जिंदगी का दही जमाने, होता है ना हम लोग सोचते हैं हम बहुत कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया हम कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अकेले ही चले थे जिंदगी का दही जमाने, रास्ते में ससुराल नाम की बूंदी मिल गई और जिंदगी का रायता बन गया। स्वादिष्ट था वैसे।
0: हाँ, स्वादिष्ट तो था, लेकिन अगर भैया को छोड़कर भाभी पढ़ेंगी तो फिर अस्वादिष्ट भी हो सकता।
1: ओह माय गॉड, शुक्र है कि अभी भाभी जी नहीं सुन रही हैं। भाभी जी क्योंकि घर पर हैं। हाँ, और हाँ, हाँ। इसके बाद में महेंद्र जी ने जो बोला है, चलिए अब आपका गाना मतलब पहुंचाया जा रहा है। और आज गेम सेक्शन है तो कहीं जाइएगा नहीं, सभी बने रहिएगा। इट्स कुमार साहब भी आ गए हैं एमपी रीवा से, हे गोंडा, यानी कि ये इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। और इसी के साथ में प्रमुख कुमार जी भी जुड़ चुके हैं लुधियाना से। तरन्नुम आरजू हैं, हाँ जी तरन्नुम आरजू हैं। और अभी बढ़ते हैं आगे और इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। गाना बहुत ही प्यारा है और आप सभी के नाम है, खास करके उन प्यारे लोगों के लिए जिनके लिए प्ले किया जा रहा है। बाकी मैंने नाम बता दिया है, अब अपने अपने आप को आप इस फेम में ढाल लीजिएगा और इस गाने के रूप में हमारी जज्बातों को आप तक मतलब हम पहुंचा रहे हैं और इसको एंजॉय करिएगा।
0: तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी श्रोताओं, हमारे साथ में तरन्नुम नहीं तमन्ना जी है भाई, मैं कैसे बोल सकती हूँ, तमन्ना भाटिया जी है, मैंने इनको उपनाम भी दिया हुआ है, तमन्ना और आरजू जी, जो कि हमें सुनती हैं उन नाव से। जी हाँ, आप भी हमारे साथ में मौजूद हैं और बनी हुई हैं। फिलहाल ये गाना चल रहा है और इसी बीच में एक अनाउंसमेंट करेंगी हमारी अंशिका जी।
1: बिल्कुल, तो सॉन्ग के बीच में हम जब भी आते हैं तो कुछ बढ़िया सा लाते हैं, और बढ़िया सा ये है कि भाई हो रहे हैं 2:13 और बिगुल बज चुका है। बिगुल यानी कि आपके गेम सेक्शन का, तो गेम सेक्शन को हम करने वाले हैं स्टार्ट, और अब फटाफट से सभी अपनी कमर कसकर हो जाएं तैयार। तो पहला वर्ड हम भी आपको ये सॉन्ग ख़त्म होते होते देंगे, तो ये अनाउंसमेंट इसलिए कि आप रेडी हो जाइए और सॉन्ग के ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए। चैट बॉक्स पर नज़र रखिए, आपको आपका वर्ड मिलने ही वाला है बस।
0: ओके okay.

0: बिल्कुल कैसी बेकरारी है, और हमें भी बहुत बेकरारी थी गेम को स्टार्ट करने की। तो गेम हो गया स्टार्ट और आपको आपका पहला वर्ड मिल गया है जो कि है यूपी बिहार। तो आज आपको पहला वर्ड मिला है यूपी बिहार, तो फटाफट से उससे सॉन्ग लिख करके भेजें। और साथ ही साथ में इसके साथ हम आपको लव राशिफल की तरफ भी ले चलते हैं। चलिए लेकर चलते हैं लव राशिफल की तरफ आपको। तो वही गेम के साथ हमारा लव राशिफल भी हो गया है स्टार्ट। तो चलते हैं और बताते हैं आपको कि इस प्यारे से सॉन्ग जब तक की आता है और हम इंतज़ार करते हैं तब तक लव राशिफल।
1: तो गाने आने शुरू हो गए हैं और पहला गाना हमें मिल भी गया है। और एक बार में एक गाना होता है या दो गाने?
0: एक बार में दो गाने।
1: ओके, तो देखते हैं कौन कौन विनर बना है, तब तक आप अपना लव राशिफल पहुंचाएं।
0: जी, तो चलिए लव राशिफल आपको सबसे पहले पहुंचाती हूं जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ चल रहा कोई भी पुराना झगड़ा आज दूर हो जाएगा, आपसी तालमेल बना रहेगा, किसी भी बात को जरा से ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को शांत रखें जिससे कि गलतफहमियां थोड़ी सी कम हो जाएं। बिल्कुल भाई ऐसा ही रखना चाहिए। और दूसरा है वृष राशि वालों के लिए कि आज आपकी समझ और सहज जो है वो आपकी लव लाइफ को बेहद खूबसूरत बनाएगी, और साथ में पार्टनर के साथ डांस करने या फिर घूमने का प्लान भी बन सकता है। तो जल्दबाजी में कोई भी वादा ना तोड़ें, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो वो आपको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए है कि लव लाइफ में आज रोमांस और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, कोई भी पुरानी रुकी हुई बात आज दोबारा शुरू हो सकती है जो आपकी गलतफहमियों को पूरी तरह साफ कर देगी। तो शादीशुदा लोगों के लिए रिश्ते में मिठास रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए है कि अगर आप सिंगल हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी ज़िंदगी में किसी पुराने प्यार की वापसी नए रिश्ते की दस्तक के साथ हो सकती है। ओ माय गुडनेस, और लिखा है पार्टनर से कोई सरप्राइज़ या खूबसूरत तोहफा भी मिल सकता है। वैसे मेरी तो कर्क राशि नहीं है, बट जिनके भी कर्क राशि है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब हो गई हैं राशियां और आगे भी हम बढ़ेंगे, आगे की राशियों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूछेंगे
1: जी
0: और पूछेंगे आरजे आकांक्षा जी से
1: जी।
0: कि वो दो कौन हैं जिनके सॉन्ग्स हम सुनने वाले हैं।
1: जी हाँ, तो जैसे ही हमने यूपी बिहार का नाम लिया भैया, और यूपी बिहार से एक बाहुबली आ गए, मतलब कि प्रबल जी की एक डिमांड हम तक आ गई और उसी से कहीं ना कहीं यूपी बिहार से ही ताल्लुकात रखती हैं हमारी नीना जी, उनका भी एक सॉन्ग हम तक आ गया। तो ये दोनों हुए हैं फिलहाल आज के हमारे विनर। तो चलते हैं इनकी डिमांड यानी कि इनके विनिंग सॉन्ग की ओर, और फिर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड लेकर के। और भाई हमारे कुमार साहब है जो कि हमें एमपी रीवा से सुनते हैं, कहते हैं पब्लिक जुट जाओ भाई, फटाफट से गाने ढूंढो और तड़का लगाओ। क्या बात है, तरन्नुम नाज, सॉरी यार,
0: तमन्ना
1: अर्जू जी, जैसे आज आप अपने नाम को बार बार ले रही हैं और हम इनको तरन्नुम तरन्नुम बुला रहे हैं। भाई ये हमें उन्नाव से नहीं मलिहाबाद से सुनते हैं, हमने जानबूझ के मलिहाबाद का नाम नहीं लिया था। खाने पीने का नाम कोई ना ले भाई, मौसम बड़ा अच्छा है और आम शो छोड़ के हम जा नहीं सकते, लेकिन आप बिल्कुल सुन सकते
0: मुझे
1: हैं।
0: मुझे लगा था मुझे ही ऐसा है, आपको भी है
1: भाई। फीवर होता है कभी कभी किसी के प्यार का, तो बस ऐसा ही कुछ समझ
0: आम के प्यार का फीवर,
1: आम के प्यार का, या फिर कोई नहीं है उसकी यादों के प्यार का, कुछ भी समझ सकते हैं। फिलहाल विनिंग सॉन्ग है हमारे पंडित जी का यानी कि प्रबल जी का, एंजॉय करते हैं, फिर नीना जी आपके सॉन्ग तक आएंगे।

0: चैट बॉक्स देख के आपको पता ही चल रहा होगा, लेकिन हमें लगता है नेक्स्ट वर्ड की बारी आ गई है।
1: बिल्कुल, तो नेक्स्ट वर्ड के साथ आए हैं और नेक्स्ट वर्ड आपको देते हैं। देखिए मौसम बहुत प्यारा है, तो वर्ड मेरे मन में जो आया इस प्यारे से वेदर को देखते हुए वो आया है मौसम। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है मौसम। फटाफट से मौसम से कोई बढ़िया सा सॉन्ग लिखकर भेजें, तब तक हम ये सॉन्ग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

हाँ दोस्तों, और मौसम से हमारे पास में कई सारे गाने आ गए हैं, जैसे कि हमारे बीच में आ गया है सबलू सावन जी, जो सांता क्रूज मुंबई से हमें सुने, उनका डिमांड, और ये विनिंग हुए हैं। धर्मेंद्र मोहन भारती जी सेकंड विनर हुए हैं। प्रीति शुक्ला जी, आप थोड़ी सी देर कर गई हैं कुछ सेकंड्स के माध्यम से। प्रबल जी, आप भी थोड़े से सेकंड्स के माध्यम से पीछे रह गए फिलहाल। नीना जी, आप भी थोड़ी सी लेट कर गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस में आप लोग ट्राई करिएगा। अभी बढ़ते हम अपने सांता क्रूज वाले लिसनर की डिमांड की ओर, यानी कि अपने प्यारे सबलू जी के सॉन्ग के साथ में, मौसम वाले गाने के साथ।

0: आज मौसम बड़ा बेईमान है।
1: बिल्कुल बेईमान है, और लेकिन हमारे पास में भाई वो है जो हमेशा से इस शो का दस्तूर रहा है, और हम भी काफी मतलब आतुरता से अपना भी राशिफल जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई बात है लव की, और लव में भाई बात ही अलग होती है।
0: उछल रही है, देख रही हूँ, अगर लिसनर्स अभी टीवी होती तो देख सकते थे कि लव राशिफल के नाम पे क्या हाल है इनका। तो चलिए बेसब्री को तोड़ते हैं, वैसे आपकी राशि मैं अभी नहीं बताऊँ।
1: मेरी राशि सबसे पहले आती है, आस या आकांक्षा, और मेष राशि होती है। ये
0: मेष राशि वालों के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, आपने सुना नहीं।
1: माय गॉड, मैं सच में प्यार में कहीं खोई हुई थी क्या?
0: आप सॉन्ग्स के प्यार में खोई हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ,
1: जी,
0: जो कि अब है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए है कि आज आपकी लव लाइफ में उत्साह और रोमांस बना रहेगा। कोई अचानक बना प्रोग्राम या चुलबुली बातचीत आपके दिन को खुशनुमा बना देगी। बाहर के तनाव या काम के गुस्से को पार्टनर पर बिल्कुल ना निकालें, वैसे ये तो सही बात है। कन्या राशि वालों के लिए है कि अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर आप कोई गंभीर या बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना आपके मन के बोझ को हल्का करेगा। रिश्ते में मिले जुले भावनात्मक पल मिल सकते हैं। तुला राशि की तरफ चलते हैं, और तुला राशि वालों के लिए है कि रिश्ते में आपके बहुत ही खुशनुमा पल बीतेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आप आपसी सामंजस्य अपने रिश्ते में रखेंगे। अपनी भावनाएं खुलकर बताएं और दूसरे की भावनाओं को भी खुलकर समझें। और वृश्चिक राशि के लिए है कि प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद ही अच्छा है, गहरा जुड़ाव होने वाला है। अगर कोई पुराना इशू कोई चल भी रहा है आपके रिश्ते में, तो उसे सुलझाने के लिए आज का मौका सबसे बेहतरीन है। बातचीत के दौरान अहंकार या ईगो को बीच में ना आने दें। भाई बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि ईगो जो होता है वो हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो बहुत ही काम की बात है राशिफल में, और जो अपने राशिफल के लिए बहुत ज़्यादा है बेकरार और कर रही है इंतज़ार, उन्हें हम अभी थोड़ा और इंतज़ार करवाएंगे और चलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, जो कि हमें मिला था मौसम वर्ड से।
1: हाँ, और फर्स्ट सॉन्ग हमने बजाया सबलू जी का, जो कि हमें सांताक्रूज मुंबई से सुन रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बिल्कुल है, वाकई है। और धर्मेंद्र मोहन जी ने भाई एक गाना भेजा है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, और यही सेम सॉन्ग हमारे पास में आया हुआ है, हमारे प्यारे लिसनर हैं, और इन्होंने इस पर बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। महेंद्र जी, जो दीपन राजस्थान से हमें सुन रहे हैं,
0: हेलो महेंद्र जी,
1: जी लिखते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे फिल्म जानवर से है, और ये गाना बदलते मौसम और बदलते हुए वादों की खूबसूरती को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो भैया दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सुनाई जरूर देंगे हम आपको अपने शो के माध्यम से। और इसके अलावा जिन जिन के सॉन्ग रह गए भैया, नेक्स्ट ट्राई जरूर करिएगा। सुजीत एस जी हमारे साथ में बने हुए हैं, कह रहे कौन सा शो चल रहा है और इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। तो आपने पार्टिसिपेशन बखूबी किया है, बस थोड़े से लेट हो गए हैं, क्योंकि फर्स्ट दो सॉन्ग हम लेते हैं, और एक बार जिसका सॉन्ग प्ले हो जाता है दोबारा उसका सॉन्ग नहीं प्ले किया जाता है, क्योंकि हमें सभी पे बराबर नजर रखनी होती है, मतलब सभी की डिमांड्स को हमको लेना होता है। तो अभी हमारे पास में चार डिमांड लगभग अभी ये कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर गाने आप लोगों ने भेजे, सुजीत एस जी ने और अनुष्का जी ने सेम सेम सॉन्ग भेजा था, क्या मौसम आया है ये मौसम भी गया। ओके नीना जी तो बता रही है ये मौसम भी गया। खैर चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाली इस प्यारे से नगमे की ओर, और फिर आते हैं फिर आपको बीच में ही एक क्या अभी देंगी या कुछ वक्त लगाएंगी?
0: बिल्कुल वक्त लगाएंगे और सॉन्ग के मिड में देंगे, तो सुनिए और ध्यान चैट बॉक्स में रखिए।

वगैरह हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, आपको ऐसे ही सॉन्ग सुनाते रहेंगे। तो चलिए लिसनर्स, आपका नेक्स्ट वर्ड बता देती हूँ जो कि है वादा। आपका नेक्स्ट वर्ड है वादा, तो फटाफट से वादा वर्ड से सॉन्ग लिख कर

हाँ दोस्तों, गाना बहुत प्यारा बज रहा है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे भाई, हम भी नहीं बदलेंगे। और आप लोगों की डिमांड आई, वादा ना तोड़, लेकिन एक बार अगर इसके आगे कुछ वर्ड आप जोड़ देंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग यही गाना सुनना चाहते हैं। और एक नहीं, 5 से 6 लोगों ने सेम सॉन्ग की डिमांड की है, और हमसे बताया भी गया है कि अगर किसी ने वादा तोड़ने की जरूरत की तो उसका मुंह तोड़ दिया जाए। एंजॉय करते रहिए।

हाँ मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो भाई हम तो नहीं बदलने वाले हैं और पूरी तैयारी से आए हुए हैं कि कतई बदलने की कोशिश और जरूरत कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने भाई बता दिया है जो वादा तोड़ेगा उसका भाई क्या हाल होगा, उन्होंने बता दिया हंसते खेलते हुए। फिलहाल बिल्कुल सही है। और मोदी की तरह तुम, ओहो क्या क्या लिखते हैं आप लोग। और हाँ, इस गाने की डिमांड किसी एक ने नहीं की, आप सभी के सहमति के साथ में भाई ये गाना ट्यून होने वाला है। तो

0: ये तो बता नहीं सकते ना ऑन एयर, बस चुराई है किसी ने और वो जानता भी है, इतना काफी है।
1: चलिए तो फिर
0: तू वादा ना तोड़, स्टे ट्यून गाइस, वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू आप सभी का।

0: अंशिका जी, मैं भूल गई कि नेक्स्ट वर्ड भी देना है।
1: शुक्र है आपको याद आ गया।
0: हाँ, माय गॉड।
1: तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देते हैं आपको, और नेक्स्ट वर्ड है आपका कसम।
0: ओके।
1: तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो बहुत ही प्यारा सा है, और नेक्स्ट वर्ड है कसम।
0: कसम कसम चूलम बसम। याद आ गया मुझे बचपन वाला, सॉरी।
1: हाँ।

0: भाई वादा न तोड़, और इसीलिए हम भी अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे आपको लव राशिफल बताने का। तो आ गई हूँ वादे को लास्ट, बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट वे में पूरा करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही राशियाँ बची हुई हैं। तो अब बारी आती है किस राशि की, कौन सी राशि बताइए आरजे आकांक्षा जी।
1: कहाँ तक हुई थी?
0: हुई थी वृश्चिक राशि तक।
1: वृश्चिक के बाद ओहो, मैं आ गई।
0: वाह लो,
1: मकर।
0: मकर नहीं, धनु।
1: जाओ दादा, हम अपने ही काली अपने
0: ही रहती है। चलिए,
1: मेरी दुनिया मेरे में ही समाई हुई है।
0: अच्छी बात है। अब चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ, कि आज आप अपनी जो है सेंसिटिविटी और आपके रिश्ते के बीच में थोड़ा सा फंस सकते हैं, इसलिए अपने साथी के साथ बातों को सिर्फ कहें नहीं बल्कि एक अच्छे श्रोता की तरह सुने भी, और फिजूल की बहस में ना पड़े। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सजेशन है, कभी भी फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वो बहस आपकी पत्नी श्री से हो रही हो तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए।
1: और अगर फिजूल का कहीं कुछ खाने को मिल जाए दोस्तों के बिल से तो
0: वो करना चाहिए।
1: ओहो, तो फिर दिल खोल के खा
0: लो। खोल करके नहीं, वो दूसरा कुछ है। छोड़िए। अब आते हैं, लास्ट नहीं है ये हमारा, लास्ट है दो राशि पहले है, जो कि है जिसके लिए आरजे आकांक्षा कर रही थी बहुत देर से इंतजार, और हो रही थी बहुत ज्यादा बेकरार।
1: क्योंकि बारी हमारी है।
0: बारी तो आप ही की है।
1: हाँ, तो जनहित में जा रही है। चलिए सुनते हैं अपनी राशि की। मैं पहली दफा मैं सुनने जा रही हूँ, वो भी लव राशि फल।
0: अच्छा, ओह, इसीलिए एक्साइटमेंट हो।
1: बिल्कुल, प्यार मोहब्बत की बात है, हम ना वहाँ बेकार है फिर हमारा जिंदगी में होना।
0: चलिए सुनाते हैं लव राशि फल, वरना ये कहीं और लेके चली जाएंगी, और वो हमें नहीं जाना है, हमें लव राशि फल बताना है
1: जी।
0: तो लव राशि फल बताते हैं, मकर राशि वालों के लिए है कि आपके मन के संबंधों और भावनाओं को आज एक नई और सकारात्मक दिशा मिलेगी। पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आप रिश्ते में मिठास घोलेंगे। ओके, रिश्ते में मिठास घोलेंगे,
1: वो तो हम 24 घंटे घोलते रहते हैं, कभी चीनी से, कभी शक्कर से, कभी मिश्री से, कभी अपनी आवाज से। आपका क्या कहना है?
0: चीनी और शक्कर अलग अलग होती है?
1: चीनी शक्कर मतलब दो नाम है।
0: अच्छा, दो नाम है।
1: हाँ, तो दो नाम है, और साथ में मैं ये नहीं समझ पाती, लोग बोलते हैं आपकी आवाज बहुत ही मीठी है, तो क्या मैं बोल दिया करूँ चाय बहन मीठी हो जाए तो मीठी हो जाएगी वो?
0: हाँ, हो जाएगी।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: ओह माय गॉड,
0: फिर चीनी जो भी मतलब,
1: फिर मुझे लगता है कि हमारे देश में जो शुगर की शिकायत बढ़ रही है वो खत्म हो जाएगी। जिम जाने वालों को जिम के मतलब डाइट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरी आवाज कितनी कामगार है।
0: हो सकती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ, आगे बढ़ते हैं।
0: और नेक्स्ट राशि है
1: कुंभ।
0: और कुंभ राशि भाई किसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हैं, उनकी भी कुंभ राशि।
1: एक बात और बताऊं, बहुत बड़ी वाली खास बात है,
0: बताइए।
1: देखिए, राशि हम दोनों की ऐसे आती है, पहले मेरी फिर उनकी, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ पहले उनकी फिर हमारी।
0: इंटरेस्टिंग।
1: हाँ, तो एक जिस दिन होती है उसके नेक्स्ट डे मेरी होती है।
0: यस, वो मुझे पता है। तो दिल से निकलती है और दिल तक जाती है, तो आई होप कि वो भी सुन रही हो, जिनका ये जिनकी राशिफल है, और आई होप सुन रही होंगी। तो आज बड़ा अच्छा सा है कुंभ राशिफल, तो चलिए कुंभ राशि के लिए पढ़ते हैं कि आज आपके निजी संबंधों में आपको धैर्य रखना है। आपके रिश्ते की सफलता की कुंजी आपका धैर्य और प्यार होगा। बातचीत के दौरान जो शब्द हैं वो आपके रिश्ते में एक खुशी को लाएंगे, और साथ ही साथ हंसी मजाक और दोस्ती और प्यार आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। ओ माय गॉड।
1: और इसी गुडनेस के साथ में एक सवाल आया हुआ है, कुमार साहब लिखते हैं, कुंभ राशि में मेरा है तो आज बताना कि भंडारा खाने को मिलेगा कि ना मिलेगा जी।
0: अब ये तो आपके लव राशि फल में नहीं लिखा हुआ है, किसने पूछा वैसे?
1: इट्स कुमार साहब है, लेकिन कुमार साहब अगर आपसे लव करने वालों की कमी नहीं होगी तो जरूर वो आपको भंडारा खिलाएंगे। उम्मीद है कि काश आप यहाँ होते तो आपके प्यारे दोस्त यानी हम और आरजे अंशिका जी आपका भंडारा जरूर करवाते।
0: तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ
1: जी,
0: जो कि है
1: मीन राशि।
0: और मीन राशि वालों के लिए है कि आज आपका भावात्मक रूप से खुद को मजबूत करने का दिन है। पार्टनर के साथ भविष्य की कुछ योजनाएं बनाएंगे और साथ में पॉजिटिव चर्चा भी करेंगे। दिल के मामलों में भरोसा रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि अतीत कभी लौटकर वापस
1: नहीं आता है। और भाई जो जो विनर हुए हैं उनको बता देते हैं कि कौन कौन विनर हुए। सेम सॉन्ग की डिमांड इस बार भी काफी लोगों ने की है। और दूसरा जो सॉन्ग है,
0: मैं बताऊं?
1: बेशक बताइए।
0: कसम खा के कहो।
1: कसम खा के कैसे कहेंगे? जब मुंह में कसम है तो हम कहेंगे कैसे?
0: नहीं खागे ही कहो, अब तो ये वो है मतलब
1: सुपाच्य भोज है ये?
0: नहीं नहीं ये सॉन्ग है कसम अच्छा, खाके कहो।
1: नहीं मुझे लगा कसम जो एक तरह का वैरायटी ऑफ फूड है।
0: आप खाने के बारे में ही सोचती हैं।
1: मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खाने से शुरू होती है, खाने पे खत्म होती है। लेकिन वो खाना किसी का,
0: जो मुझे याद आ गई,
1: वो खाना किसी का प्यार भी हो सकता है भाई।
0: हाँ हो सकता है,
1: हाँ, बेशक हो सकता है।
0: वैसे जब मैं ऐसे कहती हूँ ना तो मैम कहती हैं कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग
1: खाने के लिए जीते।
0: आपने मुझे उनकी याद दिलाई।
1: मैं बोथ, दोनों में, हाँ, मैं नहीं नहीं खास करके मैं खिलाने के लिए जीती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए फिलहाल खाने खिलाने सबके लिए जीते हैं और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं।
1: जी हाँ, और बता दें कि किस किस ने इस गाने की डिमांड की है, मतलब कौन कौन विनर हुए हैं। तो सबसे पहले हैं इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, और हमारे साथ में जुड़ गए हैं भाई आरजी अमन जी, जो खुद एक स्टार है हॉट स्टार रेडियो, हॉट स्टार से मतलब ये शो करते हैं, और ये हमें सुनते हैं बिहार से, और इनकी भी यही डिमांड है। इसके बाद में है गीता श्रीवास्तव जी, एंड मैं गीतू जी ने भी एंटी मार दी है, कसम खा के कहो। ठीक है, खा लिया हमने कसम, अभी हम कहते हैं कि नहीं आपको सुनाएंगे। चमन जी ने भी सेम, हाँ, और तमन्ना, अच्छा कि आपने, वरना हम अभी तरन्नुम बोल देते। तमन्ना भाटिया जी ने भी यही डिमांड की है, तमन्ना आरजू जी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे वो होगा हमारे अनुष्का जी और प्रमुख कुमार जी का, जो कि लुधियाना से में सुनते हैं, सेम सॉन्ग इन दोनों के हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा जी ने भी एंट्री मार ली है, आपका भी वेलकम है। आरजी सोनी जी भी जुड़ चुकी हैं गोपालगंज से, आपका भी मोस्ट वाला वेलकम है। अब बढ़ते हैं इस गाने के साथ,
0: तो चलिए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा सॉन्ग कसम खा के कहो।

बिल्कुल, तुमको हमसे प्यार है। और चलिए नेक्स्ट सॉन्ग सुनते हैं जो कि हमारी प्यारी सी लिसनर ने भेजा था, जिनका नाम है अनुष्का जी। कसम की कसम, और उनके साथ ये सॉन्ग प्रमुख जी का भी था।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि कसम की कसम है, कसम से हमें प्यार है सिर्फ तुमसे। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था रिस्पॉन्स। और अब चलते हैं हम आई थिंक लास्ट सॉन्ग के
1: क्योंकि भाई इन्होंने कहा हमारा गाना ये नहीं ये था और इन्होंने सेकंड मतलब विनर हुए थे हमारे ये। और ये कोई और नहीं है आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से। तो अब चलने का वक्त भी हो रहा है कहीं ना कहीं, आपको क्या लग रहा है?
0: वक्त हो रहा है और घड़ी इशारा कर रही है।
1: जी हाँ भाई, स्टूडियो क्लॉक हो गया है 2:53 और पूरे के पूरे 20 सेकंड। तो अब क्या कहती है चले?
0: चलते हैं, लेकिन चलेंगे हमारे जो लिसनर हैं अमन जी उनके सॉन्ग के साथ और सॉन्ग को सुनेंगे और बहुत जल्द आपको बाय-बाय बोलने आएंगे। वैसे बोलना तो नहीं चाहते हैं बट बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर आज जाएंगे नहीं तो फिर वही वाला है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी वक्त हुआ है अमन जी के सॉन्ग का।
1: ओके, तो फिर लीजिए अमन जी आप तक पहुंचाते हैं आपका ये फेवरेट वाला सॉन्ग उदित नारायण और श्रेया घोषाल जी की आवाज में, अ ब्यूटीफुल लव सॉन्ग इन रेनी वाला सीजन। एंजॉय करिए।

खुदा की कसम बहुत प्यार आया है तुम पे, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि श्रेया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग जिससे कि आज हम अपने शो को एंड करेंगे। तो भाई सुपर से भी ऊपर वाला ये था आपका सैटरडे, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा लिसनर्स, और अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और इस रेनी रेनी वाले प्यारे प्यारे वाले मौसम को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मौसम है बेहद ही प्यारा बरसात का। तो इसी मौसम के साथ अब मुझे यानी कि अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी आपसे मंडे को। मंडे को मिलते हैं लजीज लजीज प्यारी प्यारी रेसिपीज के साथ, और तब तक के लिए इस सॉन्ग को सुनते हैं और इजाज़त चाहेंगे।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

दो बीजीएम के साथ में दस्तक दे दी है मैंने। पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी के फोन इनफॉरमेशन कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा में। मौसम है ऑसम ऑसम, मौसम के साथ में मेरा मूड भी बहुत ही अच्छा और प्यारा है। गाना भी मैंने आज अपनी प्लेलिस्ट से बहुत ही खास वाला निकाला है और समवन स्पेशल के लिए हो सकता है अगर आप किसी को डेडिकेशन करना चाहें तो खूबी कीजिएगा। गाना बहुत ही प्यारा है वाकई यकीन मानिए। लेकिन उससे पहले बता दे भाई आज है दिन शनिवार, सैटरडे वीकेंड का वार और इस वार में ताबड़तोड़ आपके कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन भाई देखते हैं आज लकी कॉलर कौन बनेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन उससे पहले इसलिए हमने टाइम से पहले एंट्री मार ली है ताकि हम आप सभी तक अपना ये प्यारा वाला प्लेलिस्ट का सॉन्ग पहुंचा सकें। और इसी बीच में एक प्यारी सी सूचना जनहित में जारी वाली सूचना, वही स्टूडियो का नंबर वही है, आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, नंबर सेम 6393316429 यानी कि 6393316429 और आप सभी तक मेरी पसंद का मेरी प्लेलिस्ट का सबसे सुंदर वाला गाना, हाँ जी हमें बड़ा पसंद है, आप भी एंजॉय करिए ना, हम अकेले क्यों करें। और फिर देखते हैं आज के लकी कॉलर हमारे कौन बनते हैं, कॉल्स तो आना शुरू हो गए हैं लेकिन उससे पहले ये गाना सुनते जाना।

0: हाँ जी, और देखते हैं आज के हमारे पहले लकी कॉलर कौन बने हैं। हेलो
1: हेलो मैम, कैसे हैं आप?
0: जी बहुत ही उम्दा है, आला है, और क्या बोले ना, मेरे पास में कोई साली है ना साला है, ना ही घर वाला है।
1: गोंडविया भाषा बोलो, बिल्कुल हमारे समझिम नहीं आवत है, आप कहाँ कह दी हो।
0: चलो अब हम बताए दई थे आपसे कि हम बहुत नीमन मानी और बहुत ज्यादा चौकस हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं, और साथ ही साथ में आपकी कॉल लगी। सबसे पहले तो आपको इसकी बधाई हो, आप अपना शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: अरविंद मौर्य।
0: जी हाँ, अरविंद मौर्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मनकापुर से। वैसे मनकापुर में क्या मनका होता है सब कुछ, इसलिए उसका नाम मनकापुर है?
1: मन को भाने वाला शहर है मैम।
0: ओके ओके, क्या सुनना चाहेंगे साहब?
1: आप भी कभी हमारे मनकापुर में आएंगे, आपका मन इतना वहाँ लग जाएगा कि आपको फिर गोंडा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप अपना एक नया स्टूडियो वहीं खोल लेंगे।
0: अच्छा, देखिए जनाब, जहाँ की पैदाइश होती है, इंसान कहीं भी चला जाए वहाँ से रابطہ कभी छोड़ ही नहीं सकता है, बस इतना कहेंगे।
1: हाँ, ये आपकी बात जायज है मैम, बट वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का शादी होता है तो उसका जो मायका होता है वही सब कुछ हो जाता है उसका।
0: जी जी जी,
1: अपना घर परिवार सब कुछ वो हो जाता है।
0: जी आप क्या सुनना चाहेंगे सर, आज आपकी डिमांड क्या है?
1: बाहुबली का एक सॉन्ग है मनोहरी।
0: मनोहरी?
1: हाँ।
0: कौन से बाहुबली का, पुराने मतलब पहला या फिर दूसरा?
1: बाहुबली 2 का है।
0: ओके, मनोहारी सॉन्ग। चलिए फिर देखते हैं ये मनोहारी में क्या सुनना चाहते हैं, ये बाहुबली का ही है।
1: हाँ जी, हाँ जी, मनोहारी करके एक सॉन्ग है। नहीं, मनोहारी
0: है, मुझे मालूम है, मैं तो आपसे जस्ट मजाक कर रही थी, मेरी आदत है मजाक करते रहने की, हंसते खेलते रहने की और आपको भी हंसाने की। चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को। थैंक यू।
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम।

0: जी हाँ, और ये गाना आपने अभी एंजॉय किया हमारे फर्स्ट वाले लकी कॉलर की डिमांड पे। और अभी देखते हैं हमारे साथ में कौन नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: मूसा मैम।
0: क्या नाम है?
1: निशा।
0: अच्छा अच्छा, निशा जी हैं। हम कह रहे हैं ये मूसा जी कौन है भाई, ये तो बहुत पुराने जमाने में हुआ करते थे। निशा जी, आप कहाँ से हमें सुन रही हैं? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी।
1: गोंडा से।
0: क्षेत्र का नाम बताएं। ये आपके क्षेत्र का नाम है?
1: मुझे नहीं पता।
0: भाई गाने की तलब ऐसी भी हो सकती है, आज मैंने निशा जी से जान ली है। साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। वैसे किसके साथ की बात कर रही हैं आप, बता सकती हैं तो बताना चाहे तो बता दें। आप किसके साथ की बात कर रही हैं?
1: सिंपल मैम की
0: शाम में
1: छोड़ेंगे हम। किसका? सिंपल मैम का।
0: अच्छा अच्छा, शाम में जो आपकी सिंपल मैम आती हैं उनके शो की बात कर रही हैं आप।
1: जी,
0: जी जी, इसका मतलब इन शॉर्ट में आप कहना चाहती हैं कि आप फरमाइशी का कोई भी डिमांड छोड़ेंगी नहीं, आज सुन के ही रहेंगी। जी जी जी जी जी जी, फैसला आपने कर लिया तो हमने भी फैसले पे आपके कहा कि ये गाना सुनी लेते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, शुक्रिया।

जी हाँ दोस्तों, और ये निशा जी की डिमांड हमारे पास में आई हुई है और हमारे साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से सभी का नाम ले लेते हैं। तो मुस्तफा जी सऊदी अरेबिया से, मुस्तफा जी कॉल मिलाना पड़ेगा आज, आपको अच्छे से पता है शनिवार है, बिना आपकी आवाज हम गए गाना नहीं प्ले कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी। और इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, नेहा जी हैं बहराई से, हमारी मंगू जी और तमन्ना भाटिया जी यानी तमन्ना आरजू जी हैं, प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से, इसके अलावा हैं हमारे महेंद्र जी जो हमें राजस्थान से सुन रहे हैं, और ये गाना भी है भाई निशा जी का।

0: भाई हमारा फैसला कि नेक्स्ट कॉल ले ली जाए। कॉल्स बहुत सारी आ रही, लगातार आ रही है, और मैसेजेस भी काफी आए, मैसेजेस की ओर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन बने हुए हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कैसा मौसम है आपकी उधर का?
1: मौसम बहुत बढ़िया है, पानी बरसने वाला है।
0: ओहो, मुझे तो लगा था आप ऐसे बताएंगे, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा। क्यों जी?
1: नहीं, सही कह रही
0: हैं। सही कह रहे हैं, हम सही ही कहते हैं, हम झूठ कब बोलते हैं, अपना शुभ नाम बताएं। जी अपना नाम बताएं।
1: जी मिश्रा ऑप्टिकल से बोल रहे हैं।
0: जी हाँ, अजय मिश्रा जी बोल रहे हैं, मिश्रा ऑप्टिकल से क्या सुनना चाहेंगे साहब?
1: जी आपने जो गाना बताया इसी का दूसरा गाना सुना दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: ओहो भाई, तो ये बताइए बरसात के मजे आप कैसे लेते हैं, भीग के लेते हैं, समोसा खा के लेते हैं, पकौड़ी खा के लेते हैं, कैसे लेते हैं?
1: नहीं तो एकदम पूरी खा रहे हैं इस समय, अजय क्या है?
0: ओहो भाई, इसका नाम तो हमने भी बहुत सुना, हमने सुना खाली ये 12 बजे तक खोले रहते हैं, क्या शाम के टाइम भी ये खोल के रखते हैं?
1: नहीं, इनका भाई है एक पप्पू,
0: जी जी,
1: खोले रहता है 4 बजे तक।
0: कहाँ पे, किस जगह पे, प्लीज बताइए, हमें खाना है वाकई।
1: गायत्री होटल के जस्ट बगल में।
0: ओके, गायत्री होटल के जस्ट बगल में। ओके, अब मैं जरूर वहाँ तक पहुँचूंगी और इसका लुफ्त मैं भी उठाऊंगी। भाई अकेले आप ही क्यों खाएं?
1: ट्रांसफर करते हैं?
0: नहीं, ट्रांसफर मत करिए, हम अपने भाई साहब के साथ जाएंगे, क्योंकि वो हमसे रोज वादा करते हैं, वो जब मंगलवार को मंदिर जाते कहते सुबह सुबह जाऊंगा तुम्हारे लिए लाऊंगा, तो फिर कहते हैं तुम्हें उठ के जाना पड़ेगा, वो हम कर नहीं पाते हैं इसलिए हम रह जाते हैं।
1: नहीं, अच्छी पूरी है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और एंजॉय करिए अपनी डिमांड का, बहुत बहुत धन्यवाद जी।

जी आप सॉन्ग सुन रहे हैं हमारे अजय मिश्रा जी की डिमांड पे, और अरविंद जी का कहना है भाई मैम यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, धूप निकला है, झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, नहीं यहाँ मौसम बाकी बहुत सुहाना है, यहाँ धूप नहीं है। और सचिन जी भी हमारे साथ में बने हुए जो हमें दिल्ली से सुनते हैं चैट बॉक्स में, और रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं जो हमें इलाहाबाद से सुनते हैं। लवली वाला गुड आफ्टरनून मैम जी, आपको भी बहुत सुंदर सा शुभ दोपहर, सुरेंद्र यादव जी भी हैं और ये गाना भी है, एंजॉय करते रहे।

0: हाँ जी, और अब चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर। और हमारे साथ में काफी सारे वैसे लिसनर्स जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, नाम तो हम लेते रहेंगे लेकिन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर है कौन। हेलो,
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
0: आदाब नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में आने की, फोन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा में। कैसे हैं जनाब?
1: सबसे पहले भाग्य हमारे कि मेरा कॉल लग गया, ओ माय गॉड। और कंचन जी से मेरी बात हो रही है?
0: जी हाँ।
1: ओ माय गॉड, वो आवाज की मलिका, वो सुरों की मलिका, मतलब मैं आपकी कितनी तारीफ करूं भाई। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि यही कहना चाहता हूं कि ऐसी मिठास, ऐसी सादगी, ऐसा अपनापन जो सीधे दिल को छू जाता है। आप ऐसी बोलते हैं कि लगता है जैसे कोई बहुत ही प्यार से बातें कर रहा हो, और आपकी मुस्कान, आपकी ही आना तो मुझे है, क्या बात है, मतलब मुझे बहुत पसंद है यार। मैं आपका मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से आपके फैन होंगे, लाखों फैन होंगे, लेकिन उन सबसे, मतलब सबसे यानी कि छोटा यानी पीछे वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो नंबर वन वाला यानी पीछे से नंबर वन। और जो आपका एंकरी का अंदाज है ना, बेहद शानदार, आत्मविश्वास से भरा हुआ, मतलब मैं क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। यानी कि ये दुनिया का नंबर वन आरजे, आरजे आकांक्षा, आरजे आकांक्षा, आरजे आकांक्षा। ओह भाग्य हमारे, आपसे मेरी बातें हो रही हूँ, माय गॉड, मैं तो कोई सपना नहीं देख, मुझे कोई चुपकिटी काटो यार। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
0: थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट फॉर मी, और आपके प्यार और दुआओं से ही शायद मेरे को इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं यहाँ बैठ के ऐसे शोज कर पाती हूँ। चाहे बीमारी भी होती है तो पता ही नहीं चलता, और ये घंटा मेरे लिए।
1: एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब यानी कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ यानी कि कानों तक पहुँचती है, लेकिन जो आपकी आवाजें हैं ना वो सीधे दिल तक पहुँचती है एकदम, मतलब क्या बताऊँ, अगर कोई सुन रहा सुबह सुबह उसका दिन बन जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अभी हमारी नीना जी सुन रही होंगी तो वो बहुत शिकायत करने वाली है।
1: अब नीना जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, चाहे जो भी सुन रहे हैं सभी को प्रणाम है मेरा, मेरा नमस्कार है सभी को, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं हूँ आरजी अमन फ्रॉम रेडियो हॉटस्टार, और आपसे बातें करके मुझे बेहद खुशी हो रही है, मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और मैं आज के इस प्रोग्राम में मेरा पहला कॉल लगा है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत एक सप्ताह से इंतजार कर रहा था आपसे बात करने के लिए।
0: अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी डिमांड क्या है, आप अपनी डिमांड बजाएंगे या मैं आपके लिए अपनी तरफ से कोई गाना बजा दूं?
1: मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, तेरे नाम से दिल धड़कने लगा है, तेरा प्यार सीने में पलने लगा है। हाय, आप जो सुना दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
0: जी हाँ, तो ये लीजिए, आपकी पसंद का भी गाना हम बजाएंगे और अपनी पसंद का भी हम मुखड़ा जरूर आप तक बजाएंगे, क्योंकि हम चाहते
1: हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द, मतलब इतना प्यारा, मतलब क्या कह रहे हैं मेरा वो, मतलब इतना इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी जी,
1: दिल खुश कर दिया आपने, मजा आ गया सच में बात करके, मैं तो बहुत खुश हूँ।
0: जी जी, मींस अ लॉट। लीजिए अपनी फरमाइश को, आप एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच, ओके ओके,
0: बाय बाय।

दोस्तों अगर कोई तारीफ करे तो मतलब तारीफ होती है, और एक कलाकार अगर आपकी तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने इतनी तारीफ की हमारी, और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जनाब आप भी एक सितारा हैं, हम बस आपसे सीख रहे हैं, इतना ही कहेंगे, जैसा कि हमारे आरजे मनु कहते हैं।

0: जी हाँ, और लेंगे नेक्स्ट कॉल क्योंकि कॉल भी लगातार आ रही है, और फिर बढ़ेंगे आगे क्योंकि हमने एक गाना बोला था इनको अपनी ओर से पहुंचाने के लिए, मुखड़ा बजाएंगे। थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं और उस गाने के माध्यम से कहेंगे। फिलहाल मैम देखते हैं कौन है हमारे साथ में। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और आप बहुत खूबसूरत हैं, आप इतना अच्छा से परफॉर्म करते हैं कि क्या होता है। अमन सर ने इतना आपकी तारीफ कर दिया कि हमारा दिल इतना खुश हो गया कि क्या होता है।
0: ओह माय गॉड, अमन सर ने तारीफ की, कमल सर का हमारे दिल खुश हो गया।
1: नहीं नहीं मैम, ये गलत बात है, आपका उन्होंने किया, हमारा नाम भी नहीं लिया उन्होंने।
0: अरे कमल सर का दिल खुश हो गया भाई, हमने ये कहा है।
1: सही बात है,
0: देखिए ऐसा ही होता है जब इंसान ना ज्यादा खुश होता है, जज्बात जब उमड़ घुमड़ के आते हैं तो उसको सुनाई भी कम देने लगता है। कोई बात नहीं,
1: तारीफ करने वाली चीज है तो लोग तारीफ कर रहे हैं।
0: हे भगवान, हम छुप जाएं दो पल के लिए, पहले मुस्कुरा लें टेबल के नीचे, फिर आगे शो करें। क्या चाहते हो आप?
1: हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन देखना एकदम से मत छुप जाना कि मतलब जितने लिसनर है परेशान हो जाए।
0: अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहिए क्या सुनना चाहते हैं कमल जी।
1: मैम जी, आप अपने पसंद का कोई सॉन्ग चला दी, क्योंकि जब शो में आप आती तो पहले अपने पसंद का कोई चलाती हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे पसंद का कोई आप अपने से अच्छा से चला दीजिए।
0: आपका सिग्नेचर सॉन्ग चलाएं या कुछ अलग?
1: मैम ऑल सॉन्ग सुन रहा था,
0: कुछ अलग चलाते हैं आज, ठीक है, मौसम भी अच्छा है तो सोच रहे हैं कुछ।
1: मैम आप हमने आपके पास सौंप दिया, आपकी प्रभु इच्छा।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंजॉय करिए। जी शुक्रिया जी, हमारे साथ में थे कमल नैन जी, और अभी भाई इन्होंने हमारे अमन जी ने इतनी सारी तारीफ की है तो इनके लिए बतौर पैगम्बर एक गाना पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, लेकिन पीछे से प्लीज आप रेडियो बंद करके हमें दोबारा से कॉल करिएगा रईस साहब, और चलते हैं इस गाने की ओर जो हमने इनके लिए स्पेशली रखा हुआ है।

हाँ जी, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर। भाई हमारे प्यारे कमल जी ने बोला कि अपने मन से कोई गाना बजा दीजिए, तो फिर हम देरी किस बात की करेंगे। भाई हमको उम्मीद है कि आपको गाना काफी पसंद आएगा। 90s हिट्स में से एक प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। भाई हमारी प्लेलिस्ट का है, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। एंजॉय करिए।

शुक्रिया दोस्तों, आप लोग की लगातार कॉल्स आ रही है लेकिन मैं गाने के बीच में कॉल लेती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और चलते हैं फिर इस गाने को कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन आता है कॉल पर। टेन टेन टेन टेन टेन टेन, क्या म्यूजिक है, वाह।

भाई हमारे लिसनर्स का टेस्ट हमें अच्छे से पता है, इसलिए हमें पता है कि हमारे कमल जी को ये गाना काफी पसंद आएगा। और आरजे अमन जी ने भाई मैसेज किया, मैं भी हूँ। जी हाँ जी, आप भी हैं चैट बॉक्स में। चमन जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, इन्होंने भी यही कहा है, मैं भी हूँ। जी तो हाँ जी, आप भी हैं। नीना जी ने नहीं, नेहा जी ने गाना डेडिकेट किया था भाई, हमने पढ़ लिया है। अनुष्का जी भी श्रावस्ती से जुड़ी, लगातार आपने कॉल भी किया, माफ करिएगा गाने के बीच में मैं उठा नहीं पाई। आसिफ खान जी मुंबई से गुड आफ्टरनून, इन्होंने भी बोला है। और गाना हमारे कमल जी का, एंजॉय करिए।

0: क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा।
1: तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: गॉड, हम चुनरी नहीं लेते वरना पता नहीं कहाँ कहाँ दिल जाता और बिल बढ़ जाता आगे वाले का। देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कौन जुड़ा हुआ है। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं?
2: राधे
0: राधे मैम। राधे राधे राधे राधे राधे राधे, अरे बाप रे, राधे राधे टैगलाइन के साथ हैं, यानी कि हमारे पंडित जी हैं। कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक हैं
0: जी। कहिए क्या सुनेंगे आज आप?
2: गाना सुना दीजिए आज, तुझे देखा तो ये गाना सुन।
0: डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग जी यही। डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग। चलिए भाई, आपने डिमांड की है। हाँ हाँ,
2: होता है दीवाना सनम।
0: आगे
2: अब यहाँ से वहाँ जाएंगे हम।
0: बहुत सही, थैंक यू सो मच भाई, बहुत हंसा दिया आपने। खुश रहिए, खुश रहिए, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं भाई पंडित जी की डिमांड के साथ में। गाना बहुत प्यारा है और DDLJ जो कि लेजेंडरी मूवीज में से एक मानी जाती है, यशराज चोपड़ा जी के संरक्षण में बनाई गई ये मूवी, 90s हिट्स में से एक, लता जी की आवाज और साथ में किसकी आवाज है ये आप सभी बताएंगे, अगर मैं गलत नहीं तो शायद। कौन है आप बताइए, हम क्यों बताएं, आपसे पूछा है ना, तो बताइए। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, बहुत प्यारी सी डिमांड है। थैंक यू सो मच पंडित जी।

बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भाई, फीलिंग फुल सॉन्ग, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच पंडित जी, वंस अगेन थैंक यू। हाँ जी, तो हमने चैट बॉक्स से मैसेजेस लेना थोड़ा रोक दिया था क्योंकि गाने बज रहे हैं, साथ साथ में आपकी कॉल्स भी लगातार आ रही, बहुत सारी कॉल आ रही है। और देखते हैं नेक्स्ट मैसेज में कौन है। तो कमल नैन जी के बाद में मुस्तफ़ा जी सऊदी अरबिया से, उस्मान खान जी हमारे साथ में बने हुए हैं। शुभ दोपहरिया, ओके शुभ संध्या आपको। और हाँ जी हियाना, थैंक यू। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में है हमारे कुमार साहब MP रीवा से, प्रमुख जी हैं लुधियाना से, और ये गाना भी है भाई, एंजॉय करते हैं। दिल मेरा यादें तेरी, बिल्कुल सही बात है, दिल है मेरा लेकिन याद

0: जी हाँ, अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। लगातार बहुत सारी कॉल आ रही है और इसी बीच में कौन लकी कॉलर बना है। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं मैं श्रोताओं को। सर
1: नमस्कार, जय माता दी।
0: जय माता दी। लेट्स टॉक करते हुए हमारे कुमार साहब हैं गौरा चौकी से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सुनना चाहेंगे आज आप? क्या बात है भैया, क्या दादा, अब हम कहा कहीं हमारा जीव खुश होगा आपके गाना के फरमाइश सुन के। ये गाने की डिमांड बहुत कम लोग करते हैं लेकिन जब भी बजता है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं चीची जी का सॉन्ग है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करियो फिर आप तक आपकी इस डिमांड को हम पहुंचाते हैं। लीजिए सुनिए, थैंक यू सो मच। प्रमुख जी आपको भी पसंद है मुझे पता है, एंजॉय करिए।

कंफर्म नहीं है तो मैं सॉरी बोलूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक शानू साहब थे, किसी और को अगर पता हो तो प्लीज मेंशन करिए कि इस गाने को सच में किसने गाया है। फिलहाल ये गाना

0: कर लीजिए भाई, जवाब आ गया। बिल्कुल मैं सही थी, कुमार सानू साहब ही हैं। और इसी बीच में हमारे एक बड़े ही प्यारे लिसनर हमसे जुड़े हैं भाई, काफी दिनों से गायब है, हम आपका हाल चाल जानना चाहेंगे। इंजीनियर अक्षय सिंह जी बनारस की गलियों से, प्लीज मेंशन करिए इतने दिन से आप कहाँ थे। मुझे काफी चिंता हो रही थी आपकी, क्योंकि मैं अपने हर एक लिसनर को याद किया करती, बोलती नहीं वो बात दूसरी है, पर आप बहुत दिनों बाद मुझे दिखे हैं। प्लीज मेंशन करिए आप इतने दिन से कहाँ थे, वरना मुझे आपके लिए गाना बजाना पड़ेगा, इतने दिन तुम कहाँ रहे फिलहाल। और करिए, अरे बाप रे, का लिख देते हैं आप लोग। हाँ जी, और इसके बाद में चमन जी ने बोला, मैम जी आप अवधि में ही बोला करिए, अच्छा लगता है। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत तहे दिल से। राम मोहन जी भी जुड़ गए हैं बभनान से। अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं, कहाँ से। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम जी, मैं मेंबर देपन गांव रूं जिला नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: जी क्या नाम है फिर से बताएं।
1: महेंद्र देपन गांव रूं जिला नागौर राजस्थान।
0: जी वही जो वाले जो हमारे चैट बॉक्स में हैं।
1: जी जी मैम।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है सर, आज आपने पहली दफा हमारे स्टेशन पे कॉल किया है।
1: हाँ पहली बार किया हूं।
0: जी मोस्ट वाला वेलकम है आपका। सर आपके वहाँ की स्पेशल कोई डिश बताइए जो मैं आके खा सकूँ। एक्चुअली होता क्या है, मैं साल में एक दफा राजस्थान जरूर जाती और मुझे इतना तीखा पकवान मिलता है जो मैं खा नहीं पाती, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा डिश आपके वहाँ मिलता है जो कम तीखा हो।
1: हमारे तो एक तो हल्दी की सब्जी होगी
0: जी,
1: और एक जो 24 घंटा मिलती है वो है दाल बाटी।
0: ओह हाँ दाल बाटी, तो लेकिन इतना तीखा क्यों बनाते हैं आप लोग भोजन, मुझे ये जानना है।
1: लेकिन वो गर्मी में ज्यादा रहते ना, इसलिए उनको तीखा ज्यादा पसंद है।
0: हमें लगता है ना वहाँ पे राजस्थानी मिर्ची बहुत ज्यादा उत्पादित होती है, इसलिए आप लोग जी भर के मिर्चा डालते हैं, कूट कूट के, खून खून।
1: नहीं, नहीं, वो वाली मिर्ची तो फिर भी कम तीखी होती है।
0: हाँ जी,
1: जैसे मुंबई की होती है वैसे तीखी नहीं होती है।
0: ओ माय गॉड, आप मुंबई की भाई कोई ऐसा खाना बताओ जहाँ तीखी मिर्ची ना पड़ती हो।
1: वही है, वही कम है उसमें फिर तो। आपने वो गाजर का हलवा वो रहेगा मीठा है।
0: हाँ ये ठीक है, अब आपने आइडिया दे दिया, मतलब तीखा खाने के बाद कुछ मीठा खा लेंगे। ओके शुक्रिया, अब बताएं आप क्या सुनना चाहेंगे।
1: क्रांति फिल्म का गाना है, दिल में दर्द का जगह है, क्रांति 2002 में आई थी वो।
0: हाँ जी हाँ मुझे मालूम है, क्रांति आई थी लेकिन बदलाव कुछ नहीं लाई थी। हाँ सही में
1: उसका गाना बहुत पसंद है।
0: नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रांति आई थी लेकिन बदलाव कुछ नहीं लाई थी, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसी नाइंसाफी क्यों।
1: वो तो मैं माफ़ी जानू।
0: मैं आपसे मजाक कर रही, थैंक यू सो मच। चलिए एंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गाना, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।

भाई हमारे इंजीनियर साहब ने आते ही बहुत उम्दा वाला जवाब दिया और इन्होंने बता दिया हमारे सवाल के जवाब को। ये कह रहे हैं कि सगरी की सब्जी होती है, वैसे सगरी क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, आप ही बताएंगे। और कहते हैं कि क्रांति वही सब्जी काट के चली गई। ओहो क्या बात है, इतना दिमाग तो हमारे पास ही नहीं था, आपने लगा लिया तो हमारा काम हो गया। थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए। प्यारी सी डिमांड जो राजस्थान से आई है महेंद्र जी की ओर से।

0: जी हाँ, और महीन जी ने भी बता दिया भाई कि केर सांगरी की सब्जी होती है। और मानना पड़ेगा अक्षय जी, आप बहुत नॉलेज रखते हैं, और इन्होंने बताया है कि भाई राजस्थान में एक सब्जी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने हमें बता दिया। अब हम जब भी जाएंगे, अगर एक हफ्ता रुकेंगे तो कम से कम अपना वजन घटा के नहीं आएंगे, स्वस्थ पूरी तरह से होके आएंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: सुनाई दे रहा
0: है? अरे बाप रे, बहुत तगड़ा सुनाई दिया, हम झंझना गए। अपना सुन रहा हूँ, बताए।
1: हाँ, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से।
0: जी जी रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र से। आप ये बताएं, महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
1: ठीक है, इधर बारिश आई नहीं अभी मुंबई में।
0: ओहो, बहुत दुख की बात है।
1: दिन गिरा था ज्यादा ही।
0: ओहो, बहुत
1: मतलब,
0: हाँ दुख की बात है भाई। हमने तो सुना है मुंबई बगल में ही है समंदर के और बारिश काफी होती है, तो ये तो दुख की बात है कहीं ना कहीं। जी क्या सुनना चाहेंगे रमेश जी?
1: चला जाता हूँ किसी के दिन में धड़कता हुआ तराने लिए।
0: अच्छा, तो आप चल के क्यों जाते हैं फिर? आप सवारी भी कर सकते हैं, इतना जरूरी क्या है, इतना मेहनत क्यों करते हैं?
1: धुन में चला जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा होता है, मतलब आप किसी की धुन में रहेंगे तो आप चलते ही चले जाएंगे, रुकेंगे है ही नहीं, स्टॉपेज ही नहीं है।
1: रुकेंगे, काम रहेगा तो रुकना ही पड़ता है।
0: हाँ, वही तो मैंने कहा ना, आप कह रहे चला जाता हूँ, तो हमने कहा रोक दे, याद दिला दे कि भैया मोड़ ओड़ भी पड़ता है रास्ता में, और मतलब ठहरना भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए।
1: ओके, थैंक यू।
0: ओके, मोस्ट वेलकम।

भाई ये गाना हमारे सारे चैटबॉक्स वासियों के लिए, क्योंकि सभी मस्ती खोर हैं और बहुत ही मस्त मौला हैं, सबकी अपनी अपनी एक फीलिंग है और सब कुछ भी बयां करते हैं, और जब अपने धुन में होते हैं ना फिर वो किसी की सुनते ही नहीं है। और यकीन मानिए जिंदगी में थोड़ा पागलपन और थोड़ा सा बेफिक्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आप सभी में कूट कूट के भरा हुआ है। और एक मैसेज भी हमें दिख रहा है जो कि हमें व्हाट्सएप पर लगातार आ रहा है, और ये मैसेज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे जयपुर से सुनने वाले लिसनर का है, जिनका नाम है विनोद भरद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिखते हैं आकांक्षा जी दोपहर का नमस्कार, नमस्कार आपको भी। मैं ओ माय गॉड, ईश्वर आपको कुशल मंगल के साथ में रखे, मतलब बहुत जल्द आप की रिकवरी हो। इनका एक्सीडेंट हुआ और आपसे बात नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य होते ही आपसे उपस्थित। बेशक बेशक आप आराम करिए और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्लीज़ आप सभी लिसनर से दुआ है, मतलब प्रार्थना है कि इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।

0: जी हाँ, और इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट कॉल और देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मनीष शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी मनीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम तो बिस्नागा भटपुरा गोंडा से बोल रहे
0: हैं। जी क्या सुनना चाहेंगे? क्या
1: जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए।
0: ओहो, ओके ओके ओके, तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू।
2: मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे
0: फसाने लिए। एक और कॉल ले लेते हैं क्योंकि कॉल बहुत देर से बहुत सारी आ रही है। हेलो।
3: नमस्कार
0: जी। नमस्कार सावरी विलम जी, कैसे हैं आप? कैसन बानी?
3: बहुत बढ़िया बानी।
0: बढ़िया बानी तो ये बताओ जे हर एक मौसम कहने बढ़िया की हो तब जहाँ रहा थो बताओ। अब कुछ देर पहले महाराष्ट्र से रमेश जी का कॉल आ रहा हो, कहा था कि बरसिए ना हुआ था, कैसे बारिश हुई बताओ।
3: ये तो मुंबई का इतना बुरा हाल है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: इसका जवाब ही नहीं है। पानी हद से ज्यादा, पता नहीं कि बिहार और यूपी में बारिश नहीं है और मुंबई दिन रात बारिश।
0: ओहो ऐसा है। चलिए अगल बगल में ही कहीं बारिश हो रही कहीं नहीं हो रही, आप क्या सुनना चाहते हैं बताएं।
3: अब उनके यहाँ कहीं भगवान नहीं बारिश दे रहे होंगे तो अलग।
0: हाँ हो सकता है कि अभी देर सवेर पहुँचे लेकिन पहुँचेगा जरूर, हमें उम्मीद है। कहिए क्या सुनना चाहेंगे
3: मैम। गाड़ी निकलने में बहुत परेशानी है।
0: गाड़ी तो वहाँ मुंबई की ट्रैफिक ही तो इतनी फेमस है, इसीलिए तो वहाँ पे लोग कभी किलोमीटर से बात नहीं करते, वक्त के हिसाब से किलोमीटर को नापते तोलते और बताते हैं। तो ये वहाँ की ट्रैफिक काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली मुझे जहाँ तक लगता है। क्या डिमांड है आपकी, क्या सुना चाहेंगे?
3: गाना का डिमांड है तू भी मुझसे प्यार करे, खास हो दिन आए।
0: ओके इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।

मोस्टेस्ट रोमांटिक सॉन्ग आप एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में कॉलर ट्यून गोंडा। मैं हूँ आपके हुसैन दोस्त आरजे आकांक्षा और आज दिन है शनिवार और कॉल्स लगातार हम पे मतलब हम पे नहीं आ रही, हमारे फोन पे आ रही है। पर गाने तो मैं बीच कुछ में ही ले सकती ना जनाब, सारे लूंगी तो फिर मैं कॉल ही उठाती रह जाऊंगी, एक घंटा यूं निकल जाएगा ऐसे करते हुए। यूं हाँ ऐसे करके निकल जाएगा ना, बोलते ना जो थोड़ा साइड दो, हाँ यूं वाला। तो एंजॉय करिए फिलहाल ये गाना।

नेहा जी, अब आप समझ सकती होंगी मैं किसी से दो अखी नहीं करती। आप जितनी मेरे लिए खास है सभी मेरे लिए उतना ही खास है। आपकी कॉल नहीं लग रही, बाकी आप समझदार हैं कि आज का दिन ऐसा ही जाता है। मैं सभी को एक ही पलड़े में रखती हूँ, मेरे लिए सभी प्यारे हैं, आप सबके सब। फिलहाल ये गाना बहुत ही शानदार है, मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग।

0: और नेक्स्ट कॉलर को देखते हैं कौन हमारे साथ में, और सब लोग जी की डिमांड भी हम तक आ चुकी है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: पहचानी कौन है?
0: ये हमारी चंगू जी हैं या मंगू जी हैं?
1: चंगू जी है, आपसे खाली इतना पूछना था।
0: हाँ
1: दीवाने आपके हैं, मंगू जी पूछ रही है कहीं मैम जी हमका भूल ना जाए।
0: अरे बाप रे बाप,

0: बेटा, उन तक हमने भाई पहुंचा दिया अपना जवाब। आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: बहुत अच्छा लगा सुन के।
0: जी आप क्या सुनना चाहेंगी, कहिए।
1: आपके जुबान से सिलिए यही मेरे लिए बहुत है।
0: अरे अब आप यहाँ तक आई हैं तो हमें लग रहा है हम यही गाना आपको सुना दें।
1: बिल्कुल।
0: या फिर उनका वाला फेवरेट सुना दे जो वो पसंद करती हैं।
1: नेहा।
0: हाँ हाँ
1: ठीक है, सुना दीजिए।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल लेना चाहूंगी, काफी देर से कॉल आ रही है। जी जी शुक्रिया। तो ये नीना जी थी और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ कौन है। हेलो
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: श्री देवी प्रसाद।
0: जी देव प्रसाद जी, क्या सुनना चाहेंगे?
2: हम यही सुनना चाहेंगे, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल।
0: कोई अच्छा सॉन्ग प्लीज, कुछ और।
2: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।
0: और अगर मार कर बैठे तो तो क्या करेंगे
2: जी?
0: कुछ नहीं, आप सोचते रहिए, जवाब हमें चैट बॉक्स में हमारे लिसनर से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। भाई चलते हैं अपने सबलू सावंत जी के सॉन्ग की ओर। प्रमुख जी ने बता दिया है और सबलू जी ने बता दिया इन्होंने क्या सुनना था। उसके बाद आएंगे अपने चंगू मंगू की जोड़ी के डेडिकेशन में एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: भाई और मैसेज के साथ में कॉल्स भी लगातार बहुत सारी आ रही है। तो मैं पहले बता दूं, रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से जुड़ चुकी हैं और अरविंद जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही है और ये कॉल लगातार आ रही है, तो उनको भी देख लेते हैं। जनाब कौन है? हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, अपना जल्दी से नाम बताओ, फटाक से अपनी डिमांड भी बताएं।
1: नाम अमित कुमार, गाना है ये इसका है।
0: हाँ,
1: ये इसका है, बैठे बैठे जाना है।
0: अच्छा, ऐसा भी होता है?
1: बिल्कुल होता है।
0: अच्छा, पक्का? पिछली बार आपने हमको एक गाना बताया था, हमें याद है, मेरे सैया सुपरस्टार। मैंने कहा ये हो नहीं सकता है, इस बार मैं यकीन कर रही हूँ आपकी बातों पे। ओके, थैंक यू सो मच भाई। मैं थोड़ी सी मुराही कर लेती हूँ, माफ करिएगा, मेरी आदत है हंसते मुस्कुराते रहने की और आप सबको भी खिलखिला दें पर मजबूर करने की। एंजॉय करिए सबलू जी की ये प्यारी सी डिमांड, फिर आते हैं चंगू मंगू की डिमांड के साथ, फिर आमिर जी।

हाँ जी, और अब चलते हैं चंगू मंगू की जोड़ी की डेडिकेशन में। ये प्यारा सा सॉन्ग आप सभी तक पहुंचाते हैं भाई, मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ये भी है। मूवी क्या है ये तो आप, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि ये मूवी का नाम है सिर्फ तुम। वाकई सिर्फ तुम और कोई नहीं। फिलहाल इस गाने के बाद चलेंगे अमित जी की डिमांड के साथ में, और हो सकेगा तो एक लास्ट कॉल मैं और लूंगी, क्योंकि वक्त अब हाथ से जा रहा है और समय समाप्ति की घोषणा भी मुझे अभी करनी पड़ेगी कुछ वक्त बाद।

0: हाँ जी, और सभी ने बता दिया, सिर्फ तुम यानी कि चमन जी ने भी बोला है, नेहा जी ने भी बोला है, और कुमार साहब कहते हैं मेरी तो आंख लग गई थी बस जस्ट उठाऊं। उस्मान खान जी, आपका भी फीडबैक हमारे लिए काफी कीमती है। प्रबल जी भी हैं और साथ ही साथ में नीना जी भी हैं और बहुत सारे बाकी लिसनर्स भी हैं, प्रमुख जी हैं जैसे कि हमारे सबलू जी हैं, और बहुत सारे नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है, लेकिन एक लास्ट कॉल जरूर लेना चाहूंगी। देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते नमस्ते, जल्दी से अपना नाम बताएं।
1: जल्दी से नाम नहीं बताएंगे यार, नकली एक मंदिर है, तुम उसकी मूर्त हो, और खुदा की कसम आकांक्षा मैम बहुत खूबसूरत हो।
0: अब हम शर्मा ले, शर्मा ले या काम कर ले?
1: नहीं, बहुत खूबसूरत हो, शर्माओ मत। और लाल दुपट्टे वाली का नाम जो है ना, लिस्नर को नहीं पता है तो आरजे आकांक्षा है, हम बता रहे हैं।
0: नहीं हो क्या रहा मेरे साथ आज?
1: नहीं तो इतना देर रुके क्यों, कितना कॉल किए हैं, एक भी कॉल आप रिसीव नहीं किए हैं।
0: अब इसकी सजा दोगे हमको आप?
1: जी क्या हुआ?
0: अब आप इसकी हमको सजा देंगे? सच्ची में हमारे बहुत सारे लिसनर्स की कॉल तो हमने ली ही नहीं है। मैं जानती हूँ सैटरडे हमारा ऐसा ही जाता है,
1: तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लिसनर नाराज हो जाएंगे।
0: नहीं नहीं, नाराज कोई नहीं होगा, उनको अच्छे से पता है कि या तो हम गाना बीच में बजा सकते हैं या तो हम कॉल ही लें, कॉल लेंगे तो एक घंटा हमारा कॉल लेने में ही निकल जाएगा, तो थोड़ा सा तो आगे पीछे होता है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, वो बेस्ट ट्राई होगा। बताए आप अपना शुभ नाम बताए और प्लीज गाने की डिमांड बताए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे।
1: मैम मनकापुर बस स्टॉप से सलाउद्दीन बोल रहे हैं, लेकिन गाना बजा दीजिए।
0: ओह माय गॉड, सलाउद्दीन साहब इतने दिन से आप कहाँ गायब थे, पहले ये बताइए।
1: हम गायब नहीं थे, कॉल लगाते तो आप फोनिंग पे मिलते ही नहीं है जल्दी।
0: ओह माय गॉड, अभी मैं आपका नंबर जरूर सेव करूंगी, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक दफा सुन सहेली किया था, उसके बाद से आज मेरी आपसे बात हो रही है, मैंने आपको बहुत मिस किया, सेम ऐसी जैसे अक्षय जी को मिस कर रही थी। मतलब मैं अपने सभी लिसनर्स का नाम बाकायदा याद रखती हूँ, मैं डिस्कशन भी करती रहती हर एक किसी से, किसी ना किसी से। तो क्या सुनना चाहेंगे? वक्त हाथ से जा रहा है इसलिए सॉरी, यहाँ पे कॉल मुझे ड्रॉप करना होगा।
1: नहीं, गाना यही बजा दीजिए, थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है, स्पेशली जो है आप ही के ऊपर का ये गाना है, डेडिकेट भी आपको है।
0: थैंक यू सो मच।
1: ओके थैंक यू मैम
0: जी, ब्लेस यू सर, बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।
1: ओके
0: ओके।

जी हाँ, और चंगू मंगू की जोड़ी का ये सॉन्ग डेडिकेशन वाला कंप्लीट होता है। अब अमित जी आपकी डिमांड, भाई ये भी हम गुनगुनाना पसंद करेंगे, मैं मोस्ट फेवरेट मूवी से ये गाना।

सलाउद्दीन जी, आपके फरमाइश का जो आपने जो बोला सब पे टिप्पणियां आ गई हैं। काश, उम्मीद है कि आपने चैटबॉक्स देखा हो। उस्मान खान जी ने भाई तारीफ कर दी है, नेहा जी हैं, मुस्तफ़ा जी हैं, कुमार साहब है, प्रबल जी हैं और बाकी सभी लिसनर हैं, राही जी भी हैं और ये गाना भी है।

अब चलने का वक्त भी हो गया भाई। बॉस बहुत मजा आया आज के शो में, आप लोगों ने सुपर सुपर हिट किया और हमको बहुत ज्यादा शर्मा दिया, उसके लिए भी शुक्रिया आपकी प्यार मोहब्बत का तहे दिल से धन्यवाद भाई। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है मैं जानती हूँ, पर मैं क्या ही बोलूँ, बस आपका साथ यूं ही बना रहे इतनी दुआ करिएगा कि हम आपको छोड़ के कभी कहीं आप सभी से दूर ना जाएं और ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान असली फैमिली से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी फैमिली को और बड़ा करने के लिए दिन प्रतिदिन, और अपना प्यार और स्नेह हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लास्ट डिमांड हमारे प्यारे सलाउद्दीन जी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो गाना स्लेट 9.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। शो था आपका फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब जाने का वक्त आ गया है। मिलते हैं मंडे, जी हाँ, आपके अपने इसी शो के साथ। ख्याल रखिएगा बहुत सारा वाला, और हाँ, अगर अगर अगर बारिश हो तो किसी के साथ घूम शूम लीजिएगा। बाय बाय।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।

0: 999।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नाउ लिसनिंग रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जुनदी मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है आपका गोधुली, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आपका शो गोधुली लेकर आता है हर शाम एक ऐसी खास पर्सनैलिटी को, जो होते हैं अपने क्षेत्र में खास, जिनसे जानने को मिलती है बहुत सारी जानकारी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आज हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चेतन पराशर, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा। सर, आपका सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड आप हमारे बीच मौजूद हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, आप हमारे लिसनर्स के साथ आज मौजूद हैं और उनसे आज आप बातचीत करने वाले हैं।
3: नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन।
2: तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि भाई हमारे लिसनर आपको नहीं जानते हैं, तो आप एक छोटा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
3: मैं डॉक्टर चेतन पराशर हूँ। मेरी जो पढ़ाई और मेरा जो बचपन जो बीता, वो पूरा का पूरा लखनऊ में था। लखनऊ में मेरे पिताजी का निजी आवास है। मैं लखनऊ में CMS थ्रू आउट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ा, फिर मैं JSS मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया इन पैथोलॉजी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, और PMS में मैंने ज्वाइन किया था सन 2012 में। उसके बाद फिरोजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, फिर कोविड के समय में मेरा यहाँ पे स्थानांतरण हुआ आपके कोविड हॉस्पिटल गोंडा में 2020 में, और 2020 से मैं अपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे गोंडा में गोंडा क्षेत्रवासियों को दे रहा हूँ, और अभी इस समय प्रभारी रक्त केंद्र गोंडा हूँ, जो कि अब आपके ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रशासकीय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से अब प्रचलित है।
2: ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लखनऊ में ही आपकी पैदाइश है या फिर आप लखनऊ आए थे कहीं से?
3: मैं मूल निवासी हूँ मथुरा का।
2: ओके, ग्रेट।
3: मैं मूल निवासी मथुरा का हूँ। मेरे माँ बाप, मेरा सारा रिश्ते नाते सब के सब मेरे मथुरा में ही हैं, और मैं यहाँ पे, मेरे फादर जो हैं उन्होंने लखनऊ की ओर रुख किया था सन 1984 में, जब मेरा जन्म हुआ था, तब वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक क्लर्क के रूप में थे, और वो फिर यहाँ पे उनका स्थानांतरण हुआ लखनऊ में। तब से हम लोग लखनऊ में ही रहे, और मैं फिर यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी पूरी की, तो मूल निवासी मैं मथुरा का हूँ।
2: ओके सर, आप अपने बचपन की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस पोस्ट पर जहाँ आज आप हैं, क्या आपने हमेशा से यही एम रखा था कि मैं बड़े होकर MBBS करूंगा और इस क्षेत्र में आएंगे, या फिर 10th के बाद आपके पास ऐसा कुछ, आपने किसी को देखा, आप उनसे इंस्पायर्ड हुए?
3: ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आपने पूछा, क्योंकि मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मेरी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं हमेशा से एक या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस का खिलाड़ी बनना चाहता था।
2: क्या बात है।
3: और रुचि बहुत थी मेरी बैडमिंटन खेलने में, और मैं टेबल टेनिस में भी बहुत खेला हूँ, कभी स्टेट लेवल नहीं, स्कूल में ही खेलता रहा। फिर 10th में मैंने जब अपना उत्तीर्ण किया ICSE बोर्ड, उसके बाद 12th में ये हुआ कि सब लोग इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स ले रहे थे, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र जो है चिकित्सा में जाए, चिकित्सा क्षेत्र में। तब मैंने अपना बायोलॉजी ली, और फिर मैं PCB लेकर 11th-12th किया मैंने। उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ होता है, जब मुझे कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, घर वाले जब फोर्स करते हैं किसी और चीज को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा खराब लगता है उस वक्त। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या?
3: नहीं, मेरा एक लालच था।
2: लालच?
3: हाँ, एक लालच था। सन 2000 की बात है, उस समय नया नया कंप्यूटर आया हुआ था
2: जी।
3: और इंटरनेट भी नया नया आया हुआ था। मेरे घर में कंप्यूटर और मतलब पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसे बोलते हैं वो नहीं था। मेरा जो बड़ा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था। दो ही लोग हैं हम लोग बड़े भाइयों में। तो उसने मुझसे कहा कि यार एक घर में कंप्यूटर होना चाहिए
2: जी।
3: तो उसने कहा कि पापा से बात करो। पापा ने कहा ठीक है मैं कंप्यूटर दिला दूंगा, तुम बायोलॉजी ले लो। तुम्हारे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे हैं, तुम बायोलॉजी ले लो और मैं तुम्हें कंप्यूटर दिला दूंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो कंप्यूटर तो घर में आ रहा है। तो हमने बायोलॉजी ले ली, उसके बाद अगले दिन कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर और बायोलॉजी लेके हमने जो कुछ भी किया वो आपके सामने कि जो है मेरे बड़े भाई ने भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लिया और मैं फिर अपना जो है मैंने अपने जितने भी एग्जाम्स थे वो क्लियर करते हुए फिर अपना चिकित्सा क्षेत्र में अपना जो भी काम शुरू किया
2: जी। होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि आप ये कर लो इसके बाद हम आपको ये दिला देंगे।
3: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,
2: मुझे भी किया जाता था पहले एंड उसके चक्कर में हम लोग कर भी लेते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे आज,
3: बिल्कुल,
2: ये
3: बिल्कुल,
2: कर लेंगे। बट मेरे पेरेंट्स भाई मुकर जाते थे कि अब कौन सी बात है, अब अगले साल देखेंगे।
3: नहीं ये तो है, मगर मैंने मुकरने नहीं दिया।
2: क्या
3: मुकरना तो उनको भी चाहते थे मुकरना। उन्होंने कहा भी था कि जाओ बाहर एक कोई साइबर कैफे है उसमें पूरा महीने का तुम्हारा दे देते हैं, वो महीने पूरा तुम महीने का उसका तुम्हें रेंट दे दिया करेंगे और तुम वहीं जाके अपना कंप्यूटर कर लिया करो
2: जी। बिल्कुल। तो भाई जैसा सब कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके बचपन से बनना शुरू हो जाती है। उसके बचपन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे इंस्पायर्ड करता है। तो आपकी जिंदगी में वो इंसान कौन था जिसने आपको इंस्पायर्ड किया एंड आपके बचपन में आपका नेचर कैसा था?
3: मैं बचपन में शरारती था बट आई वॉज डिसिप्लिन्ड ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। वो खेलना कूदना सब अलाउ करते थे मगर कोई भी उन्होंने कभी बदतमीजी या फिर किसी तरह की कोई मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की कोई अगर बदतमीजी करे तो उनको पसंद नहीं था। हम लोग पढ़ते भी थे, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलो। मतलब मुझे नहीं मतलब है, तुम अब एग्जाम्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, जो चाहे करो, तुम फैसिलिटीज हम सारी देंगे। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय विद्याधर पाराशर, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे।
2: Okay.
3: और उनके जो छोटे भाई थे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे।
2: okay.
3: तो जब भी मैं अपने गांव जाता था तो मेरे दादा की एक छोटी सी कोठरिया थी, कोठरी बोलते हैं इसको
2: जी, है ना, जो समझ सकते हैं।
3: उस जमाने में कहते हैं कच्चे मकान होते थे। तो कोठरिया में उनके जो है छोटी छोटी दवाइयों की शीशियां रखी रहती थी होम्योपैथ की दवाइयों की, और मैं बिना सोचे समझे उनमें से निकाल निकाल के खाता रहता था
2: क्योंकि वो बहुत मीठी
3: होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मीठी होती थी। और दादा के पास मरीज आते रहते थे गांव के, तो वो उनको वही मीठा मीठा देते रहते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये चलो ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो एक दिमाग में था, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ आई थिंक कि डॉक्टर बनने में थोड़ी इज्जत है। हर आदमी जब भी उनके पास आता था तो बाबू जी कैसे हो, चरण स्पर्श, पैर छूना, और दीवान जी नाम था उनका, दीवान जी कैसे हो, ऐसे करके बोलते थे। तो इज्जत बहुत मिलती थी। तो शायद इज्जत के चलते ही मैंने सोचा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में रहा होगा कि डॉक्टर बनते हैं और If you manifest something, I think, तो आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो। उस समय शायद मैंने मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे बनना है डॉक्टर, तो शायद बन गया।
2: तो मतलब आपको इंस्पायर्ड करने वाले आपके ग्रैंडफादर थे, क्या बात
3: Absolutely.
2: है। सर आपका बचपन जान के और आपकी इंस्पिरेशन को जान के बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आपके थोड़ा काम की तरफ चलते हैं।
3: जी बिल्कुल।
2: आप ब्लड बैंक में है एंड ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ब्लड बैंक जैसा ही कोई नाम सुनता है, ब्लड डोनेशन जैसे नाम सुनते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ बैठ जाता है कि अपना खून देना कितनी बड़ी बात है। ये कुछ लोग जैसे अपना खून देते हैं तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ हैं जिन्हें समझाना पड़ता है कि खून देना कोई खराब चीज नहीं है, एक अच्छी चीज होती है
3: जी।
2: तो आपको भी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि आपके पास लोग तो आते हैं लेकिन कोई इंजेक्शन देके भाग जाता है या फिर कोई बस यही कहता है कि नहीं हमें अपना खून नहीं देना?
3: बिल्कुल। अगर आप किसी जैसे दान होता है तो दान, अगर आप किसी को दान करते हैं कुछ तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वापस वही व्यक्ति या फिर किसी आपने जैसे सपोज करिए राह चलते आप इसने आपने किसी को कुछ दान किया
2: जी।
3: तो क्या आप अपने मन में सोचते हैं कि कल को मुझे ये व्यक्ति मिलेगा तो मुझे केले संतरे या सेब ला के देगा?
2: बिल्कुल भी नहीं।
3: दान का मतलब होता है दान दे दिया
2: जी।
3: दान दिया मतलब भूल जाओ। मगर हाँ आज के परिवेश में रक्तदान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रक्त हम बना नहीं रहे हैं
2: जी।
3: रक्त बनता नहीं है
2: जी।
3: रक्त बनाने की कोई मशीन नहीं है। एक व्यक्ति अगर रक्त देगा तो हम उसको बनाएंगे, उससे हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, प्लाज्मा बनेगा, हम उसको संजो के सेफ तरीके से अपने रक्त कोष में, ब्लड बैंक में रखेंगे, उसके बाद किसी को जरूरत होगी तो हम देंगे।
2: जी,
3: रक्तदान के मायने आजकल ये हो गए हैं कि अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो सरकार भी इस तरह की उनकी कोई वो नहीं है कि हाँ, अच्छी बात यही है कि हम लोगों ने रक्तदान करने के लिए, रक्तदान करवाने के लिए, बड़ा उसकी कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कार्ड्स इशू किए हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपको 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए आपको एक कार्ड इशू होगा। उस कार्ड के एवज में आप कभी भी रक्त, एक यूनिट रक्त ले सकते हैं। आप एक यूनिट दीजिए, डोनेट करिए, फिर आपको एक कार्ड मिलेगा। कार्ड को आप इस्तेमाल अगले 3 महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, अपने लिए या अपने किसी नजदीकी परिजन के लिए। आप उस कार्ड को दिखा के ब्लड बैंक में एक यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगले 3 महीने तक रक्त देने के लिए नहीं स्वस्थ होते हैं। आप अगले 3 महीने तक रक्त नहीं दे सकते हैं एक बार रक्त देने के बाद। तो रक्तदान में ये बहुत जरूरी है कि पहली चीज तो मैं जो मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना यह है कि रक्त दो और भूल जाओ।
2: बिल्कुल,
3: मैंने आज तक कभी भी रक्त देने के बाद मैंने ना, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे कोई कार्ड दे, मैं तो कार्ड के लिए भी इच्छुक नहीं होता हूँ। मगर हाँ ये है कि कार्ड मुझे जरूरत पड़ेगी, ईश्वर कभी जरूरत पड़ेगी तो हाँ लोग आएंगे आगे बढ़ के, मैं उसके लिए नहीं, जो मेरी व्यवहार है व्यवहार के भरोसे मैं रहता हूँ कि हाँ मेरे व्यवहार अगर अच्छा होगा तो लोग आएंगे देने के लिए, वरना ईश्वर है वो देखेगा। रक्तदान कर दिया मतलब भूल जाओ। और पब्लिक के लिए ये है कि अगर वो रक्तदान करना, मतलब रक्तदान अगर आप नहीं करोगे तो आपके परिजन को रक्त कहाँ से मिलेगा। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अगर यही सोच ले कि मैं रक्तदान नहीं करूँगा,
2: जी
3: मैं रक्तदान करूँगा तो कमजोर पड़ जाऊँ, तो वो देना बंद कर दें, तो मेरे पास हमारे ब्लड बैंक में कुछ रक्त रहेगा ही नहीं। सबकी अगर यही भावना हो जाएगी तो हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों से बोलना पड़ता है, कभी कभी हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं कि आप आइए, आगे बढ़ के आइए और रक्तदान करिए, देखिए कितने फायदे होते हैं, उसके फायदे समझाओ। मगर हाँ ये है कि अज्ञानता के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ये होता है कि लोग अभी तक उस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं किसी लायक नहीं रहूंगा।
2: जी,
3: मैं अपने शरीर का जितना भी मैंने खाया पिया है, मैंने जितनी इतनी बॉडी बिल्डिंग करी है, जितना मैंने अपने अंदर शक्ति संजो के रखी हुई है, वो सब चली छिन जाएगी अगर मैंने रक्त दे दिया तो, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है।
2: ओके, तो वेल मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जैसे आपने मुझसे कहा था भाई कि आपको फायदे बताने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ भी आपसे वो फायदे जानना चाहूंगी कि भाई रक्तदान करने से कौन से फायदे होते हैं।
3: बिल्कुल,

0: ओ छोटे सुन,
1: पता
0: तो इस साल के कैलेंडर को टच करेगा ना, तो तुझे शॉक लग जाएगा।
1: वो भला क्यों?
0: तुझे नहीं पता?
1: क्या नहीं पता?
0: कि शॉक क्यों लगेगा?
1: क्यों लगेगा?
0: वो इसलिए क्योंकि वो करंट कैलेंडर है ना।
2: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-4095-84। 88404-4095-84। 88404-4095-84। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने वाले शो, इसका नाम है कौतली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति, एंड मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चेतन पराशर जी। तो सर, जैसा मैं आपसे बात कर रही थी चैलेंजेस के बारे में, एंड आपने उसमें एक वर्ड कहा कि भाई फायदे होते हैं, हमें फायदे समझाने पड़ते हैं। तो हम ब्लड डोनेट अगर करने जाते हैं तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं?
2: सबसे पहला तो हेल्थ बेनिफिट ये है कि जैसे आप आजकल देख रहे हो कि हर आदमी जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज्यादा कॉशियस है।
1: जी बिल्कुल।
2: और आए दिन अखबारों में कार्डियक अरेस्ट की जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? आपकी लाइफस्टाइल में क्या है? लाइफस्टाइल गंदी, खराब लाइफस्टाइल वो ये है कि आप तला भुना ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, और बहुत सी चीजें होती हैं, स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस को तो हम कम नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी स्तर पर बता रहा हूँ कि स्ट्रेस तो मैं कम नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर आप एक शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट में यह होता है कि दवाइयां खानी पड़ती हैं, अपना शरीर में से जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं
1: जी।
2: एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। दो भागों में कोलेस्ट्रॉल को ले लें, जितना भी फैट हम खाते हैं उस फैट को शरीर जो है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दो चीजें होती हैं। सरल भाषा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपके शरीर में जाके आपकी नसों में जम जाता है। नसें मतलब ब्लड वेसल्स में वो जम जाता है, उसकी दीवारों में जम जाता है, वो हार्डन हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। अब अगर वो हार्ट की धमनियों में, वेसल्स में जमने लगेगा आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आपके हार्ट में, हार्ट को प्रेशर बहुत फील होगा। मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ, नॉट टू बी टोटली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको वर्कआउट करना पड़ेगा पूरे शरीर में खून पहुँचाने के लिए, वो हार्ट आपका स्ट्रेस में आ जाएगा ये मान लीजिए। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मैं आपसे कहूँ कि दवाइयाँ खाइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाइयाँ खाइए, या एक्सरसाइज करिए, और बुरी अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करिए। एक सरल चीज ये होती है कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि आपका शरीर का जो, हम जब एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं सपोज, तो उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके साथ साथ प्लाज्मा भी बाहर निकलता है
1: जी।
2: प्लाज्मा भी हम निकालते हैं, आप अपना प्लाज्मा देखो वो पूरा। अगर किसी शरीर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आप कभी ब्लड डोनेट करने के बाद, हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, मतलब प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, प्लेटलेट सेपरेट करते हैं और आरबीसी रेड ब्लड सेल सेपरेट करते हैं। आप अपना प्लाज्मा देखो कभी, आपको लगता है कि आपने जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत शरीर में ज्यादा है, आप देखोगे तो आपका जो प्लाज्मा है वो पूरा लिपिडेमिक होगा। लिपिडेमिक का मतलब होता है कि दूधिया प्लाज्मा
1: जी,
2: फैट से भरपूर। तो आपके शरीर से जब प्लाज्मा निकल रहा है तो कोलेस्ट्रॉल भी निकल जा रहा है, वो गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकल जा रहा है।
1: क्या बात,
2: तो दिस इज अ इजी वे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है शरीर में, फैट के कारण जो है आपकी, और बीपी भी बढ़ता। जब बीपी, आप बीपी को आपको कम करना है जैसे, तो या तो बीपी की दवा खाओ या फिर मेरे हिसाब से चलो ब्लड डोनेट कर दो, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा।
1: क्या बात,
2: तो बीपी कंट्रोल करना और आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल निकालना, मेरे हिसाब से आज के परिवेश में, आज की लाइफस्टाइल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि आप या तो दवा खा के कर सकते हो या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज करके भी कर सकते हो, और थर्ड ये बता दिया मैंने आप कि आप जो है ब्लड डोनेट करो, आप बहुत हेल्दी हो जाओ। हर 3 महीने पे डोनेट करते रहो, हर 3 महीने पे आपका कोलेस्ट्रॉल और जो गंदा फैट है वो निकलता रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बीपी की दवाइयाँ जो खा रहा है वो आप आजमा के देख ले इस चीज़ को, जिसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है वो आजमा के देख ले इस चीज़ को। बीपी, आप जाओ ब्लड डोनेट करो, हम आपका पहले चेकअप करेंगे पूरा, आपकी सारे टेस्ट होंगे, आप ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करने के बाद आपको हल्का फील होगा, ये मेरी गारंटी। आपका बीपी कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे। आप रेगुलर यूज, जो रेगुलरली डोनेट करते हैं ब्लड, उनका कभी भी हाइपरटेंशन नहीं देखा गया है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं देखा गया, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता, एंजाइटी लेवल्स भी कम रहते। तो आपका जो, और तीसरी चीज क्या है कि जैसे आपका शरीर में जो नया रक्त जो है, जो जैसे आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है
1: जी,
2: वो 120 डेज का होता है
1: जी।
2: बनती कहाँ है रेड ब्लड सेल्स? बनते हैं आपके हड्डियों में। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी दे प्रोड्यूस द आरबीसी ब्लड। आपका ब्लड जो बनता है वो आपकी लॉन्ग बोन्स में बनता है। आप जैसे जैसे ब्लड आप निकालते जाओगे, डोनेट करते जाओगे, आपका शरीर नया बनाता जाएगा। आपके शरीर में जो अमूमन ब्लड होता है वो 5 to 6 liters होता है, 5 to 6 liters। आपने एक बार में 350 ml ब्लड दिया, सपोज करिए 10-11 बार में आपका पूरा 4.5 liters जो ब्लड है आपका शरीर का, वो पूरा रिन्यू हो जाएगा। तो अब जब पूरा ब्लड आपका रिन्यू हो गया है, बचपन से लेकर आप जवानी तक आपका जो ब्लड रहा है वो रिन्यू हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे हिसाब से। तो इट्स एन ईजी वे टू एनर्जाइज योर बॉडी, टू गेट रिड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, टू गेट रिड ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये सब आपका जो है इजी वे आउट है ब्लड देना। मेरे ख्याल से लेट के ब्लड दे दो यार, निकल जाएगा सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इसमें आपके फायदे उन लोगों से कई ज्यादा होते हैं जो आपका ब्लड ले रहे हैं।
2: उनको तो मतलब आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है वो पहली चीज। मैं आपको लालच दे रहा हूँ कि देखो भैया आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। आज की दुनिया में हर आदमी जो है सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा है ना, वो अब जो है वो ये सोचता है कि मेरा क्या फायदा है इसमें भाई, मेरा क्या फायदा है। तो मैं आपको फायदे बता रहा हूँ कि आपको लालच दे रहा हूँ कि भैया आपका शरीर पहले स्वस्थ हो रहा है, आप दे दो। और दूसरी चीज, आपका ब्लड जब रहेगा तो हो सकता है कि मानवता के नाते भैया कहीं थोड़ा इंसानियत बची हो तो देख के देखो, अच्छा लगता है ना, खून दे के देखो
1: जी, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, अच्छा काम किया है,
2: कुछ आपने धर्म कर्म का काम किया है, है ना
1: जी। बिल्कुल। ओके सर, एक बात बताइए, जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो शहरों में और गांव में बहुत फर्क आ जाता है, तो सर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अवेयरनेस को लेकर, या फिर लोगों को ये बताने के लिए कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? गाँव के क्षेत्र में ज्यादा होता है या फिर शहरों में भी उतना ही है जितना गाँव में चल रहा है इस वक्त?
2: नहीं, मुझे गाँव क्षेत्र में जो है काफी कठिनाई लगी कि लोगों को समझाना, जब भी मौका मिला मैंने समझाया, मगर वो खुल के बात कर भी नहीं पाते हैं। गांव के जो लोग हैं वो खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं, अपनी परेशानियां भी नहीं बता पाते हैं। लौट के उनको जाना है अपने आसपास के लोगों में ही, वो लोग फिर अगर हम समझा भी देंगे तो वापस जो है वापस से शाम तक उनको दोबारा से भ्रम हो गया कि अरे उनके कहने पर मत जाओ, खून देने से दिक्कत होती है, हम बता रहे तुमको। शहरी क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो यूथ है दे आर प्रिटी मच अवेयर, अच्छा खासा अवेयरनेस है उनमें, अज्ञानता के कारण ही है जितना मुझे लग रहा है। जैसे जैसे अज्ञानता दूर होगी, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं, रील्स बनती हैं कि आओ कुछ नया करें, खून नहीं दोगे तो खून बनेगा कैसे, खून मिलेगा कैसे। लोग शहर में जागरूक हो चुके हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज में जाके लोग ब्लड डोनेट करते हैं। गाँव क्षेत्र में मैंने देखा है कि अभी छोटे स्तर पे ही सही, मगर हाँ थोड़ा गोंडा में बताऊं तो हाँ गोंडा में भी छोटे छोटे सोसाइटीज बन रही हैं और संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। और इस साल देख रहा हूँ पिछले साल के मुकाबले कई संस्थाएं हमने जो है ब्लड डोनेट किया है, गर्मी के सीजन में भी। गर्मी के सीजन में अमूमन रक्तदान थोड़ा कम होता है, मगर इस बार रक्तदान अच्छा खासा हुआ हमारे यहाँ। मतलब इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा कि मेरे सारे भंडार भर गए, भंडार तो मतलब ब्लड बैंक आपका पूरा भर गया ये तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ ये है कि पिछले साल के मुकाबले अवेयरनेस शायद बढ़ी है और लोगों में मानसिकता आई है कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए। कभी भी आपातकाल आ जाता है, जैसे कि कभी कोई, धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछले साल एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, उसमें हालांकि दो ही व्यक्ति जो है हमारे हॉस्पिटल में आए थे जो घायल थे, मगर बहुत लोग आए हमारे रक्त केंद्र में और उन्होंने जो है स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपनी इच्छा जताई और कई लोगों ने रक्तदान किया, बढ़ चढ़ के रक्तदान किया, और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रुप कि लोग आके रक्तदान कर रहे हैं। बट कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप आपदा मतलब आपातकाल का या आपदा का इंतजार क्यों कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, है ना? आपका जब भंडार भरा रहेगा तो हमें यार किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा
1: जी।
2: रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप आपको शायद पता ना हो, आप आइए देखिए आपका शायद ब्लड ग्रुप रेयर निकले, रेयर मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप जितने भी हैं वो रेयर में आते हैं। अगर हमको पता चलेगा, हो सकता है कि किसी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आगे चल के उसको खून की कमी हो किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को, और आपका हमें पता चल जाए, हम आपका नाम रजिस्टर में लिखे रखें, शायद आपको एक मौका मिल जाए उसकी जान बचाने का, क्योंकि रेयर ब्लड ग्रुप जितने भी होते हैं बहुत कम ही मिल पाते हैं और उनको हमको संभाल के रखना पड़ता है।
1: ओके सर, आपने बात की रेयर ब्लड ग्रुप की जिसमें नेगेटिव वाले आते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये बात भी सुनने को आती है कि हमारा ओ पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव ब्लड दे तो सकता है लेकिन वो किसी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम अगर अपना ब्लड दे देंगे और कहीं हमें ही जरूरत पड़ी और हमें ही नहीं मिला तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये जो कॉमन ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनको क्या कहना चाहते हैं आप?
2: नहीं देखिए, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप है, मैक्सिमम लोगों का वो पॉजिटिव ही होता है।
1: बट वो एक है ना कहावत चल रही है कि अगर हम तो दे देंगे बट हमें कोई नहीं दे सकता है क्योंकि हमारा वो पॉजिटिव है, हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी का।
2: नहीं ऐसा नहीं है। आप जब ओ पॉजिटिव, जब सपोज करिए कि मैंने कोई कैंप, हमारे यहाँ कोई शिविर लगा, कैंप लगा, उसमें अगर 20 लोगों ने रक्तदान किया है तो मान के चलिए कि 10 लोग तो ओ पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड का ये, तो उसमें ओ पॉजिटिव इज अ वेरी वेरी मतलब कॉमन ब्लड ग्रुप, इट इज नॉट द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो इसलिए आप अगर दे भी देते हैं, ओ पॉजिटिव ने दे दिया अगर, तो ओ पॉजिटिव की होने की जो संभावना है ब्लड बैंक में वो प्रचुर है। ओ पॉजिटिव जरूर होता है हमारे, ओ पॉजिटिव भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ओ पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि रेयर हो, मेरा ही ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अगर किसी को लग रहा हो ऐसी कोई शंका है तो आके भैया मुझसे संपर्क कर लेना, मैं अपना दे दूंगा।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल मैंने अपना पता करवाया था, मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है।
2: कह तो ना बहुत ही कॉमन है।
1: बट सर जब रेयर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है?
2: अभी तक जो मैंने देखा है कि रेयर ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव आया है, ए नेगेटिव आया है, ये काफी नेगेटिव तो सारे के सारे ही मुझे, अगर आप पूछें तो सारे ही मुझे बहुत ही कम दिखाई दिए हैं कि ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सब बहुत ही रेयरस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, बहुत ही रेयरली मिल पाते हैं। उनके उनके जो डोनर्स होते हैं उनको भी हम लोग पता लगा के रखते हैं उनका, और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे संपर्क भी किया जाता है, मगर हाँ देट इज टोटली वॉलंटरी डोनेशन, वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू डोनेट।
1: बिल्कुल। ऑल राइट सर, तो आप मुझे अब ये बताइए कि जब आपके कैंप लगते हैं या शिविर आपके लगते हैं तो आप ब्लड बैंक में प्रभारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती होंगी, तो उस वक्त आपके काम और आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को?
2: रक्त केंद्र गोंडा में, एक्चुअली अब ब्लड बैंक से नाम जो है ब्लड बैंक का ब्लड सेंटर हो चुका है, जितने भी ब्लड बैंक से सबको ब्लड सेंटर के नाम से बुलाया जाता है, तो रक्त केंद्र बोलते हैं
1: जी।
2: आपके रक्त केंद्र गोंडा में मेरे जो सहकर्मी हैं हमारे साथ में डॉक्टर मेडिकल अफसर्स भी हैं, और हम सबका एक ही काम रहता है कि अगर कभी शिविर लगता है तो पहले से एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है एक दिन पहले ही कि अमूमन कितने लोग आने वाले हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके जलपान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था सरकार देती है, उनके जलपान की व्यवस्था सूक्ष्म जलपान बोलते हैं, मतलब कि हम उनको ओवरलोड नहीं करते हैं किसी को कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया है लो खाओ भेलपूड़ी, लो खाओ छोले भटूरे, ये सब नहीं होता है। आपको नॉर्मल चीज दी जाएगी, क्योंकि बिकॉज थोड़ा नौजिया लगता है कि ज्यादा खाने पे आप थोड़ा नौजिया हो जाता है, तो हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वी मेक श्योर कि जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं दे आर हेल्दी डोनर्स, उनकी स्क्रीनिंग होती है, बेसिकली उनकी काउंसलिंग होती है। हमारे यहाँ एक काउंसलर है
1: जी।
2: जो काउंसिल करता है, तो काउंसलर का काम होता है कि हमारे पास एक कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म मतलब कि आपने कंसेंट दिया है कि आप मेरा रक्त निकाल सकते हैं, उसको कंसेंट फॉर्म हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हो। कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि क्या आपने पहले रक्त दिया है, रक्त दिया है पहले तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था रक्त देने में, आपने रक्त कब दिया था, कितने साल हो गए, कहीं 3 महीने के भीतर ही रक्त तो नहीं दे दिया है, अभी 3 महीना पूरा हुआ है कि नहीं आपका, क्योंकि हर व्यक्ति एक बार अगर रक्त देता है तो अगले 3 महीने तक रक्त नहीं दे सकता। तो टाइमिंग कि कब उसने डोनेट किया था लास्ट टाइम, खाने पाने में कि कहीं उसको कोई खाना उसको मिला है कि नहीं मिला है, रात में सोया है ढंग से कि नहीं सका है, कोई उसको कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है कि कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं ले लिया था, उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसी खाई हुई है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे लोग जो है एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन इज अ प्लेटलेट सेपरेटर, मतलब कि हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है एस्पिरिन, जो कि ज्यादातर हार्ट के पेशेंट्स को बोल दी जाती है
1: जी,
2: इनको डिसलिपिडीमिया एक बीमारी होती है उनको दी जाती है, तो कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ली है जो कि हार्मफुल है, जिसमें आप जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो सब कुछ हम पूछ के भली भांति उनसे पूछ लेते हैं, उनका वजन चेक कर लेते हैं, वजन कहीं 45 किलो से कम तो नहीं है, 45 किलो से कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, इसलिए हम लोग 45 किलो से कम व्यक्ति का नहीं लेते हैं, 45 से 50 किलो तक के व्यक्ति को हम अवॉइड करते हैं, 50 किलो के ऊपर ले लेते हैं, और हीमोग्लोबिन जो उसका हीमोग्लोबिन है वो हमने उसका जो मानक है वो है 12.5 ग्राम प्रति डेसिलीटर है, तो 12.5 HbA हम ले लेते हैं, और उससे ऊपर हो तभी लेते हैं, और बाकी उससे पूछ लेते हैं कि कोई कभी कोई बीमारी तो नहीं है उसको, कोई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के पेशेंट को हम कभी भी नहीं लेते हैं उसका ब्लड, टीबी का पेशेंट जो है परमानेंट डिफरल बोलता है, मतलब कि हम उसे कभी ब्लड नहीं लेते हैं, एचआईवी पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं, और इस तरह से कोई कैंसर का पेशेंट है उसको कभी ब्लड नहीं लेंगे, उसे किसी ने इंजेक्शन लगवाया हो, कोई वैक्सीन लगवाई हो, उसका अलग अलग समय है कि जैसे रेबीज की वैक्सीन है तो अगले एक साल तक आपने रेबीज की वैक्सीनेशन लिया है तो आप अगले एक साल तक नहीं ले सकते हो, टैटू आपने कराया है तो अगले 6 महीने से एक साल तक आप अवॉइड करो, तो ये सब उसके जो अलग अलग मानक हैं उनसे पूरी पूछताछ कर ली जाती है, उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, टेस्ट भी हम लोग करते हैं, और प्लस शिविर में तो हम तुरंत टेस्ट नहीं करते हैं, शिविर में तो हम लोग तुरंत पहले ब्लड निकलवाते हैं फिर उसके बाद थोरो टेस्टिंग होती है जो कि टेस्टिंग हमारे सेंटर पे होती है, और ये सब जब हम पूछ लेते हैं उसके बाद वो स्वस्थ लगता है, हमको फिट लगता है, मेंटली साउंड लगता है, फिजिकली फिट लगता है, देन उसका फिर बीपी चेक किया जाता है, बीपी उसका अगर नॉर्मल है या जो हमारे मानक हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऊपर का या नीचे का जो होता है उसके मानक के अनुसार अगर उसमें आ रहा है वो विद इन दैट नॉर्मल लिमिट्स में अगर वो आ रहा है तो हम तुरंत उससे उसको ओके कर देते हैं, उनसे साइन लेते हैं तो कंसेंट फॉर्म पूरा हो जाता है, फिर वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, फिर हम अश्योर करते हैं कि जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वो सेफ एंड साउंड हो रहा है, मतलब अंडर टोटल एसेप्टिक प्रिकॉशंस हो रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंट सुकून से है, निकालने वाला सुकून से है, तब ब्लड निकलेगा। ब्लड डोनेशन में मैं एक बात बताना चाहूंगा, सभी जनता जो मेरे सब सुन रहे हैं उनको बताऊंगा, जब ब्लड डोनेट कराओ करने आए आप कभी भी तो जल्दबाजी करने मत आइए, जल्दबाजी अगर है तो आप बिल्कुल मत आओ, आप आराम से सुकून से आओ, ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो है जितना सुकून से आप आओगे उतने सुकून से वापस जाओगे, ये हड़बड़ी का मामला नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
2: है ना।
1: ओके, एंड इसके बाद आप वो कार्ड बनाकर देते हैं?
2: हाँ, कार्ड हम देते हैं, कार्ड में 3 महीने का टाइम रहता है कि आप 3 महीने के भीतर इस कार्ड को भुना सकते हो, इस कार्ड के एवज में आप रक्त ले सकते हो, एक

0: आयरन है,
1: जी
0: आयरन है, तत्व है, मिनरल्स हैं, जो भी हैं, वो जितना मेरा आयरन निकला है, क्योंकि ब्लड में आयरन बहुत होता है
1: जी,
0: आपका जितना आयरन निकला है वो आपके नॉर्मल खान पान से देखा गया है कि अगले 3 माह के अंदर उतना ही आयरन जितना आपने दे दिया है उतना ही आयरन आपके शरीर में वापस लौट के आएगा। उसको लगभग 3 महीने लग जाते हैं, 90 डेज लग जाते हैं।
1: ओके।
0: फिर आप 90 डेज बाद यू आर फिट अगेन टू डोनेट ब्लड।
1: ओके।
0: तो हम ये मानते हैं कि अगले 3 महीने तक क्या करोगे अगर जरूरत पड़ गई तो, अगर आप ही को जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? ऐसे में सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि कार्ड उपलब्ध कराएं, कि इस कार्ड को लीजिए, अपने पास रखिए, आपको कभी जरूरत पड़ती है इस विदिन 3 मंथ्स तो आप जाइए ब्लड बैंक में दीजिए, और आपका रक्त केंद्र गोंडा आपको देने का वचन देता है कि अगर उपलब्ध है तो हम आपको जरूर जरूर देंगे।
1: ओके। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक का। इस ब्रेक के उस पार आते हैं और आपसे वापस से काफी सारी बातें करते हैं ब्लड से ही रिलेटेड। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने वाले शो गोदली में।

0: डॉग इंडी। दीदी से ब्रेकअप हो गया तो नैन्सी को भी भूल गए हो। फोन नंबर चेंज किया, कॉल नहीं किया, कुछ
1: okay,
0: नहीं।
1: ओके ओके अगर अगर तुम्हें मिलता तो वो याद आती। आई जस्ट वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग फॉर अ व्हाइल। ओके नाउ आई विल टेक योर नंबर।
0: यू विल कॉल मी।
1: आई विल कॉल यू।
0: प्रॉमिस।
1: आई प्रॉमिस। द सेम नंबर राइट?
0: या। आर यू ओके नाउ? Hey, let's dance. Go, go, go.
1: Hey, come on.

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और

0: वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो, इसका नाम है गौतली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशे उन्नति, एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट डॉक्टर चेतन पराशर जी, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी। सर, हम बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन की, एंड एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो है, जो लोगों के बीच में मिथ्स रहते हैं कि अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि हम आगे किसी भी काम के ना रहे, यानी कि मेल्स के बीच में रहता है कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, और ये सारी मिथ्स मैंने खुद भी कई लोगों से सुने हैं। तो सच में ऐसा होता है, या फिर ये सच में सिर्फ एक मिथ्स ही है जो लोगों के बीच में फैली हुई है?
6: देखिए, मिथ्स का क्या, आप वाकिफ हो तो आप सोचो कि जितनी भी मिथ्स थी, सब पे सबको जब नकारा गया तो कैसे नकारा गया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया
5: जी।
6: एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किया गया कि ये मिथ है। पहले था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है
5: जी,
6: किसी ने उसको मिथ प्रूव किया
5: जी,
6: बताया गया कि वो गोल है
5: जी।
6: तो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करो ना। मैं कह रहा हूँ कि मिथ जो है वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से, उस समय भी अज्ञानता रही होगी, आदमी ने जो है रिसर्च की, पढ़ाई की, एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, उस समय इतना एडवांस रिसर्च का माहौल नहीं था मिथ्स प्रूव करने के लिए, मतलब रॉन्ग प्रूव करने के लिए। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये लगता है कि खून देने से आपके शरीर में कमजोरी आती है, तो वाई नॉट डू एन एक्सपेरिमेंट। आप खुद सोचो कि अगर यही अगर आप सोचने लगे और आपकी कमजोर होने लगा है, तो आपको चाहिए कि जो लोग खून डोनेट कर चुके हैं, उनसे अच्छा उदाहरण, उनसे अच्छा समझाने वाला कौन मिलेगा आपको, आप उनसे पूछो। मैं आपको अभी बोल दूं कि नहीं नहीं गलत है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आपकी ये मिथ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो, कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। आई थिंक द बेस्ट वे इज टू खुद रियलाइज इट योरसेल्फ, टॉक टू द पीपल जिन्होंने दिया हुआ है, जो जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, उनसे पूछिए कि चढ़ाई में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। वजह इसके कि मैं अगर बोलूं कि नहीं नहीं कोई, ये सब आपकी वहम है, ये सब भ्रम है, आप, मैं, चलिए मैं बोल देता हूं कि है भ्रम है, आपको लग रहा है कि आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, आपको कहते हैं कमजोरी आ जाएगी आपके, है ना, मानसिक स्तर में कमी आ जाएगी, फिजिकल फिटनेस में कमी आ जाएगी, ये सब मिथ है, ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है कि आप जब आप खून दे देते हो तो आप स्वस्थ हो जाते हो। मैंने बोला ना कि आपका BP भी नॉर्मल हो जाता है, आपको दवाइयां कम खानी पड़ती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के लिए इतना हानिकारक है, वो कम हो जाता है। जो हार्ट के लिए हानिकारक जो चीज़ है वो कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है हार्ट आपका जो है लंबा चलेगा, लंबा चलेगा मतलब आप लंबा जियोगे, और लंबा जीना ही तो हर व्यक्ति चाहता है कि आप फिट होके लंबा जियो। है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो आप पहले आके एक बार ब्लड डोनेट करो, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा आप, मैं खुद डोनेट करता रहता हूँ, मेरे यहाँ मेरे कर्मचारी सारे के सारे ऐसे हैं एक से बढ़कर एक कि वो खुद डोनेट करते रहते हैं, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आप आइए कभी ब्लड बैंक, आके मिलिए, और यू आर ऑलमोस्ट वेलकम। कि अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि क्या ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्या खून डोनेट करने से ऐसा हो जाता है, मुझसे आके मिलिए, मैं खुद बताऊंगा। आप चाहे तो ब्लड बैंक में आके हम ये है कि आपसे मिलवा देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने 70-70 बार डोनेट किया हुआ है, मैंने 50-50 बार डोनेट किया हुआ है।
5: क्या बात,
6: ऐसे ऐसे लोग हैं आपके गोंडा में ही, ऐसे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं हर 3 महीने पे डोनेट करते रहते हैं और हेल्दी एंड साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्वस्थ होंगे वो, आपसे ज्यादा स्वस्थ होंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर बोल सकता हूँ।
5: थैंक यू सो मच सर। तो अगर कोई हमारा प्रोग्राम सुनकर अगर अभी आपके पास आता है अपना ब्लड डोनेट करने, तो उसे आपसे वो कैसे कांटेक्ट करेगा?
6: आप जो है अपने जिला अस्पताल आपका जो है स्टेशन रोड पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा, जिसको जिला चिकित्सालय गोंडा बोलते हैं, जो कि अब मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया है। आप वहां पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ब्लड बैंक, ब्लड सेंटर, रक्त केंद्र, रक्त कोष, ये सब अलग अलग नाम है, किसी से व्यक्ति से पूछ लीजिए कि रक्त कोष कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, वो सीधे आपको राह दिखा देगा। आप वहाँ आइए, आप आके मिलिए, वहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स सब मौजूद हैं, और आप बेझिझक आइए, पहले हम आपकी जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उनको दूर करेंगे, उसके बाद आपसे डोनेशन की बात करेंगे।
5: ओके, मतलब पहले आप टेस्ट करने वाले
6: हैं?
5: हाँ,
6: नहीं टेस्ट मतलब कि हाँ, जैसे एक अच्छी बात ये भी होती है कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसके टेस्ट भी होते हैं, है ना। जैसे आपने ब्लड डोनेट किया तो आपके ब्लड के सारे टेस्ट भी होंगे, और लोग जो है ब्लड टेस्ट के लिए इधर उधर भागते रहते हैं कि पैसे भी खर्च करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप आइए यहाँ पे, पता लगाइए आपका ब्लड, आधे से ज्यादा टेस्ट तो ब्लड के हम खुद ही कर देते हैं,
5: है ना? आयरन के, हीमोग्लोबिन के,
6: आपके CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें पता लग जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है, आपका प्लेटलेट का स्तर कितना है। फिर हम बाकी TTIs जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, DTIs, उनको हम लगाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, NHIV 1 and 2, इन सब की टेस्टिंग होती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपका फ्री में टेस्टिंग हो रही है, आप आइए टेस्ट कराइए, और वो भी गोपनीय रखा जाता है। अगर आप हमको इसकी आज्ञा देंगे कि हम आपको बताएं, तभी हम आपको बताएंगे, और ये सब कॉन्फिडेंशियल रहता है, इट इज टोटली कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। आपको ये आपकी रिपोर्ट्स कहीं पे भी बाहर नहीं जाती हैं, पूरा का पूरा हमारे ब्लड बैंक में रहता है, और सिर्फ तो आपको ही कन्वे करते हैं।
5: थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, आज भी कई लोग यही यकीन करते हैं कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएंगी, हम वीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी और हमारा ब्लड वापस से नहीं बनेगा। बट वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको अनीमिया जैसी भी अगर कोई बीमारी है, तो अगर आप एक सही तरीके से अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उसे भी क्योर किया जा सकता है।
6: देखिए, अनीमिया तो ब्लड की कमी को कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं।
5: जैसे कि अगर कोई कहता है कि मेरा 30% आ रहा है हीमोग्लोबिन
6: जी,
5: तो फिर कई लोग खुद को ऐसे में अपने आप को अनीमिया का पेशेंट बोल देते हैं कि हम अनीमिया से ग्रसित हैं, तो हम अपना ब्लड नहीं दे सकते। बट वहीं पर लोग कहते हैं कि आप अपना ब्लड देंगे, अगर आपका 12 से ऊपर है तो आप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं।
6: हमारा जो मानक है वो है 12.5 ग्राम। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम है, आप आइए ब्लड डोनेट करिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। उससे कम होता है तब हम लोग उसमें डोनेशन नहीं लेते हैं, फिर वो अनीमिया की श्रेणी में आता है। 10 ग्राम से 8 ग्राम तक मॉडरेट अनीमिया होता है, 8 ग्राम से नीचे वाले को हम सीवियर अनीमिया की श्रेणी में बोलते हैं। तो अनीमिया अगर किसी को है तो पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि पहले वो आयरन के से जुड़े हुए फल खाए, सब्जियां खाए, दवाइयां लेनी हो दवाइयां ले, अपने स्तर को बढ़ाए, 12.5 से ऊपर कर लो, उसके बाद आप डोनेट करो। अनीमिया ऐसा है कि उसको तो आप फल खा के ही, आपके खान पान में कहीं ना कहीं कमी होती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में होता है आयरन डेफिशिएंसी, टू बी वेरी प्रिसाइज। आयरन डेफिशिएंसी मतलब हम आयरन युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं। आयरन युक्त भोजन में आपका आता है खजूर होता है, चुकंदर होता है, अनार होता है, और गुड़ होता है
5: जी,
6: और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये सब आयरन से युक्त होती हैं। आयरन शरीर में जब जाएगा तभी आपका शरीर हीमोग्लोबिन बनाएगा, खून बनाएगा, और हम इन्हीं सब चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें खानी है चाउमीन तो हम मतलब अपना अनीमिया तो दूर नहीं कर।
5: सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करके जाता है तो मेनली आप उसे किन चीजों को अवॉइड करने को बोलते हैं? जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, कई लोग देखते हैं कि ब्लड डोनेट किया तो तुरंत ही एक ऑरेंज जूस का ग्लास मिल गया कि हमने ऑरेंज जूस पी लिया। क्या रियल लाइफ में वो तुरंत ऑरेंज जूस देते हैं या फिर आप लोग कुछ चीजें अवॉइड करते हैं कि आपको इस दौरान तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं खानी है?
6: जिस दिन डोनेट करते हैं उस दिन हम उनको जैसे ही डोनेशन होता है उसके बाद हम ये अवॉइड करते हैं कि वो जैसे सपोज करिए अभी आपने डोनेट किया
5: जी,
6: हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप झुको, अभी आपको झुकना नहीं है, झुक के जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जूते पहनने के लिए झुक जाते हैं, कहते हैं झुको मत अभी, है ना, उससे थोड़ा चक्कर आ जाएगा, अभी लेटे रहो, पैर ऊपर करके लेटे रहो। चक्कर क्या होता है कि जब आपने आपके शरीर से थोड़ा खून निकलता है तो हम चाहते हैं कि वापस खून जो है वो आपके मस्तिष्क में पहुंचे, तो थोड़ा अपनी अपने पैरों को उठाएंगे तो सारा जो ब्लड है वो टुवर्ड्स आपके ब्रेन की तरफ फ्लो करेगा, तो चक्कर आने का और डिजीनेस चक्कर आना ये सब जो है ये सब नहीं होगा। हम बोलते हैं रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर उनको हम एक जूस देते हैं, एक ग्लूकोज बिस्किट देते हैं, एक पैकेट छोटा, खाओ रिलैक्स करो, 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स तक हम उनको रिलैक्स करने देते हैं, फिर आप जा सकते हो। आप जो है कोई भारी भरकम काम इतना जल्दी मत करना, खाना खाओ शाम को, मतलब जब भी आपका खाने का जो समय है वो खाना खाओ, धूप में ज्यादा मत निकलना, धूप में निकलने में तो वैसे ही चक्कर आ रहा है आजकल, इतनी गर्मी थी अब थोड़ी सही हुई है, तो हम तो अवॉइड करते हैं कि भैया कोई भारी भरकम काम अभी फिलहाल मत करना, और नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल दिनचर्या स्टार्ट करो और आयरन युक्त भोजन करो।
5: थैंक यू सो मच सर, कोई लास्ट मैसेज?
6: बस मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा कि गोंडा की जनता को कि आप आइए और रक्तकोश में जो है आप आएंगे तो आपका एक खून का रिश्ता बनेगा हमसे।
5: क्या बात है सर।
6: और इस खून के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए किसी के कहने पे मत आइए, आप जो है पहले जो है एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब आपको लग रहा है कि खून देने से खून कम होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, खून देंगे आप तो आपके शरीर में नया खून बनेगा, नया खून, नए कपड़े चमकदार होते हैं ना वैसे नया खून जो है वो नया एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके शरीर, तो आप आइए बेझिझक आइए, जब चाहे तब आइए, 24 घंटा आपका आपके जिले का रक्त केंद्र 24 घंटे खुले रहता है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, हम मानकों के अनुसार ही रक्त लेते हैं और मानकों के अनुसार ही सेफ रक्त प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ किसी तरह का भी कोई भी परेशानी नहीं आती है, और कभी भी आप स्वतंत्र हैं कभी भी मुझसे संपर्क करने के लिए, मैं आप मेरा पता वही है जिला रक्तकोश जिला गोंडा। थैंक यू
5: सो मच सर, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे साथ बातचीत करने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे,
6: बहुत बहुत शुक्रिया।
5: इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे हम, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना FM जे जे ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: ज्ञान स्थली

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टर स्किप्स IIM रोड लखनऊ, संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

किसी ने कहा शाम हुई है, किसी ने कहा चेहरा तेरा, किसी ने कहा दिल धड़क रहा है, किसी ने कहा धड़कन तेरी, किसी ने कहा अरे वो देखो चांद निकल आया, किसी ने कहा बस चांदनी मेरी। पर कहते सुनते एक बात बताना तो भूल गए, वो जो सबको याद दिलाता है कि चांद कौन है, चांदनी कौन है, बातें क्या हैं, जज्बात क्या हैं, उसको तो बताना भूल ही गए। जी हाँ, मैं बात करूँ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के RJ 89.6 FM की, ये गोंडा शहर की धड़कन। आप लाइव हैं अपने आरजे बीना के साथ, अपने शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी जानता रहे, हमें तो पता है कि हम 6 बजे आपके साथ होते हैं, और ना सिर्फ साथ होते हैं, आपको अपने पास बुला के ले चलते हैं उस सफर पे जहाँ पे सिर्फ मस्ती और आपका एंटरटेनमेंट होता है। यानी कि बातों के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा। तो सलूशन के साथ साथ मैं आज उन लोगों की खास तौर पे बात करूंगी जिनकी राशि में कुछ गड़बड़ है। आजकल ना लोग ये एस्ट्रो वेस्ट्रो वाली बातें, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के चक्करों में घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि सबकी राशि को, हाँ मतलब कहते हैं ना, राशि तक पहुंचाने का काम आपके लव गुरु करते हैं। तो अगर आपको अपनी राशि के अनुसार जानना है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो आज ही इसी समय अपने फेवरेट नंबर को अपनी स्क्रीन पे डायल कर लें, डॉक्टर लव के आते ही डायल करें, और जानें कि आपकी राशि के अनुसार आपका लव पार्टनर कौन होने वाला है। हाँ, मेरी राशि जो है मैंने उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर लव से बहुत दिन पहले ही पूछ लिया, और मुझे जहाँ तक मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में जो जो चीज़ें जाननी थी वो बिल्कुल मेरी राशि से मैच कर रही थी। मतलब मेरा वाला लाइफ पार्टनर मेरी राशि से मैच करता हुआ है। तो आप लोग कहीं मतलब भूल भटक ना जाएं, क्योंकि आजकल तो भाई ना तो लव मैरिज काम आ रही है, ना तो अरेंज मैरिज काम आ रही है। आजकल मुझे लगता है राशि फल ही आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, लेकिन कौन वो जो सही रास्ता दिखाएगा? तो मुझे लगता है कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई और नहीं, आपके डॉक्टर लव ही काफी हैं। तो फटाफट से अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी राशि फटाफट से चैट रूम में टैग कर दें कि आपका जो कहते हैं ना कि जोड़ियक साइन क्या है, मुझे बताइए। फिलहाल मेरा क्या है वो तो मैं थोड़ी देर में बता ही दूंगी। तो फिलहाल आप लोग के लिए आरजे बीना आज की सबसे खास खबर बता चुकी है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और ये सोचते रहिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर जिसको मिल चुका है भाई, वो अपना क्रॉस चेक कर ले कि भाई जिसके साथ मेरी शादी हुई है या जो मेरे साथ घूम रही है लड़की मेरे बाइक के पीछे बैठ के, वो एक्चुअली में मेरी वाली है या फिर किसी और की वाली। तो बिल्कुल इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे यानी कि आरजे बीना को अपना जोड़ियक साइन बताना है, और मैं उसी के हिसाब से डॉक्टर लव से पूछ के बताऊंगी आपका वाला लाइफ पार्टनर आपका वाला है या किसी और का है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

इस ब्रेक के साथ आप ये जानते रहिएगा कि कौन सा वाला गाना आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है। फिलहाल गाना कोई भी मैच करे, लेकिन लाइफ पार्टनर अगर ना मैच करे तो लाइफ हो जाती है क्या, आपको पता ही है। तो लाइफ को बनाना है झिंगा लाला, तो बस आप ट्यून कर लीजिए अपनी लाइफ का लाइफ पार्टनर यानी कि ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

दीदी जोर से नाची या नहीं नाची, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीदी के घुंघरू कमजोर थे तभी घुंघरू टूट गए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता घुंघरू को टूटना चाहिए था। वैसे तो बहुत तेज तेज लोग नाचते हैं, और अभी एक मूवी आई ईठा भाई, और मुझे लगता है कि ईठा भाई तो कितना तेज तेज नाचे थे कभी उनके घुंघरू नहीं टूटे। क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि घुंघरू कमजोर थे।

तो वापस से आरजेवीना का आप सभी को दिल से नमस्कार। और यस, दिलों की धड़कनों और सिंगल लोगों की आंखों के नाम वाली शाम में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपकी अपनी आरजेवीना और आपके साथ मौजूद है ये प्यारी सी शाम का एहसास, जिसमें हल्की सी बारिश भी है और प्यार का एहसास भी है, प्यार भरा तड़केदार और आपके साथ हंसी के कहते ना कि फुहारे वाला शो, यानी कि आरजेबीना वाला गोंडा मैसी मसाला सैटरडे स्पेशल डॉक्टर लव के स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। एंड यस, आपको पता है ना कि यहाँ दवा नहीं, दुआ भी मिलती है, सलाह भी मिलती है और कभी कभी हल्की फुल्की डांट भी मिलती है। तो इसलिए दिल की बात खुलकर कहिए, क्योंकि आज दिल के डॉक्टर की छुट्टी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और आपको अगर आपका क्रश कह दे भैया, तो समझ लीजिए कि दिल का एक्सरे नहीं, सीधा पोस्टमार्टम हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आज की शाम की शुरुआत हम लोगों ने, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, डॉक्टर लव ने जोडियक साइन के अकॉर्डिंग आपके प्रेमी और प्रेमिकाओं को लेके भविष्यवाणी थोड़ी सी की है। तो मैं ही बता देती हूँ उनके आने से पहले, जिससे कि आपके जो कहते हैं ना कि इंतज़ार को और इंतज़ार ना करना पड़े। तो गुड इवनिंग महेंद्र दीपेन फ्रॉम राजस्थान। ओके, कैसे हैं महेंद्र आप? और आपकी बात सही है मैम, घुंघरू ही कमज़ोर थे। आई अंडरस्टैंड, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट का मतलब डांस हम लोगों ने देखा, कभी घुंघरू उठे नहीं देखे, लेकिन दीदी ने इतना तेज़ डांस किया कि घुंघरू उठ गए। इट मीन्स घुंघरू कमज़ोर थे, अच्छी कंपनी के खरीदने चाहिए थे दीदी को। सविता जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? और सभी का स्वागत है। तो चलिए अपना अपना जोड़ी एक साइन तो बताइए, पहले ही नहीं बताऊंगी यार, मतलब अपना जोड़ी एक साइन बताना पड़ेगा। और मेरे एक लिसनर ने मुझे कॉल करके पूछा है कि मेरी राशि मेष है, मुझे कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा? अरे भाई, आपका लाइफ पार्टनर जो होगा ना, वो फुल एनर्जेटिक होगा, ठीक है? वो रविवार की सुबह 6 बजे ही बोलेगा कि चलो ट्रैकिंग पर चलते हैं, और आपके उठने के पहले आपको जगा देगा और कहेगा मेरे लिए चाय बना के ले आओ, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। तो आपका लाइफ पार्टनर फुल ऑन एनर्जी होने वाला है, आपके साथ वर्कआउट करने वाला है। मेष राशि वाले, आपकी लाइफ पार्टनर की एनर्जी फुल हाई रहेगी, वो बहुत खाने पीने वाला है क्योंकि उसे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप थोड़ा सा राशन पानी को लेके कंसर्न रह सकते हैं आने वाले समय में, मतलब आपका घर के खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोटीन शेक वगैरह में जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जेटिक रहने वाला है। बाकी बताइए, पहले का मुझे पता चल गया भाई, जिसकी जिसकी मेष राशि वो अपने वाले को मिला लो कि आपका वाला लाइफ पार्टनर एनर्जेटिक है कि नहीं है। बाकियों का तो बाद में बताऊंगी, लेकिन जब तक मुझे चैट रूम में सबकी राशि दिख नहीं जाएगी, मतलब सबके जोड़ी एक साइन के बारे में आप लोग बता नहीं दोगे। एरिस का बता दिया है मैंने, यानी कि मेष का बता दिया है, बाकियों का कुछ देर बाद। वैसे मेरा मेष नहीं है, आप लोग घबराइए मत। फिलहाल मैं आप लोग को एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ, क्योंकि यार बारिश हो रही है और बारिश सूखी सूखी हो रही है, मीन्स बारिश अकेले हो रही, गाना नहीं बज रहा है यार बारिश वाला, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ना इंसाफी है। तो लेटेस्ट वाला थोड़ा बारिश वाला सॉन्ग सुनते हैं। यार बीच में बड़े गाने आते थे बारिश को लेके, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। कोई मोहब्बत कैसे ही बरसा सकता है, मतलब लिखने वालों ने भी मतलब कवि का अभिप्राय मैं समझते ना, कभी मुझे लगता है कि मैं खुद कभी ना बन जाऊँ कवित्री, मतलब क्या लिख डालते हैं लोग कुछ भी। इन लोग की लिरिक्स कभी सुनो, इतना अतिशयोक्ति, मतलब इतनी तगड़ी वाली हिंदी कौन यूज़ करता है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, अगर मोहब्बत बरसाने से बरसती ना तो आधी दुनिया मोहब्बत में डूबी होती, सारे काम धंधे बंद हो गए होते। फिलहाल बारिश से मोहब्बत नहीं बरसने वाली। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ट्रेंडिंग बारिश सॉन्ग। तो आप लोग भी अगर किसी खास बारिश सॉन्ग के बारे में जानते हैं तो जरा चैट रूम में बताइएगा, हो सकता है लास्ट तक मैं प्ले कर दूं। गारंटी नहीं मिलती है किसी भी चीज़ की यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो चलिए मॉनसून स्पेशल गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा मॉनसून है और सावन के पहले सावन वाली फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो पहला गाना मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार है। कवि का अभिप्राय क्या है ये आपको जानना पड़ेगा, कवि का क्या अभिप्राय है ये तो गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गाना पहला जो है ये बढ़िया है, मतलब मुझे पसंद है। वैसे गाने यार बारिश के सारे ही अच्छे होते हैं, चाहे अभी ये वाला गाना सुने, अभी बरसात में जी लेने दो, नहीं अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो,
भरे पर साथ में पी लेने दो। देखो कभी का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि बारिश के साथ पीने का मजा कुछ और है। क्यों क्यों बताइए? क्योंकि यार उसी में जो कोल्ड ड्रिंक है उनकी बारिश के साथ बढ़ती रहती है। भाई बंदे ने आधा लीटर की बॉटल खरीदी, खत्म होने से पहले वो भर जा रहा है गिलास बार बार, तो ये किफ़ायती है बारिश की नहीं? पता भी नहीं चलता हम बारिश का पानी पी रहे हैं, हमें ये वाइब आती है कि हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो मेरी तरफ से भाई कभी का अभिप्राय बढ़िया है, और अगर आपका भी मन है कुछ पीने का, कोल्ड ड्रिंक चाय वाय, तो बारिश में खड़े होकर पीजिए, थोड़ा किफ़ायत बनी रहेगी, चाय जल्दी ख़त्म नहीं होगी, पानी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए पहले बारिश वाले गाने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे चैट रूम में बारिश दिखनी चाहिए।

0: भाई बाकियों को तो इंतजार हो गई कि मेरे जोड़िए के हिसाब से मुझे लाइफ पार्टनर मिला कि नहीं। भाई देखिए, रिग्रेट मत करिएगा, अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपकी राशि के हिसाब से नहीं है तो उसको बनाइए, हम क्यों नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, सब्जी हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनती, हम उसको तड़का लगा देते हैं, तो उसको बनाइए, वैसा बनाइए लाइफ पार्टनर को। ठीक मैम जी, मेरी राशि सिंह है, मेरा भी बताओ, मेरी शादी कब होगी ये बता दो। बिल्कुल आप बस परेशान मत होइए, अब मैं नहीं बताऊंगी, आपके अपने डॉक्टर लवी बताएंगे आपको कुछ देर में, क्योंकि सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप शनिवार को कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं। क्यों क्यों ना खुश रहूं, क्योंकि वो खुश रहने का दिन है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि शनिवार को ऐसा क्या है मेरे पास, अब आप ही सुन के बताइए मेरे पास क्या है।
1: ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: डॉक्टर साहब स्वागत है आपका।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: तो डॉक्टर लव साहब, मैं एक बार आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाल चाल बढ़िया है?
3: एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: क्या जिंदाबाद, मतलब क्या जिंदाबाद कह रहे हैं क्या?
3: नहीं, मौसम बहुत बढ़िया।
0: किस प्रकार,
3: किस प्रकार मौसम? हमने देखिए पिछले शनिवार को वादा किया था कि खुदिहार देंगे बादल।
0: आपने खुदियारा वधियारा नहीं है, मैंने भगवान को टेक्स्ट मैसेज किया है बकायदा। हाँ। और सिचुएशन वीडियोग्राफी कर करके बकायदा भगवान को भेजिए कि भगवान मौसम देख लीजिए आप क्या चाहते हैं, कि मैं एक दिन आते आते अपने शो में रास्ते में तवा फ्राई होके किनारे पड़ी रहूं। मैंने ऐसे भेजा बकायदा
3: भेजा, लेकिन
0: और मेरा मोबाइल ऐसे टघर रहा था गर्मी के मारे।

0: क्रिया सब आप खुद यारने की बात अच्छा, कर रहे थे। आप किसी को डंडा लेके कहेंगे कि फलाने मेरा ये काम कर दो, कोई नहीं करने होने वाला है। जमाना बदल चुका है, गोंडा शहर में बता दीजिए आप किसी से कहें कि हम डंडा से काम कराए,
1: बिल्कुल डंडा से काम करें,
0: नेवर नेवर नेवर।
1: तो हम डंडा से क्यों काम करेंगे, हमारा नाम ही डॉक्टर,
0: इट इज इम्पॉसिबल।
1: तो हम डंडा वाले है ही नहीं, हम तो मोहब्बत वाले हैं भाई।
0: अरे आप ही तो कह रहे थे हम खुदियाने जाओ,
1: तो खुदियार मतलब
0: तो खुदियारेंगे कैसे, मोहब्बत से कहेंगे कि जैसे कि एक गाना लोगों ने बना दिया कभी कभी प्राय है कि मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया,
1: सावन आया
0: तो आपने मोहब्बत भेज दी ऊपर, सावन करा दिया,
1: सावन करा दिया नीचे।
0: यही मतलब ये सब मतलब प्रैक्टिकल बातें क्या करिए जो मतलब यही
1: एकदम
0: जिसका ताल्लुक जमीनी स्तर पे लोगों के साथ हो।
1: अब जमीनी स्तर पे लोगों के साथ हम थोड़ा ऊपर वाले हैं, तुम्हारा ताल्लुकात जरा ऊपर वालों के
0: साथ। अब आपका ताल्लुक कहाँ है, किससे, ये तो मैं बताऊंगी। और देखिए जोडियक साइन वाले परेशान हैं, लेकिन सबसे पहले कॉल ले लेते हैं, देखिए इनको क्या दिक्कत परेशानी कस्टमर से गिला शिकवा देख लेते हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मोहतरमा आप अपने आस पास अगर रेडियो बज रहा है उसको थोड़ा कम करें।
2: हेलो
0: हेलो, शुभ संध्या। हेलो नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शुभ संध्या।
2: हेलो
0: हेलो,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, शुभ संध्या
2: जी? ठीक हूं।
0: आपका नाम?
2: सबा।
0: सबा मतलब क्या बात है, आजकल आप चाय वाय नहीं पी रही, आवाज क्यों इतनी बदली बदली लग रही है?
2: नहीं पी के नहीं रहे, अभी तो पी के उठी।
0: अच्छा, तभी आवाज थोड़ी चेंज हो गई है। तो सबा ये बताइए आपको क्या कष्ट मुसीबत है?
2: कुछ नहीं,
0: मतलब कोई कष्ट मुसीबत नहीं है, ये बड़ी कष्ट की बात है।
2: आपको सुने नहीं थे इसलिए।
0: अरे बाप रे, मुझे नहीं सुनी थी, तो मैं क्या कहती हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए 6 बजे रोज आ जाया करें। डॉक्टर लव इनको बताइए कि कैसी है, मुझे रोज सुन सकती हैं, और अगर ये ना सुन भी रही हूँ तो भी मुझे सुन सकती हैं। मतलब मान लीजिए कि सो रही हैं,
1: सो रही
0: सबा, तो ये मुझे कैसे सुन सकते हैं?
1: मान लीजिए ये
2: गुड आफ्टरनून सर
1: जी, गुड इवनिंग जी,
2: आप बताइए सर।
1: बस और सब बढ़िया, आप बताइए।
2: ठीक है,
1: मतलब आप पहली ऐसी शख्सियत हैं जिसको कोई भी दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका
0: ये मुझे नहीं सुन,
1: कुछ भी नहीं
0: सुन नहीं पा रही थी मुझे ना।
1: हाँ,
0: अब सुनने लगी,
1: अब सुनने लगी, अब होने ये सब परेशानी आपको होगी।
2: क्या हुआ?
1: जिसने बीना जी को सुना उसको कोई ना कोई दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत हुआ।
0: व्हाट डू यू मीन?
1: नथिंग, आप हमको आँख तरेर कर मत देखिए।
0: आपकी नौकरी खा जाऊंगी मैं,
1: खा जाऊंगी
0: आपका क्लिनिक खा जाऊंगी मैं।
1: हमारी क्लिनिक जो है वो आलू से थोड़े बनी है, ये ईंट पत्थर से बनी है।
0: आजकल मैं
1: थोड़ा सा खाने वाली बन चुकी हूँ,
0: नॉन लिविंग चीजें भी खा रही हूँ।
1: बिल्कुल, आपको खाना भी चाहिए, नॉन लिविंग चीजें खा रही है, मतलब मोबाइल वोबाइल अपना मत खाइएगा भाई, ये तो बड़ी तकलीफ होगी हमको निकालने में। तो बताइए आपको क्या तकलीफ है सबा जी?
0: सबा को कोई तकलीफ नहीं है, सबा मुझसे मोहब्बत बेहद करती हैं और इसीलिए मुझे सुनना भूल जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए परेशान है। तो सबा ये बताइए, मुझे ना सुनने के पीछे कोई कारण है आपका जेन्युइन?
2: जी हम सुनते पर फोन नहीं मिलाते हैं।
0: अच्छा, सुनती हैं लेकिन फोन नहीं करती हैं?
2: यस
1: यस,
0: ये बड़ी मुसीबत है, ये तो मेरे लिए मुसीबत है, आप फोन नहीं करती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा लिसनर मुझे सुन रहा है कि नहीं
1: सुन रहा है, ये बड़ी मुसीबत है,
0: ये मेरे लिए मुसीबत की बात है।
1: आप इनको फोन कर दीजिए,
2: आपके पास जल्दी फोन ही नहीं लगता है।
0: मेरे पास जल्दी फोन नहीं लगता है, मतलब समस्या टावर की। डॉक्टर साहब एक टावर की व्यवस्था करा दीजिए, थोड़ा सा गरीब इंसान है।
1: खासा आप ये बताइए आप कहाँ पर रहती हैं?
2: हम तो इमाम बाड़े में रहते हैं।
1: तो इमाम बाड़े में जो आपका छत है, आप छत पर जाकर मोबाइल मिलाया कीजिए, और जब आप मोबाइल मिलाइए तो ये ध्यान रखिए कि स्पीकर नीचे हो।
2: ठीक है।
1: हाँ, मतलब जब आप स्पीकर नीचे रखता है तो आवाज बहुत अच्छी आती है। आप जो है वो फोन कान में लगाती है ना?
2: अगली बार ट्राई करेंगे।
1: हाँ, फोन को कान में नहीं लगाना है, फोन को नाक में लगाना है।
0: हाँ,
1: नाक में लगाइए।
0: बिना सोचे समझे अब शाम को मेरे पास रोज कॉल आना चाहिए।
1: हाँ, मोबाइल को एक बार सूंघिए, इसके बाद कॉल मिलाइए, तुरंत मिल जाएगी।
2: अब हम रोज मिलाएंगे।

0: आपके पास
1: हाँ, जोर मिलेगा इनके पास। हाँ, इनको थोड़ा परेशान कीजिए।
0: हाँ
2: नहीं, मैं परेशान नहीं होती अपने लिसनर्स से, नेवर नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं।
1: नेवर नॉट एट ऑल
2: जी,
0: आप मुझे परेशान हो जाती हैं।
2: अरे मैं कभी भी
1: कभी
2: नहीं,
1: नहीं परेशान से
2: मैं किसी लिसनर के कॉल से कभी परेशान तो नहीं होती, लेकिन हाँ मुझे ये बात दुख दर्द दे देती है कि मेरे लिसनर मुझे कॉल कभी कभी नहीं करते।
1: हाँ।
2: जैसे कि आप
0: अब हम करेंगे, रोज कॉल करेंगे।
2: ठीक है, तो इंतजार बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच सबा, और यहाँ से भी मोहब्बत बरकरार है आपके लिए। थैंक यू। तो भाई यहाँ की समस्या का तो समाधान मिल गया, लेकिन सिंह राशि का क्या किया जाए? हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनकी राशि सिंह है, जैसे कि महेंद्र जी जो कि राजस्थान से सुन रहे हैं, इनकी राशि सिंह है। तो इनकी शादी कब होगी समस्या ये है, और उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? देखिए महेंद्र जी, शादी के लिए जल्दी आइए मत, आजकल जरा मामला नाजुक चल रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि आपकी शादी किस प्रकार के लड़की से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर लव जी बताइए, इनकी राशि सिंह है।
1: इनकी राशि सिंह है।
2: सिंह माने लियो,
1: सिंह मतलब शेर होता है।
2: हाँ,
1: और अगर आपकी राशि
2: सिंह को लियो क्यों कहा गया अंग्रेजी में? सिंह तो सिंह है, मतलब कुछ
1: लायन से लियो ले लिया, लैटिन भाषा का सब शब्द है ऑक्सफोर्ड न्यूज़।
2: क्या हमारे इंडिया में लैटिन वैटिन नहीं चलता है सब?
1: तब आप लिए तो आप फिर राश
2: गंदी बातें मत करिए,
1: राश कीजिए, साइंस जोड़े,
2: लैटिन लैटिन पता नहीं क्या बता रहे हैं हम इंडियन भाषा में।
1: इंडियन भाषा में आप
2: ठीक है, लियो लियो नहीं लियो
1: भाई, सिंह राशि है।
2: लियो मतलब क्या?
1: तो आपकी राशि सिंह है, तो इसका मतलब आपको जीवन साथी वृषभ मिलने वाला है। क्योंकि शेर और बैल आपस में कितने अच्छे मित्र होते हैं ये आपको पता ही होगा।
2: हाँ, बिल्कुल
1: है कि नहीं? तब हमने देखा कि एक जो है वो चौराहे पर नादा रखा हुआ था, उसमें शेर और बैल दोनों एक साथ पानी पी रहे थे।
2: बड़ी अच्छी दोस्ती है।
1: तो आपके लिए जो है वो वृषभ राशि वाली जो कन्या है, मतलब जो वृष राशि की लड़की होगी, वो आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन वृषभ राशि वालों की एक समस्या ये है कि ये रोज पानी पूरी खाना पसंद करते हैं।
2: तो देख लीजिए महेंद्र जी, आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपकी वाली को पानी पूरी ज्यादा पसंद होगी। दूसरी बात
1: ये रहेगी कि वो ये चाहेंगी कि हर पांचवें दिन उनको एक नई साड़ी दी जाए, कपड़ों के शौकीन होंगे ऐसे लोग।
2: हाँ, और ये थोड़ा सा परफेक्ट चाहते हैं हर चीज को। परफेक्ट मतलब कि वो यहाँ तक कि आप अगर उनके साथ चल रहे हैं तो आपकी जूता चप्पल से लेके आपकी कोम्ब भी अपनी साड़ी के कलर का पहन के चलेंगे। उन्हें सिमेट्री बनाने का बड़ा शौक है। हाँ, थोड़ा खर्चा इसमें आपका हो सकता है, और हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान हो जाए, लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो है परेशान कर सकती है, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेगी।
1: हाँ,
2: आपको धोखा नहीं देगी। तो धोखा देने वाली लड़की से बचना है तो थोड़ा बहुत खर्चा
1: करना है।
2: क्या बात है। तो बहुत अच्छी लड़की के बारे में आपने बता दिया है। तो महेंद्र जी, आपकी वाली आपको मिल जाएगी। कह रहे हैं कौशल्या किस राशि में आती है? ओहो,
1: अच्छा, मतलब इन्होंने नाम ढूंढ रखा है।
2: अरे क्या पता, ना ही ढूंढा, क वाले किस राशि में जाएंगे?
1: अब आप, चिट्ठी आपके पास है।
2: चिट्ठी मेरे पास क्यों है, आप बताइए क वाले किस राशि में जाएंगे?
1: आपको क्लिनिक का सारा सामान इक्विपमेंट दे रखा है, तो
2: फिर क्या
1: ये प्रश्न हमसे क्यों? मतलब इतना सिखाया आपको,
2: क्या सिखाया
1: राशियों के बारे में?
2: आपने कुछ नहीं सिखाया, ना आपने कुछ बताया।
1: अरे वाह, मतलब आप तो पब्लिकली हमारी जो है वो बेइज्जती कर देंगी। सोचिए कि कौशल्या नाम ठीक रहेगा, कौशल्या नाम ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कौशल्या ठीक थी तो फिर उनमें एक बात नहीं, तो कई कई गड़बड़ काई हो गई, दोनों सुखा से थी।
2: हाँ, ये बात तो सही है।
1: हाँ,
2: राशि दोनों की मिथुन थी।
1: हाँ, अच्छा,
2: लेकिन आपको मिथुन राशि वाली से आपकी शादी तो नहीं होनी, आपकी शादी तो होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और गुरु जी के हिसाब से कैसे ये हो गया? तो एक बार फिर से सर्वे करिए, ऐसा ना हो कि रॉन्ग नंबर पे आप बात किए जा रहे हैं।
1: हाँ, मतलब कौशल्या।
2: गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं? धर्मेंद्र जी, शुभ संध्या, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। प्यार की बातें चल रही है, तमन्ना आरजू, तमन्ना और आरजू दो नाम एक साथ जोड़ के बनाया गया है। क्या गजब,
1: क्या गजब है। कायनात में ऐसा नाम आपने पहली बार देखा होगा।
2: पूरी कायनात ढूंढ लो लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नाम। क्या बात है, गजब। कमल नयन, जिनके नयन हो कमल के समान, ये नाम बड़ा प्यारा है। मुश्तफा सऊदी से हमें सुन रहे हैं। कैसे हैं मुश्तफा जी? आपके साथ क्या दिक्कत, परेशानी, समस्या, कष्ट, मुसीबत, जो भी दर्द है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और कमल जी लिखते हैं, डॉक्टर लव, हमारा राशि मिथुन है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या सोल्यूशन है?
1: समस्याएं बताइए तो सोल्यूशन बताइए।
2: इनकी शादी हो चुकी है, पहली बात तो ये जान लीजिए।
1: तो ठीक है, शादी के बाद तो समस्याएं रहती हैं।
2: इनकी राशि, आप अपनी राशि बताइए। अच्छा, इन्हीं का राशि मिथुन है।
1: हाँ, तो सिंह राशि के होंगे।
2: आपकी शादी किससे हुई है ये तो बताइए।
1: तो आपने नहीं, नहीं, अब तो शादी हो चुकी है, अब राज से पूछने से क्या मतलब, लेकिन
2: अरे मतलब हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं।
1: हाँ, मतलब थोड़ा सा आप कुछ तरीका बजा सकते हैं, कुछ तंत्र मंत्र उपाय कि आप ये कीजिए। तो समस्याएं बताइए आप कमल नयन जी की, क्या समस्या आ रही है? समाधान एकदम साक्षात आपके सामने बैठा है।
2: आपकी वाली जो है मोबाइल को लेकर बड़ी पर्टिकुलर होगी, मतलब एक बार घर में राशन खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है मिथुन जातकों की जो पत्नियाँ या पति होते हैं वो थोड़ा सा मोबाइल को लेकर पर्टिकुलर होते हैं।
1: अच्छा,
2: ऐसा मतलब हमारे शास्त्रों में और किताबों में लिखा है। वही मैं बता रही हूँ, पता नहीं कैसे शास्त्रों ने कैसे लिख दिया, तब तो मोबाइल हुआ भी नहीं करता था,
1: हुआ भी नहीं करता था,
2: पर उन लोगों ने लिख डाला है, तो लिखने वालों ने लिख डाले
1: जो भी लिख डाले, मिलन के साथ बिछुड़े।
2: हाँ, और मैम मेरी सगाई हो चुकी है, कौशल्या नाम से शादी करनी है। नाम से शादी मत करिए, लड़की से शादी करिए। शादी लड़की से हो और लड़की अच्छी हो ये ज़रूरी है, लड़की आपसे बेहद मोहब्बत करे ये ज़रूरी
1: है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो है कौशल्या से हो चुकी है तो कोई बात नहीं, जब तय हो चुका है मामला,
2: तय हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया, परफेक्ट होनी चाहिए ना, तो उसको परफेक्शन की तरफ ले जाइए। परफेक्शन इज अ ट्रेनिंग, परफेक्शन कोई ऐसा थोड़े ना कि जीन में हम लेके पैदा होते हैं। परफेक्शन का मतलब ये है कि हम उसको सिखा सकते हैं।
1: नहीं, और फिर उनका नाम कौशल्या होगा, लेकिन आप उनको किसी दूसरे नाम से पुकारिएगा। हाँ, मतलब ये जरूरी थोड़ा है कि हम उनको उन्हीं के नाम से पुकारें। अक्सर लोग नाम
2: बदल देते हैं। इनकी अर्धांगिनी की राशि कुंभ है,
1: कुंभ है तो बहुत बढ़िया है। कुंभ वाले भी बड़े गहरे होते हैं।
2: लेकिन एक बात जानिए, कुंभ वाले एकदम आइडिया होते हैं। आइडिया माने गूगल। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज अवेलेबल विद कुंभ।
1: हाँ, कुंभ,
2: कुंभ वालों के पास हर समस्या का समाधान अवेलेबल होता है।
1: होता है, लेकिन
2: आप बड़े बड़े समस्याओं में अगर फंसे हो, दूसरी वाली का मिथुन है, दो शादी किए हैं,
1: ठीक है। नहीं तो मतलब
2: कमल नयन जी, आपने हमको ये बात बताई नहीं है, गलत बात है। दो शादी किए हैं, लेकिन कुंभ वाली जो आपकी गूगल है छोटा मोटा, अगर आपके मोबाइल में नेट खत्म हो जाए, आपको कुछ सर्च करना हो तो आप सवाल कीजिए, वो उत्तर दे देगी। मतलब शी विल बी द गूगल ऑफ योर हाउस, शी हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर।
1: हाँ, लेकिन एक कुंभ राशि वालों की एक दिक्कत है कि ये 12 वर्ष के बाद उनकी याददाश्त वापस आती है, अगर एक बार चली गई तो।
2: अरे तो जाने ही क्यों दें, पकड़ के रखें,
1: पकड़ के रखें, याददाश्त पकड़ के रखिए, नहीं तो 12 साल बाद ही मिलेगी आपको।
2: बात तो सही है।
1: कुंभ के बाद महाकुंभ हो जाएगा। समस्याएं सबकी।
2: देखिए सबलू जी लिख रहे, प्यार में तेला बेला नहीं डॉक्टर लव, प्यार दिल से होना चाहिए, विश्वास इंजेक्शन आती है। डॉक्टर अलबेला जी, हाँ बिल्कुल, विश्वास का इंजेक्शन अवेलेबल है। हाँ, और अगर आपको लगवाना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, बस आइए तो।
1: हाँ, क्लिनिक पर आइए,
2: सुनिए तो। हाँ, इंजेक्शन के लिए भाई हम ऑनलाइन इंजेक्शन नहीं लगा पाते।
1: हाँ, लगा सकते तो हम बिल्कुल लगा देते।
2: हाँ, कमल जी ने कहा बताए तो थे। हाँ कमल जी, हमें याद आ गया, धीरे धीरे याद आया, आपने बहुत दिन पहले बताया था, थोड़ा सा मेरे मेमोरी शॉर्ट लॉस हो गई है, थोड़ा सा मतलब
1: याददाश्त,
2: मतलब अभी जल्दी थोड़े दिन पहले ही, मतलब मैं खाना बनाते बनाते बनाते बनाते घर की चिमनी से टकरा गई, और उसी के बाद मेरी याददाश्त कुछ समय के लिए खो गई। और उसमें से डॉक्टर ने कहा कि कुछ कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप भूल जाएंगी। तो कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे मुझे मेरे से जुड़ी मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो मुझे याद रहती, मुझे क्या चाहिए, लेकिन दूसरों की ज़रूरत की चीज़ें मैं भूल जाती,
1: मैं भूल लेती हूँ। क्या बात है।
2: हाँ, ये
1: चाय पीना इनको याद रहता है, लेकिन दूसरे को पिलाना ही ये भूल जाते हैं।
2: अरे मुस्तफ़ा जी, आपकी बातों को हम समझ, हमने कब कहा कि आप 12 शादी नहीं, आप 15 कर लीजिए, आप 16-17 कर लीजिए। डॉक्टर लव ने 30 शादी की, 12 मत बताइए। मिथुन वाली बराबर लड़ती है, कुंभ वाली हमसे नहीं टकराती, क्योंकि वो गूगल है, वो जानती है कि आज लड़ूंगी कल मतलब दिक्कत हो जाएगी।
1: हाँ।
2: आपको मैंने क्या बताया, कुंभ वाली इज परफेक्ट फॉर यू, बट मिथुन वाली इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर यू। वो जो है आपको कंप्लीट करती है मिथुन वाली। तो मिथुन वाली को लेके भी आप पर्टिकुलर रहिए, वो थोड़ा सा मतलब अपनी अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेती है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करती है, वो थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है। उसका अगर मतलब कोई भी सामान टाइम पे उसे ना मिले तो थोड़ा नाराज हो जाया करती होगी।
1: आप हर बृहस्पतिवार उसको पीले रंग की लिपस्टिक भेंट किया कीजिए।
2: हाँ, बृहस्पतिवार को पीले रंग की लिपस्टिक उसको दीजिए, बढ़िया कंपनी की, थोड़ी महंगी वाली दीजिए,
1: लैक्मे वगैरह की।
2: क्यों आप लैक्मे का यहाँ पे
1: स्पॉन्सर्ड?
2: नहीं नहीं, आप किसी कंपनी की दीजिए, आपकी पसंद है, इसमें हमारी तरफ से कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप लैक्मे की दीजिए, चाहे आप परसोनी की दीजिए, चाहे आप मेबलिन की दीजिए, चाहे आप ब्लू हेवन की दीजिए,
1: लेकिन दीजिए,
2: पर आप दीजिए
1: पीले रंग की,
2: लेकिन लिपस्टिक का रंग पीला होना चाहिए। इससे आपके और उनके जो ग्रह है यानी कि गुरु, वो स्टेबल होंगे और आपके बीच में जो अन्न बन है वो सही हो जाएगी। गुड इवनिंग रूहानी जी। तो रूहानी जी आपसे आगे बात करते रहेंगे। अंकित यादव करनैलगंज से आपका भी स्वागत। इनकी राशि कन्या है, लव बताई, इनका लव बताई, लव का बताई, लव तो आप कई लिए हुई।
1: अच्छा, तो इनकी राशि जो है वो कन्या है।
2: कन्या वाले तो एकदम मतलब सीधे साधे भोले भाले लड़के होते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो जाती है, इनके साथ मतलब ये है कन्या राशि के लड़के जो हैं वो थोड़े से सीधे पड़ जाते हैं।
1: तो इनकी राशि जो है वो उनकी शादी तुला वालों के साथ कराते हैं। तुला मतलब तराजू, तराजू मतलब बैलेंस।
2: देखिए, आपको जैमिनी यानी कि मिथुन राशि की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी है इफ यू आर कन्या।
1: आप तुला राशि के साथ विवाह कीजिए जिसका नाम रा से शुरू होता हो।
2: हाँ,
1: रा वाली कोई है आपके पास?
2: रा वाली अब ये बताएंगे।
1: हाँ, अगर रा वाली है तो बताइए, ना हो तो हमारे पास 4 रा वाली हैं, किसी एक को आपको आप भेज देते हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, पत्नियों की कोई कमी नहीं है, हमारे रहते किसी भी पुरुष को पत्नी की कमी नहीं खलेगी, एकदम गारंटी है।
2: देखिए, अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी पत्नी जो होगी ना वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप की होगी।
1: पूछताछ बहुत करेगी।
2: मतलब पूछताछ आपसे बहुत करेगी। अगर आपको ऐसी कोई लड़की या गर्लफ्रेंड मिले जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वारी करती हो तो आप समझ लीजिए आपकी मंजिल आपके सामने ही खड़ी और आप देख नहीं पा रहे हैं।
1: बात सही है।
2: तो बिल्कुल थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेके पर्टिकुलर रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। और आपकी वाली जो मिलेगी तो आपसे बहुत सवाल जवाब करेगी। मतलब अगर आपने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी है तो वो सवाल करेगी और पूछेगी कि क्या तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं पता है।
1: या किसी के कहने पर पहन रहे हो?
2: किसी के कहने पर, मतलब हर चीज का सवाल आपके मतलब जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए। हमारे साथ जॉय उपवन जी हैं। जॉय उपवन, क्या बात है, मतलब ये अंग्रेजी और हिंदी नाम का क्या मतलब?
1: ये बहुत अच्छा, वाह, उपवन और जॉय दोनों एक साथ है।
2: उपवन में जाके जॉय करो।
1: नहीं नहीं, नाम बड़ा शानदार है,
2: उपवन एंड जॉय। तो जॉय जी को चाहिए तुला के बारे में जानकारी।
1: तुला के बारे में जानकारी, तुला वाले बड़े बैलेंस में होते हैं, जैसे तराजू का देखा है, एक दोनों पल्ले एकदम से बराबर होते हैं। हमको लगता है कि एकदम से बहुत संतुलित जीवन जीने वाले होते हैं।
2: देखिए, आप तुला राशि के हैं तो आप मेरे हिसाब से जो हैं कपड़े वगैरह ना दिन के हिसाब से पहना करें, क्योंकि गलत रंग के कपड़े पहनने से किसी गलत राशि की लड़की आपको मिल जाएगी और आप फंस जाएंगे। फर्स्ट मीन्स अगर मतलब आपको आपको प्यार थोड़ा जल्दी हो जाया करता है।
1: नहीं, आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये स्वयं विवाहित तो नहीं है पहले।
2: विवाहित है तो क्या इनको प्यार नहीं हो सकता? विवाहित लड़के भी दिन के अकॉर्डिंग किसी भी लड़की से मतलब उनका अट्रैक्शन हो जाता है।
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं है। तो जॉय जी के साथ, जॉय मतलब उपवन जी के साथ दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा अगर अपने डे के अकॉर्डिंग, जैसे कि सोमवार को वाइट कपड़े इन्होंने नहीं पहने, येलो कलर के कपड़े पहने, तो हो सकता है इनसे कोई ऐसी लड़की इनके पास आ जाए या मतलब इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर शादीशुदा है तो हम पिट भी सकते हैं घर पे।
1: अच्छा, ये बात।
2: तो थोड़ा सा कलर को लेके पर्टिकुलर रहिए आप, रंग राशि दिन के हिसाब से पहनिए।
1: तो बता दीजिए कि किस
2: तो विजय पाल जी करके बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करिए, एक साथ सबके बारे में बता दूंगी, बहुत सारे लोगों का मामला छूट छाट जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा परेशान मत होइए, मैं फिर से एक बार फिर से सारी राशियों को रिव्यू कराऊंगी डॉक्टर लव से। डॉक्टर लव आज सबके बारे में पूरा मतलब पोथा लेके आए हैं, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 6393 3464 29 क्यों नहीं डायल कर रहे हैं, आप ही से आप ही के बारे में बात होगी। तो चलिए हम लोग सुनते हैं थोड़ा बारिश स्पेशल गाना, क्योंकि बारिश हो और बारिश का गाना ना सुना जाए तो मुझे लगता है बारिश अधूरी रह जाती है
1: जी।
2: लेकिन एक कॉल आ गया तो कॉल पे बात करना भी ज़रूरी है। हेलो।
3: अरे तो पहले गाना सुना दीजिए, तब तक हम वेट कर लेंगे।
1: वेट जो है वो 72 किलो है, क्या कर लेंगे, हम यहीं से बता दे रहे हैं।
2: अब वेट बढ़ाएंगे बैठ के, वेट करेंगे। गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेट बढ़ाएंगे, वेट करने से वेट घट जाता है।
2: अच्छा ऐसी बात, अच्छा, है। तो जनहित में जारी, अगर किसी का भी वजन बढ़ गया है और आप 100 के पास पहुंच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करना शुरू कर दीजिए, चाहे रोड के किनारे, चाहे चौराहे पे, चाहे सर छत पे खड़े होकर चांद का ही वेट करें, लेकिन वेट जरूर करें, क्योंकि वेट करने से वेट घटता है, ऐसा हमारे लिसनर ने बताया।
1: हाँ।
2: जी आपका शुभ नाम। जी आपका शुभ नाम।
3: अरे हम तो आपके आशिक हैं पुराने।
2: अरे बाप रे क्या बात है। तो ये बताइए बादल गोयल जी, क्या हाल है?
3: पहचान दिया, देखिए हमने आशिक के नाम पर यानी पक्का मुहर लग गई।
2: कैसे हैं आप?
3: बस आपके आशीर्वाद है।
2: बिल्कुल जुग जुग जिए, और क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, जल्दी से बारात ले चलो।
3: तो वो तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको।
2: हम गाय ढूंढेंगे, आप लोग ढूंढे ढांडे रहते हैं, दिन दिन भर छत पे खड़े होके क्या धूप सेकते हैं? 43 डिग्री टेम्परेचर में एक दिन देखा छत पे खड़े हो के एंटीना पे, किससे बतिया रहे थे?
3: एंटीना का जमाना नहीं रह गया, पक्का आपने झूठ बोला।
2: एंटीना मतलब, एंटीना का मतलब क्या होता है?
3: अब एंटीना का मतलब अर्जेंटाइना नहीं हो जाएगा।
2: एंटीना का मतलब क्या होता है बताइए?
3: एंटीना का मतलब होता है जो नेटवर्क के लिए एंटीना यूज किया जाता है।
2: छत पे एंटीना की तरह खड़े हो के 43 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं आप?
3: हम तो इतने डिग्री में क्या करने, ऊपर जाएंगे हमारे क्या वहाँ कोई
2: छत पे? भाई एक बार बादल गोयल जी की कहानी सुनिए, मैं ऐसे जा रही थी, वही सोनी गुमटी से होते हुए देखा भाई एक लड़का छत पे एकदम धूप पे खड़ा, मतलब मोबाइल देखे जा रहा है, फोन आए मैसेज का रिप्लाई हो, लेकिन लड़का घर से नीचे नहीं उतरा, चप्पल भी नहीं लड़का पहना हुआ था, जल्दी छत में किसका इंतजार कर रहा था?
3: तब आप गलत है, जैसी गलत है, इसका मतलब आपने हमको नहीं देखा।
2: तब किसको देखा?
3: अब आप पता नहीं कि सोनी गुंटी में किसको देखा, हम तो सोनी गुंटी पे रहते भी नहीं है।
2: नहीं वो सुहागपुर गुंटी।
3: हाँ तो वैसे बोलिए।
2: अरे तो मतलब दोनों ही आसपास ही पड़ जाती है ना?
3: नहीं बहुत दूर है।
2: अरे
3: वो पूरब दिशा में, हम उत्तर दिशा में, फर्क है।
2: अरे जो भी है, कोई भी गुमटी तो है, ये है ना, हम थोड़ा नाम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए समस्या बताइए, दिक्कत क्या है आपको, कौन सी राशि
3: आपकी तारीफ,
2: आप मुझे पता है कि ये पूछने के लिए कॉल किए हैं कि मेरी ये राशि है, मुझे कौन मिलेगा, क्या मैं जिससे बात करूँ वो मेरी वाली है?
3: राशि बताएंगे जब, नाम बता दिए तो राशि बताने की जरूरत क्या है?
2: बताइए, चलिए आपकी समस्या बताइए।
3: समस्या जो जनहित में, आपको पता ही है समस्या हमारी जारी है, तब क्या पूछ रही है?
2: क्या समस्या आपकी बताइए?
3: जिसका बता रही, इंतजार कर रहे थे छत पे 43 डिग्री में,
2: वो नहीं मिल रही आपको?
3: तब कहाँ मिली है?
2: अपनी राशि
3: मिली होती तो आपको बताना नहीं चलते।
2: अपना अपना वो बताइए, अपनी राशि बताइए।
3: ऊपर से दूसरी
2: कौन सी भाई,
1: मतलब वृष हो क्या?
2: चलिए वृष राशि
1: ऊपर से दूसरी यही होती है।
3: देखा मनु सर ने तुरंत कैच किया।
1: ये कौन मनु सर,
2: ये कौन है भाई,
1: मतलब कोई नया?
2: अरे इनके जो क्या कहते हैं, हमारे एक रात में एक आरजे आते हैं, तो उन्हीं की बात कर
3: वो रहे। रात में आरजे आते हैं, दिन में शनिवार को शाम को डॉक्टर लोग हो जाते हैं।
2: तो फिलहाल आपको मैं बताऊं, टेरस यानी कि आपकी राशि है वृषभ, तो आपके जीवन में आपकी प्रेमिका बन के आने वाली लड़की आपके पड़ोस में यानी कि घर के अगल बगल किसी रिश्तेदार की रिश्तेदार होने वाली है। नहीं, वृषभ राशि वालों के साथ अक्सर ये होता है कि उनकी शादी जो है उनके अगल बगल पड़ोसियों के यहाँ, मतलब कोई ऐसी रिश्तेदार होती, उन्हीं क्या हो जाती है? क्यों डॉक्टर, वैसा आपने बताया था आज
3: पड़ोस में तो हमारे रेलवे माल गोदाम है,
2: मतलब घर के बगल कुछ है नहीं,
3: कहाँ है कुछ,
2: मतलब मकान कुछ नहीं बना है।
1: कहना ये चाहती हैं कि सुभागपुर, जयनगरा, इन्हीं रेलवे कॉलोनी, इन्हीं सबके बीच कहीं वो है,
3: रानी बाजार।
1: हाँ बस,
3: रिश्तेदार के रिश्तेदार मतलब वही हो गया, जयनगरा हम रहते हैं, बगल में रिश्तेदार बड़गांव हो गया, उसके रिश्तेदार रानी बाजार हो गया।
1: अब आप जान लीजिए कि कस्तूरी कुंडल बसे मिक ढूंढे बनमाए, तो ऐसे ही आपके अगल ही बगल है, आप देख नहीं पा रहे, बस नजर नहीं पड़ रही है आपकी।
3: हो सकता है कि उसने वीना मैम को बताया हो, अब वीना मैम ही जाएंगे तो गठबंधन होगा।
2: नहीं, मेरे जाने से गठबंधन कैसे हो सकता, वो तो आपकी मम्मी जब जाएंगी आपको लेकर तब होगा।
3: अरे तो मम्मी जाएंगी, मम्मी को साथ में आप ले जाइएगा।
2: अच्छा चलिए तब ठीक है, आप रेडी हैं?
3: हम तो रेडी हैं।
1: अरे शेरवानी 3 साल से सिलवाए हैं आप, बता रहे रेडी हैं?
3: ना ही कपड़ा लिए रखे हैं साहब, अभी सिलवाई पे नहीं गई।
1: मतलब वही शेरवानी का कपड़ा आपने ले रखा है?
2: मोटा पतला कुछ हो जाए।
3: हाँ हो सकता है एक आध इंच लंबे हो जाए।
2: लेकिन हम आजकल इस चीज में विश्वास करते हैं कि अरेंज मैरिज वैरिज वाले लड़के बच जाते हैं। आप अपने कहीं देखिए,
3: मतलब आप हमको सिया गोयल और चेतन अग्रवाल का वो बता रहे हैं, चेतन अग्रवाल का
2: नहीं। हम देखिए दुनिया में चल रहा है, लड़के डर रहे हैं, आए दिन एक लिसनर कॉल करके कह रहा है घबरा रहा है, तो मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम समझ के सबको सलाह दी जाती है। डॉक्टर लव ने
3: भी आज
2: 5-6 मतलब क्या कहते हैं क्लिनिक पे लड़के इसी क्षेत्र में आए थे बात करने, अपनी शादी का कार्ड लेके लड़के लोग आए थे कि सर जी हमारी शादी तय हो गई, फलानी तारीख को शादी है हमको, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि हमारी वाली बोल रही, हमारी
3: वाली
2: हाँ तो वधु कह रही है कि हमको वहाँ जाना है घूमने, वहाँ जाना है घूमने, घूमने के नाम से बेचारे डर रहे हैं।
3: नहीं शादी का कार्ड तो छपा हुआ था मैम, लेकिन उसमें लड़की का जो वधु पक्ष था वो रिक्त स्थान था।
2: इसका आपकी शादी? हाँ उसके। आपकी शादी का?
3: हाँ और क्या।
2: अच्छा चलिए ठीक है, परेशान मत होइए, आपका रिक्त स्थान भरवाया जाएगा। डॉक्टर लव जल्दी ही आपके घर किसी लड़की का रिश्ता लेकर जाएंगे और सीधे मतलब टू द पॉइंट आपकी चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे।
3: यही सावन में वादों में?
2: अरे मतलब मंगनी तो करा देंगे ना।
3: अच्छा वही हम गए, अभी तो लगन भी नहीं चल रहा है।
2: अरे मंगनी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। अरे कोर्ट वोट के लिए कोई मतलब वो नहीं है, कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, बाद में फेरे वरे डालिएगा आराम से।
3: अरे तो आजकल शादी में लोग कोर्ट पहन के मैरिज करते हैं,
2: अरे
3: आप कहा कोई कुर्ता पजामा पहनता है।
2: मतलब थोड़ा स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं?
3: भाई हम गए हैं, लेकिन जिस जिस स्टेशन पर हम ट्यून कर रहे हैं,
2: लड़के शेरवानी पहन के शादी करते हैं, कोट पहन के कोई लड़का हमको शादी करते हुए नहीं जल्दी दिख रहा है। कैसी
3: तो
2: अजीब अजीब बात करे, 10 शादियां दिखा दूं, चाहे सेलिब्रिटी की दिखा दूं, चाहे रिक्शे वाले की दिखा दूं, हर इंसान आजकल शेरवानी पहन रहा है।
3: हमने तो लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं।
1: अब देखिए शेरवानी इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि लड़का उसी दिन तक खाली शेर रहता है,
2: उसके बाद गीदड़
3: उसके बाद वाणी,
1: और उसके पश्चात वो जान लीजिए चूहा बन जाता है।
3: नहीं उसके बाद वाणी पे जो है वो लग जाता है पूर्ण विराम,
1: फिर वाणी पर पूर्ण विराम लग जाता है, इसलिए उसका नाम शेरवानी है।
2: तो आप भी एक दिन के लिए शेर बन जाइएगा और पहन लीजिएगा।
1: नहीं वो आपके वो आपके शेर होने का आखिरी दिन होगा और उसके पश्चात आपकी वाणी पर विराम लगेगा।
3: तो अब आप लोग चाहेंगे तभी होगा।
2: तो बिल्कुल हम ऐसे ही चाहेंगे, और आप सोचिए बस आपका मतलब शादी फिक्स हो गई। डॉक्टर लव इसी संडे आपके घर रिश्ता लेके पहुंचने वाले हैं, और इसी के साथ
3: तो वो कलर वाला जो बता रहे थी, तो वो कलर के हिसाब से कपड़ा भी तो पहनना पड़ेगा, वो तो बता दीजिए साथ में।
2: कौन सा कलर?
3: अभी आप कुछ बता रही थी ना कि तुला राशि वाले ये कलर पहनते हैं, तो वृषभ राशि के लिए भी तो कुछ होगा।
2: तो तुला राशि वालों को दिन के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए।
1: हाँ, वैसे चाहे जो पहने।
2: ऋषभ वाले तो मतलब किसी भी रंग को मिक्स करके आप, मैं तो कहती हूँ मल्टी कलर पहनिए, हर रंग का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। हाँ। मल्टी कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिए।
3: तो हमारे पास सब कलर के कपड़े हैं।
2: हाँ तो कटवा के कतरन बची होगी, कतरन मिलवा के एक कपड़ा बनवा लीजिए, बस वही।
3: सब एक साथ पहन ले?
2: नहीं सब एक साथ पहनेंगे तो गड़बड़ा जाएगा।
3: अच्छा
2: तो चलिए आपके लिए बादल हैं, आप तो बारिश के लिए आप गाना सुना देते हैं, बहुत देर से आसमान में घूम घूम के परेशान किए जा रहे हैं। तो चलिए
3: वो गाना सुनाइए, एक रिक्वेस्ट और है आपसे।
2: जी बताएं।
3: कभी फुर्सत मिलेगी तो दादी माँ की रोटी या नानी माँ की रोटी आपने कहीं गाया था,
2: ये कौन सा?
3: वो हमको पूरा नहीं मिला।
2: अच्छा दादी माँ की रोटी। अच्छा
3: हाँ कुछ समथिंग था रोटी को लेकर, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा?
2: अभी तो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैंने कहा ना कि अभी जल्दी मेरे सर को मतलब सर को चोट लग गई थी, चिमनी लग गई थी, तो मेरी याददाश्त थोड़ी गायब है, तो वापस से मेरी मेमोरी वापस आने दीजिए, बस मैं फिर बताती हूँ आपको।
3: तभी हम विश्वास से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी नमो जल्दी आए और वो दादी माँ की रोटी वाला गीत आप सुनाइए।
2: अवश्य अवश्य, थैंक यू सो मच।
3: ओके थैंक यू।
2: तो चलिए अब हमारे बादल जी ने, मतलब देखिए बादल अपना मतलब मौसम के हिसाब से उनकी समस्या भी है,
1: इसमें तो
2: बादल चल रही है, ये भी सोच रहे हैं इनका भी कहीं लगन हो जाए, इनके भी शादी में कोई गाना बजा दे। तो चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से।

0: डॉक्टर लव,
1: नमस्ते मैम।
0: करिए, देखिए कॉल आ गया। हेलो, नमस्कार, आदाब।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसे हैं? हेलो, गुड इवनिंग।
1: जी मैम, बिल्कुल अच्छे हैं। जी मैम, बिल्कुल अच्छे
0: हैं। तो निशा से बात कर रहे हैं डॉक्टर लव आप। तो निशा, अगली आवाज़ डॉक्टर लव की, बताइए अपनी समस्या आप, क्या है डॉक्टर लव से?
2: जी निशा जी, गुड इवनिंग।
1: टेस्ट लगा रही थी, कॉल ही नहीं लग रहा था।
0: तो
1: कॉल ही नहीं लग रहा था।
0: समस्या क्या है? कॉल ना लगना,
2: फोन आपका नहीं लग रहा
1: है। कौन दिखता है मैम, समस्या यही है।
0: फोन नहीं लगता है
1: जी।
2: आप एक काम किया कीजिए, फोन लगाने से पहले फोन को पानी में डुबो लिया कीजिए।
1: क्या?
2: फोन को पानी में डुबो लीजिए और फिर मिलाइए।
1: पर खराब हो जाएगी।
2: अरे तुरंत लगेगा, तुरंत लगेगा। आप एक बार करके देखिए, पानी में फेंकिए टब में।
0: देखिए पौधों को देखिए, जब आप बारिश नहीं होती है तो पानी देते हैं तो उनमें जीवन आ जाता है। मोबाइल को पानी में भिगो के यूज करेंगे, उसमें नेटवर्क आ जाएगा।
2: नेटवर्क आ जाएगा
0: पहले,
2: पूरे वर्ल्ड
1: आ जाएगी।
0: और क्या, एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए।
1: ठीक है, इस्तेमाल करें पहले फिर विश्वास करें।
0: हाँ और क्या, फिर बताइए।
2: ये सिर्फ घड़ी डिटर्जेंट के लिए ही नहीं, फोन पर भी लागू होता
1: है। सर और ठीक है सर?
2: जी जी, और सब ठीक है। दुआएं आपकी।
0: निशा जी हमारी बहुत प्यारी लिसनर हैं और निशा जी की आवाज़ भी उतनी अच्छी है, और जब ये कॉल करती हैं इनका कॉल करने का अंदाज बड़ा अच्छा है।
2: अंदाज़े
0: बताइए
1: मैम, आपको तो रोज कॉल करते हैं, रोज आज लगे नहीं रहता, इतनी देर से करती थी, आज जाके लगा है।
0: आगे से निशा जी भिगो लिया करिएगा, और मैं सच्ची बता रही हूँ आप बहुत ही प्यारी हैं, और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर लव निशा जी से कोई नुस्खा लिया जाए जिससे बाकी भी लोग प्यारे हो जाएं।
2: हाँ बताइए, आप इतनी प्यारी कैसी हैं?
1: हेलो
2: जी,
1: जो आकांक्षा मैम है जो?
2: हाँ
1: आकांक्षा मैम, सिंपल मैम, नितिन मैम, सब हमको जानती हैं।
2: अच्छा, आपको
1: सब मुझसे बहुत अच्छी से बातें करती हैं सब।
2: हाँ।
1: मैम राजीव रीना भी अच्छी है।
2: मतलब वो हमको अमिताभ बच्चन मिले थे, वो बताए थे कि वो भी आपको जानते हैं
1: जी।
2: हाँ बहुत पहुँच।
1: और आदि भैया तो एकदम ब्यूटीफुल है।
2: हाँ ब्यूटीफुल है।
0: थैंक यू सो मच। तो निशा लाखों
1: में अच्छी, सब सिंपल है, सब मैम लाखों में अच्छी हैं।
0: हाँ। एक बात बताऊं निशा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई अच्छा नहीं होता, ये हमारे देखने का नजरिया होता है। अगर हम अच्छे नजरिए से किसी को देखेंगे, मतलब दिमाग में मेरे ये चले कि यार ये सामने वाला आदमी चोर लग रहा है यार, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे वो खराब लगेगा। लेकिन अगर मैंने ये सोचा नहीं यार सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये डिपेंड करता है सोचने वाले के इंसान के ऊपर और जो इंसान हमसे बात कर रहा है। तो निशा आप सच में बहुत स्वीट हैं, यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, आपके पास बहुत सच्चा दिल है, इस वजह से आपको हर इंसान अच्छा लगता है। और इसी तरह आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और अपने सच्चे दिल को अपने साथ रखें, ये आपकी पावर है। थैंक यू सो मच।
1: आप सब लोग अच्छी रहें, थैंक
0: यू सो मच। तो निशा की बात हम लोगों ने सुन ली, निशा ने अपनी समस्या बहुत जेन्युइन बताई, और ये हमारे साथ भी होता है। कई बार हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे होते हैं, कॉल लगता नहीं है, हम लोग रिबूट करते हैं फ़ोन को, फ्लाइट मोड पे डालते हैं लेकिन फ़ोन चलता नहीं है। लेकिन मेरे कहने से अगर आप पानी में फ़ोन को एक बार भिगो के यूज़ करेंगे, आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा काम करेगा। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपके घर में डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट वाले पानी में अगर आप भिगो के फ़ोन को यूज़ करेंगे, 99.9% आपका फोन तुरंत लग जाएगा,
2: तुरंत लग जाएगा।
0: चाहे आप एक बार भगवान को भी कॉल कर रहे होंगे ना, ट्रेन ट्रेन घंटे बजती सुनाई देगी।
2: जो बिना मैम ने टेक्स्ट मैसेज भगवान को किया था, वो पहले पानी में,
0: अरे भिगोया नहीं, रात भर मैंने सोख करके रखा कायदा, जैसे छोले भिगोते हैं ना सुबह बनाने के लिए रात में, वैसे ही मैंने मोबाइल को सोक किया ओवरनाइट, और अगले दिन टेक्स्ट मैसेज। क्या मैसेज गया? मतलब मैसेज गया नहीं कि तुरंत ग्रीन टिक, मतलब ब्लू टिक, मतलब लोगों के लिए होता है, लेकिन भगवान जब मैसेज देखते तो ग्रीन टिक होता है। तो ऐसे ग्रीन टिक तुरंत हो गया, मतलब टक से, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि मैंने भगवान को मैसेज कर दिया, आंखों में आंसू आ गए,
2: आंसू आ गए।
0: तो चलिए हम लोग भी सुनते हैं, अगर आपकी सुनेगा भगवान तो ये गाना भी आपको अच्छा ही लगेगा, और अगर आप भी चाहते हैं आपकी भी भगवान सुन ले, तो डेफिनेटली आप मोबाइल को सोक करिए और टेक्स्ट करिए।

0: हेलो
1: हाँ मनु सर नमस्कार
0: जी। मनु सर तो आपको कौन है भाई, हम जानते नहीं है। आई एम डॉक्टर लव और ये मनु सर
1: से डॉक्टर लव आपको प्यार भरा मुमताज अंसारी के तरफ से नमस्कार स्वीकार हो
0: जी। हम तो अपने ही बारे में कंफ्यूज हो गए, तो कहिए अच्छा कि आपने बता दिया। हाँ मतलब हमारी डिग्री सारी बेकार हो जाती।
1: अरे नहीं सर,
0: हाँ मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है वहाँ से
1: जी।
0: जी तो फिलहाल आपको कोई समस्या हो गई मुमताज जी?
1: जी समस्या हो गई तभी आप डॉक्टर लव को कॉल किया है मैंने।
0: जी बताइए क्या समस्या हो गई आपको?
1: सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
0: जी,
1: जिसको अधिक प्यार हो जाए उसको क्या करना चाहिए, मेरा सवाल है
0: जी। जिसको अधिक प्यार हो जाए
1: उसको क्या करना चाहिए?
0: जिसको अधिक प्यार हो जाए उसे 250 ग्राम लाल मिर्च,
1: 250 ग्राम लाल मिर्च और
0: 100 ग्राम लौंग,
1: 100 ग्राम लौंग,
0: 100 ग्राम जो काले काले छोटे छोटे होते हैं क्या कहते हैं उसको,
1: काली मिर्च,
0: काली मिर्च, इन तीनों को एक साथ भुकवा ले और भोजन के 15 मिनट पहले एक चम्मच फाक कर पानी पी लें।
1: जी सर
0: प्यार
1: ठीक है तो हम ट्राई करेंगे फिर।
0: आप प्यार धीरे धीरे अपने लेवल पर आ जाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज की बुरी होती है, तो मोहब्बत में भी अधिकता नहीं। जैसे बढ़े तैसे लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग तीनों का मिश्रण बताया, 250 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम तीनों को पीस कर रखे रहिए भोजन के 15 मिनट पहले पील,
1: एक
0: चम्मच खाने के बाद गुनगुना पानी पी लीजिए, प्यार का लेवल कम हो जाएगा।
1: ठीक, प्यार और वो सब कंट्रोल पे आ जाएगा,
0: कंट्रोल पे आ जाएगा।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बेहद खूबसूरत नुस्खा
0: दूसरे। हेलो
3: हेलो डॉक्टर साहब प्रणाम।
0: जी जी प्रणाम।
2: बहुत बहुत शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम विजय पाल यादव।
2: विजय जी आपकी मतलब जो आवाज में वो हंसी थी वो कहाँ चली गई, आपने किसी को दे दी?
3: हंसी अब चली गई, हंसी अब चली गई, वो इस समय हंसी बरसात में बह गई।
2: क्यों क्या हुआ, ऐसी कौन सी मतलब मुसीबत? ये झूठी हंसी मत हंसी, बताइए आपके साथ क्या हुआ, हमें बहुत दुख हुआ जान के।
3: अरे हंसी बरसात में बह गई दीदी जी, क्या बताए
0: मतलब कैसे बह गई?
3: पता नहीं इतनी तेज बारिश हुई, पता नहीं कहाँ चली गई हंसी।
0: अच्छा तो ये बताइए जब आप जब बारिश हो रही थी तो आपका मुंह किस दिशा की तरफ था?
3: अरे बारिश में था।
0: नहीं दिशा बताइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण?
3: पूरब में था, पूरब में।
0: पूरब में था यानी
3: हाँ।
0: पूरब से होते हुए हम आपकी हंसी को पकड़ लेकर आते हैं, ये बिहार साइड में चली गई है।
3: बिहार साइड,
0: बिहार में सिवान है, सिवान पर मुझे थोड़ा सा ध्यान लगाने दीजिए। जी जी जी जी सिवान से लगभग 2 किलोमीटर पहले आपकी हंसी आ गई है
3: और आ
0: है। हमने उसको मंत्र से बुला लिया है अपने पास और आप रहिएगा, हम आपको यही झाड़े दे रहे हैं, आपकी हंसी जो है वहाँ से यहाँ चल चुकी है, आपको झाड़ दे रहा कि जल्दी आ जाए। आप खड़े हैं कि बैठे हैं?
3: अब हम ना खड़े हैं ना बैठे हैं।
0: तो लेटे हैं?
3: लेटे हैं।
0: लेटे हैं तो आप बैठ जाइए, उकुदवा बैठ जाइए।
3: उकुदवा बैठ
0: जाए? हाँ उकुदवा जानते हैं?
3: हाँ
0: हाँ। तो उकुदवा बैठ
2: गए,
3: बैठ गए, बैठ गए,
0: बैठ गए। अब दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए।
3: कहाँ पे?
0: घुटने पर।
3: घुटने पर ठीक है, रख लिए,
0: रख लिए। अब जो है सर अपना ऊपर की ओर कीजिए।
3: अरे आप तो गिर पड़े।
0: नहीं नहीं सर ऊपर की ओर
3: गिर गए भाई डॉक्टर साहब, गिर पड़े भाई। अरे ये क्या बता दिया,
0: दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा कीजिए।
3: चलो कोशिश करते हैं।
0: फूंकना है ना आपको तो ऐसे फूंका जाता है।
3: नहीं रोक पाए भाई, नहीं रोक पाए, फिर गिर गए।
0: अच्छा तो तीसरी बार कीजिए।
3: अब की रुक गए, अब की रुक गए,
0: बस रुके रहेगा।
1: अरे अब तो ठंडक लगने लगी।
2: बस आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे।
0: अब आपकी हंसी आपके पास 2 मिनट के अंदर आने वाली है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: झाड़ दिया आपको कहिए हा हा हा हा।
1: अभी नहीं आई, नहीं तो कैसे कहें?
0: पहले हा हा कीजिए तभी आएगी। मैं लंकेश, मैं ब्रह्मा विष्णु मही महेश।
1: तो डॉक्टर बहुत बहुत कमाल की चीज है, हंसी तुरंत वापस आ गई भाई। हुआ
2: जी डॉक्टर, लव चीज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंसान है, डॉक्टर है।
0: अब चीज बताएगा नहीं तो लोग कहेंगे तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त।
2: डॉक्टर बताइए मतलब क्या बताएं।
1: अब तो हंसी और कचरा, दूसरी एक समस्या और हमारे बनने लगी नई। वो समस्या ये, जब हमें कोई गाली देता तो हमको सुनाई नहीं देता, और खाने के लिए अगर कोई बुलाए तो बहुत जल्दी सुनाई देता है।
0: ये
1: इसमें क्या कारण है?
0: इसमें हमने आपको जो झाला था इस पहले उसका ये
1: हाँ।
0: कि आपके कान में गंदी चीज कभी नहीं जा सकती, अच्छी चीज जाएगी।
2: तो मतलब
1: अच्छा, अच्छा, हाँ।
2: ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि देवतुल्य होते जा रहे
0: हैं। देवतुल्य एकदम, आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, अब आप महापुरुष हो चुके हैं।
2: क्या बात क्या बात क्या बात,
0: आप
1: डॉक्टर साहब के चेला है ना, इसीलिए।
0: और महापुरुष होने की खुशी में आप तत्काल हम QR भेज रहे हैं, 151 रुपए यहाँ पर भेज दीजिए, हम लोग प्रसाद चढ़ाकर मिठाई खा लेंगे।
1: ऑनलाइन भेज दें?
0: ऑनलाइन भेज दीजिए।
1: ठीक ठीक, ऑनलाइन भेज देंगे,
0: तुरंत भेजिए।
1: और हमने कहा कोई समस्या बन गई होगी?
0: नहीं नहीं कोई समस्या,
1: आपने समस्या नहीं बताई।
2: समस्या नहीं बनी है, देखिए बनती है तो सिर्फ गैस बनती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनती है।
0: और गैस बनती है तो तुरंत ही गैसो फास्ट लेकर पी लेते हैं।
1: अरे हम तो सोचते हैं
2: अजवाइन खाते हैं, अजवाइन देसी नुस्खा,
0: देसी नुस्खा पैसा बचाती है।
1: अरे वाह डॉक्टर साहब, भाई आपने हंसी लौटा दी, इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी समस्या बताई, थैंक यू सो मच। विजय जी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी हंसी कहीं गायब हो और बुलाते रहिए
0: डॉक्टर जी। एक मरीज को
2: देखें, चलिए कौन है।
0: हेलो,
2: मरीजों का ताता लगा हुआ है।
4: नमस्कार, शुभ संध्या दोनों आरजेस को।
2: शुभ संध्या सबलु सामंत जी, मुंबई से कैसे हैं? आपका स्वागत है। क्या समस्या आपके साथ?
4: बस फर्स्ट क्लास है, और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं?
2: बिल्कुल जिंदाबाद है।
4: जिंदाबाद रहना चाहिए, ताकि आपका जो रेडियो ज्ञान स्थली है काफी प्यार बरसता रहे इस माध्यम से।
2: बिल्कुल, बारिश के साथ साथ हम प्यार भी आपके पास भेज ही रहे हैं।
4: जी जी डॉक्टर साहब।
0: जी जी बताएं, आप
4: कैसे हैं? आप
0: एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एकदम।
4: आपसे काफी दिन के बाद आज हमें बात करने का मौका मिला है।
0: जी जी, मतलब आप समस्याओं से रहित हो गए होंगे, तो हमको याद नहीं किया होगा आपने, अब आपने याद किया, मतलब समस्या कुछ हो रही है।
4: तो मेरा समस्या यही है कि डॉक्टर सर आयु जो लंबी उम्र की उपाय बताए।
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लंबी उम्र कैसे हो। देखिए एक काम कीजिए, कभी भी मॉर्निंग वॉक मत कीजिएगा, दौड़िएगा नहीं, जिम मत जाइएगा, बाहर मत निकलिएगा, साइकिल मत चलाइएगा, कोई भी शरीर से श्रम लेने वाला काम मत कीजिएगा कभी।
4: ये तो सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन आपने तो वही चीज बता रहे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है।
0: आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, आप एक बात मानते होंगे कि ये लिखा है कि जितनी सांसें भगवान ने दी हैं उतनी आपको लेनी है, ये मानते हैं कि नहीं?
4: जी जी जी, ये तो मानते हैं।
0: मानते हैं
4: जी जी।
0: अब बताइए जब आप दौड़ेंगे तो सांस ज्यादा लेंगे कि नहीं?
4: जी जी।
0: एक्सरसाइज करेंगे तो
4: जब हम दौड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा ना?
0: नहीं, सांस आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी ना, जल्दी जल्दी सांस लेंगे दौड़ेंगे तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे।
4: एक मिनट, अगर जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज लोग को पर्व करती है, तो पर्व दिन भर करती है तो हमने उनसे पूछा कि आप किस आधार पर पर्व करती है, तो वो बोलती है कि हमने अपना पति की आयु लंबी की खातिर पर्व करते हैं और प्रसाद जो भी हो शाम का ग्रहण वो करती है। तो हमने पूछा कि आप पति को कितना मानते हैं, तो बोलती है कि हम बहुत दिलो जान से मानते हैं।
2: बिल्कुल सही बात
4: तो
2: है।
4: तो सुनिए सुनिए, दिलो जान से मानती है तो आप तो पति की खातिर दुनिया से लड़ सकती है। यहाँ तक तो सुनता है कि भगवान से भी एक नारी जो थी पति की प्राण लाने के लिए वो खुद लड़ पड़ी थी। जी जी
0: जी।
4: तो आजकल की जो आजकल के लड़की में क्या है कि पति को धोखा ही दे देते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विश्वास
4: पे अंधकार हो गया हुआ है।
0: नहीं, अभी आपने
4: तो पति का आयु कैसे बढ़ेगा दोनों में जब बेटर सॉल्व नहीं होगा।
0: अब हम पहले आपको जो बता रहे हैं,
2: देखिए ये बात तो बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, क्योंकि डॉक्टर लव ने इसीलिए 30 शादियां की हैं, क्योंकि 30 शादियों के बाद 30 पत्नियां अगर 30-30 व्रत रखेंगी तो सोचिए डॉक्टर लव की आयु कितनी हो जाएगी हर व्रत
4: के। पति को ड्राम तक पहुंचा दे रहे हैं ना, तो उसका आयु तो पत्नी कम कर दे रहे हैं।
2: ऐसी बात नहीं है, पति लोग भी पत्नियों को ड्राम में पहुंचा
0: देते हैं। ऐसा है बबलू जी, हम लोगों को इस प्रकार की नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक बातें मैं आपको बताऊं कि आप अपनी आयु कैसे बढ़ाएं। कोई भी शारीरिक
4: पहले के जमाने में सर की विश्वास पे दुनिया अहम था,
0: अभी
4: अब तो आजकल अपने आप पर विश्वास नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, आप वाली ठीक है, बाकी वाली चाहे जो आप वाली ठीक है हम जानते हैं। तो शारीरिक श्रम आपको नहीं करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है घोड़ा खड़ा रहता है 20 और दौड़ता है 20 साल जीता है। अजगर पड़ा रहता है घर, कोई काम नहीं करता, 1000 साल तक जीता है। तो घर पर पड़े रहिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। भगवान ने जितनी सांस ली है धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, आप ज़्यादा दिन तक जिएंगे। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हुई उनकी सांसें पूरी हो चुकी थीं, वो लोग जिम जाते थे, वर्कआउट करते थे, दौड़ते थे, सांस कम थी, चले गए। आप अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो शारीरिक श्रम बिल्कुल मत कीजिएगा, दौड़िएगा बिल्कुल नहीं, बैडमिंटन मत खेलिएगा, मॉर्निंग वॉक पर मत जाइएगा। ये सारी चीजें आपके जीवन को लंबी उम्र प्रदान करेंगी।
4: और
0: भगवान
4: ठीक है, आपकी बात में 100% सहमत हुए कि हाँ वही चीज बता रहे हैं जो हमारे सेहत से स्वास्थ्य के जगह हानिकारक में पहुंचा रहे हैं।
0: हाँ, और जब घर पे पहुंचिए तो मुंह लटका कर पहुंचिए, उदास होकर पहुंचिए, पत्नी समझ जाएगी कंट्रोल में है, कहीं गाना वाना गाकर या मुस्कुराते हुए पहुंचेंगे तो डाउट होगा। इसलिए जैसे घर पहुंचे तैसे मुंह बना लीजिए, लटका लीजिए, पत्नी समझ जाएगी आप कंट्रोल में।
4: तो मेरा एक मिनट, जब मेरा शादी का साल लग चुका है, साल से ऊपर है, शादी होने तक ऐसा जॉब है मेरा कि यहाँ से छुट्टी लेना मुश्किल पड़ जाता है, घर पर भी जाता है तो मुश्किल से 4-5 रोज रह पाते हैं।
0: नहीं तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप जो अपनी पत्नी को अपने साथ रखिए।
4: जी जी, वो तो है, समय देखा जाएगा तो साथ में अब रखने का प्रयास होगा।
0: बिल्कुल साथ में रखिए, अगर जिनकी शादी होती है पत्नी को साथ में नहीं रखते हैं वो अपने मन की बात भी रेडियो पर बोलते हैं। जी, उम्मीद है कि आप अपने मन की बात हमसे कहेंगे।
4: नहीं, कभी भी एक बात है, ज्ञान स्थली से आज से नहीं, हम लमसम 1.5 साल से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा अर्जे बिना से हमें संपर्क होती है, और जो भी दिल की बात वो चाहे कविता के माध्यम से हो या शायरी के माध्यम से हो, वो शायर ज्ञान स्थली से हम कहीं ना कहीं लगाव रखे हुए है, कहीं ना कहीं प्यार हमारा मिलता है ज्ञान स्थली से।
0: ये ज्ञान, ये प्यार आपके जीवन को बढ़ाएगा।
4: जी बिल्कुल,
0: बहुत
4: प्यार ही तो है कि इतना दूर रहकर भी हम ज्ञान स्थली से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल, हम भी आपसे जुड़े हुए हैं।
2: बहुत बहुत जी,
4: बिल्कुल नमस्कार।
0: जी
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए, हमारे मतलब विशाल, मतलब क्या कहते हैं, हमारे सबलू सावंत जी ने जो कॉल करके अपनी समस्या बताई वो बिल्कुल जेन्युइन है। हर इंसान चाहता है उसकी आयु लंबी हो, लेकिन अगर आयु लंबी नहीं होगी तो मतलब इंसान चिंता में आ जाएगा। फिलहाल आयु लंबी है कि नहीं, लेकिन फिलहाल एक गाना ऐसा सुन लीजिए जिसको सुनने के बाद आपको वाइब अच्छी आए। सो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग हमारी प्लेलिस्ट का, सैयारा, फिल्म का तुम हो तो बिल्कुल अगर आप हमारे साथ हैं तो उम्र हमेशा बढ़ती रहेगी, जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, अगर वो हमारे साथ है तो क्यों, उम्र तो बढ़ेगी,
0: बिल्कुल बढ़ेगी।
2: तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना।

0: पॉसिबल है कि एक दिल से दो लोग जिंदा रह सके?
1: जी हाँ, एक दिल से पूरी दुनिया जिंदा रह सकती है,
0: जैसे कि हमारे शहर की धड़कन 9.6 FM।
1: सोचिए पूरे विश्व को जिंदा रखती है।
0: और क्या, और एक इंसान नहीं, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ दिल से कनेक्ट हैं। गुड इवनिंग अनिल जी, लिखते हैं, जरा ठहरो, बारिश थम जाए तो फिर चले जाना, किसी का तुझको छू लेना मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: क्या बात है, बेहतरीन।
0: और रिमझिम बारिश में आपका भी स्वागत है, और गाना भी भाई बारिश वाला आपके लिए प्ले करके ही जाऊंगी। गुड इवनिंग इम्तियाज, कैसे हैं? उस्मान जी कैसे हैं? डॉक्टर साहब, इतना शादी किस लिए की है? बताया तो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, क्यों डॉक्टर साहब?
1: जी निसंदेह,
0: हाँ निसंदेह। और जैसा कि सभी के साथ बातें करते करते पता नहीं कब टाइम बीत गया, कर्क राशि के बारे में विजय जी ने अपने आप जान लिया, इनको तो समस्या हंसने की थी और इनकी हंसने की समस्या दूर हुई, और बाकी सब लोग की भी समस्याएं आज काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर हो चुकी हैं, और बाकियों की समस्या जिनकी भी नहीं दूर हुई है, तो प्लीज़ सैटरडे आना बाकी है अभी, और शनिवार आते ही रहेंगे, और हम मतलब शनिवार और एक दिन है जो कहते हैं कि मंडे, ये दो दिन अच्छे होते हैं।
1: अच्छा,
0: संडे खराब होता है। संडे को तो यही चिंता रहती है, अगले दिन जाना है स्कूल, अगले दिन या अगले दिन जाना है काम पे, अगले दिन जाना है नौकरी पे, ये सारे। सैटरडे को इस बात की खुशी होती है कि ओह फाइनली रिलैक्स। आप सोच रहे हो कि मंडे क्यों अच्छा है?
1: हाँ,
0: मंडे हमें ये उम्मीद देता है कि पूरे मतलब वीक हमें किस तरह इस हफ्ते पूरे झेलना है, इसलिए मंडे को हम लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और मंडे को हम लोगों ने अगर पूरी प्लानिंग बढ़िया कर ली तो पूरा हफ्ता ऐसे यूं उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसी के साथ हम ऐसे ही उड़ाते रहेंगे हर शाम को हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारा साथ आपका साथ है जन्म जन्म का,
1: जन्म जन्म का।
0: क्योंकि गाना तो आपने सुना ही होगा, कभी का अभिप्राय यही है कि जन्म जन्म का साथ है
1: तुम्हारा हमारा और हमारा आपका साथ। तो रेडियो गणेश 9.6 FM के साथ सात जन्मों
0: जब तक सूरज चांद रहेगा,
1: हाँ,
0: तब तक हमारा
1: नाम रहेगा,
0: साथ रहेगा। क्या अच्छा। मतलब डॉक्टर लव, आप मतलब कभी
1: आपका
0: कभी,
1: नाम भी नहीं रहेगा?
0: कभी के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं है क्या?
1: नहीं, मतलब हम सोचते थे कि बीना जी का नाम रहेगा, तुमने आपकी तारीफ
0: नहीं, मेरे नाम से मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। 89.6 FM को अपने अंदर जिंदा रखना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए अब इस मॉनसून वाले मौसम में मॉनसून वाले गाने सुन लेते हैं, और इस समय अब अलविदा कहने का भी समय हो चुका है। अब कुछ ही देर में मेरे लिसनर सुनेंगे अपनी आरजे सिंपल के साथ गीत उन्हीं के नाम से
1: जी।
0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन
1: 6 FM,
0: यह है गोंडा
1: शहर की धड़कन।
0: Stay tuned, और आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना एंड
1: डॉक्टर लव।
0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ पार्टनर
1: बनाते रहिए,
0: बरकरार रखिए।

श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। सो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार लुधियाना से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, मुस्तफा साउदी से, एडवोकेट सुनील मझारा, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सबलू सावंत मुंबई से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आई मीन हमारे जग्गू दादा, वेलकम इन योर शो। धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, बबीता गोंडा से, नवीन राजपूत जी एमपी से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, रूपाली एन दीपाली गोंडा से, राही नवाबों के शहर लखनऊ से, सुरेश कुमार जी चौक से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, और निशा पटेल नगर गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, खामोश लबों पर भी किसी नाम की दस्तक रहती है, दिल की गलियों में हसरतों की हसरत रहती है। खामोश लबों पर भी किसी नाम की दस्तक रहती है, दिल की गलियों में भी हसरतों की हसरत रहती है। आपकी फरमाइश हो तो उसे सिराखों पर बिठाए ये सिंपल, जो आप सुनाना चाहें वही गुनगुनाए ये आपकी आरजे सिंपल। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात। सो चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना तेरी माया का। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग हमारे प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर, जो कि है लुधियाना से। और मुझे ऐसा मालूम होता है, मुझे ऐसा लगता है इनकी फरमाइशों की फरमाइशी गीतों से कि ये बहुत ही ज्यादा डिवोशनल इंसान है, और इतना डिवोशनल होना भी चाहिए मन की शांति के लिए। आपका मन सच में बहुत शांत रहता होगा ना? सो चैट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

माया तेरी तू ही जाने। ये कृष्ण भजन हमने एंजॉय किया है प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर, और प्रमुख कुमार जी का कहना है कि मैम जी हम वाकई बहुत डिवोशनल इंसान हैं। सो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एवरीवन। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट। हाँ, आपका दिल कौन तोड़ रहा है, वो भी अंग्रेजी में। कोई अंग्रेजी मैडम है क्या? सो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं मोहब्बत मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तमन्ना आरज़ू। स्टे ट्यून्ड।

हमने ये अंग्रेजी मैडम और अंग्रेजी सर वाला गाना एंजॉय किया है हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो की है सावी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे रुक करेंगे काहे की इतनी जल्दी है। हाँ कभी कभी ना जल्दी जल्दी में सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। और आपकी आरजे सिंपल के साथ में तो हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई काम मैंने जल्दी में किया है उसका कबाड़ा मैंने ज़रूर किया है भले ही कितने ही दिल से क्यों ना किया हो लेकिन फिर भी कोई ना कमी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। क्यों सही कहा ना मैंने। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दीपक कुमार और महेंद्र राजस्थान से आपका भी स्वागत है। सो चलिए चलते हैं एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। फरमाइश तो सब एंजॉय करते हैं गाने तो हम सब अपने अपने में सुनते रहते हैं। जिसको संगीत पसंद है वो दिन भर में अपने संगीत को समय जरूर देता है चाहे ड्राइव करते वक्त चाहे चाय बनाते वक्त चाहे लैपटॉप में कुछ काम करते वक्त चाहे वर्कआउट करते वक्त चाहे अपनों के साथ टाइम पास करते वक्त बैकग्राउंड में ही म्यूजिक चलेगा लेकिन चल जाता है ना। चाहे अपनों को मनाने के लिए ही म्यूजिक चल जाता है लेकिन चल जाता है ना। सो फिर हमारी फरमाइशी की महफिल में सिर्फ म्यूजिक ही क्यों बजे। आपके जज्बात आज उमड़ उमड़ के निकल नहीं रहे। जब तक जज्बात नहीं आते तब तक मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि दाल तो बन गई लेकिन दाल में नमक तो डाला ही नहीं गया। गाजर का हलवा तो बन गया लेकिन हलवे में मीठेपन के लिए गुड़ चीनी शक्कर ये सब तो डाला ही नहीं गया है ना। सो अपने जज्बातों को भी निकालिए और एंजॉय करिए हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है एडवोकेट सुनील मझारा की और सुनील मझारा को सुनना है गाना बरसात के मौसम में। और शायद तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया है ना यही वाला गाना है लेकिन शायद। सो एंजॉय करते हैं ना जायज का सुपर डुपर हिट नगमा रूप कुमार राठौर और कुमार सानू का ये सुपर डुपर हिट गाना हमारे एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी एडवोकेट सुनील मझारा की तरफ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगले फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? अगर तैयार हैं तब भी, नहीं तैयार हैं तब भी, चलिए ना रुक कर ही लेते हैं अगली फरमाइश का। लेकिन उसके पहले इट्स कुमार का कहना है कि जो भी आप सबने गीत सुना है ना, उसमें प्रोटीन पाउडर पीने की बात कही गई है। किसी भी बात को, किसी भी शब्द को अन्यथा ना समझें, क्योंकि सोच सुधरेगा तभी तो देश सुधरेगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु जी को लखनऊ से सुनना है गाना एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एंजॉय करते हैं ये गाना लता जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जो मेरा दिल सारी बगिया खिली हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लता जी की आवाज में हमारे आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना मेरे प्राणों के श्री राम। सो एंजॉय करते हैं फिर से एक डिवोशनल सॉन्ग, एक भक्तिमय गाना, राम जी का भजन, हनुमान जी का भजन हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो कि हैं गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हो, जितने भी लोग यहाँ हो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस दुनियादारी का तो है ही। तो मैंने सुना है कि जिनके पास में जितना दुख होता है वो उतना ही बाहर से खुश नजर आते हैं, क्या ये सही होता है? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल अब एंजॉय कर लेते हैं ये गाना।

सो ये फरमाइश थी दोस्तों हमारे सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सो क्या चले हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ? अरे चलिए चलिए चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। चलेंगे चलेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे रुक करेंगे करेंगे आखिर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? अब आ गए हैं तो एंजॉय करके ही जाएंगे, थोड़ा सुकून लेके ही जाएंगे, थोड़ी खुशियां बटोर के ही जाएंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा हंस के तो जाएंगे। मैंने अभी इस फरमाइशी गीत के उस तरफ चलते हुए आप लोगों से कुछ पूछा था कि मैंने सुना है कि दुनिया में लोगों का कहना है कि दुनिया में जिनके पास दर्द बहुत ज्यादा होता है वो बाहर से खुश बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो हमारे एक लिस्नर हैं जिनका नाम है इट्स कुमार, वो है एमपी रीवा से। उनका कहना है कि अंदर से जो टूटने का दर्द जानता है वो नहीं चाहता कोई उस दर्द से गुजरे। इतना भयानक दर्द होता है, इतना भयानक दर्द होता है, अब जगाओ ना वो दर्द। एक वर्ष हो चुका है मैं अवसाद में रहा हूँ, एक वर्ष एक साल वो डिप्रेशन में रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। ओ वाओ, फाइनली ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है ही ना। बुरी नहीं, मतलब बुरी न्यूज़ ये नहीं होती कि उस बुरी न्यूज़ के बाद में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, है ना? तो ये अच्छी न्यूज़ है तो वो बुरी न्यूज़ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं याद दिलाऊं? ज़रूर याद आना चाहिए, वो रीज़न भी याद आना चाहिए जिस रीज़न की वजह से आप अवसाद में गए थे, जिस रीज़न की वजह से आप डिप्रेशन में गए थे, है ना? तो सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से। सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, और हम सब दीवाने होते हैं, हम सब मस्ताने होते हैं, बस उस दीवानियत को उस मस्तानेपन को ढूंढने वाला समझने वाला कोई चाहिए होता है। क्यों सही गाना। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सबलू सावंत की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। यू गाइस डोंट थिंक कि मुझे अब शायद थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए, चैट बॉक्स में जरूर बताना।

इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। अक्सर लड़कियां रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही बुलाती हैं, अक्सर लड़के ही ज्यादातर बुलाते हैं जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि पहले बुलाता है लेकिन बहन जाने का नहीं। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। एंड दोस्तों पहली फरमाइश अगली फरमाइश को हम इंजॉय करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी। सबको तो डाउट नहीं होगा, मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो बहुत पुराने लिसनर्स हैं, जब से मैंने ये रेडियो ज्वाइन किया है 89.6 FM की, जब से मैं आरजे बनी हूँ, जब से मैं इस होस्ट वाली कुर्सी पे बैठी हूँ, उसके पहले से भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी इतना प्यार देते हैं, आज भी उतना स्नेह देते हैं। तो वो तो मुझे जान गए होंगे, मेरी आदत को जान गए होंगे, और मैं जो बात बात पे टिप्पणियां किया करती हूँ ना दोस्तों, उससे भी अवगत होंगे। लेकिन कुछ लिसनर्स मेरे नए नए होंगे जिनको शायद शायद मेरी टिप्पणियों का मतलब शायद ना समझ में आए, या फिर शायद मैं अभी थोड़ी सी नई हूँ ना, आप भी है ना, तो जज्बात शायद आप मेरे ना समझ पाए। लेकिन हाँ, मैं डाउट ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई मेरी बात पे ऑफेंड मत होना भाई। मैं बस बिना सोचे समझे, बस जो समझ में आया उस टाइम का सिनेरियो बन गया, उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट करो, है ना। तो इसीलिए कुछ मेरे लिसनर्स होंगे जिनको कोई बातें मेरी लग जाती होंगी दिल पे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें तुरंत दिल पे लग जाती हैं। अगर चाय भी एक मिनट लेट मिले तो मुझे बात दिल पर लग जाती है। अगर मुझे गरम गरम रोटी खानी है, वो रोटी सेकने में भी समय लग रहा है, तो वहाँ भी मेरे दिल में बात लग जाती है। तो ऐसे होगा ना, तो इसलिए मैं डाउट क्लियर करना चाहती थी। फिलहाल इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की MP से, और हमारे जग्गू दादा को सुनना है मुमताज मूवी का गाना यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कमल नैन जी, आपका स्वागत है आपके अपने शो में, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, स्टे ट्यून्ड इन योर शो।

फिर कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। हमने एंजॉय किया है ये गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जो कि हैं एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। बढ़ते हैं क्या अगली फरमाइश की तरफ? बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन एक बात है जो जब से मैंने ये फरमाइशी की महफिल शुरू की है, फरमाइशी के गीतों को प्ले करना शुरू किया है, एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, रिपीट एंड रिपीट आ रही है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद आज आप सभी भूल गए थे कि आज है सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट में तो हमारी प्लेलिस्ट हमेशा होती है तगड़ी वाली। कुछ गाने रोमांटिक होते हैं, कुछ दर्द भरे होते हैं, लेकिन कुछ तो हाई बीट हाई एनर्जी वाले होते हैं और कुछ तो एकदम सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट से निकले होते हैं। लेकिन आज सब कहीं ना कहीं खोए हुए लग रहे हैं मुझे सबके गीतों से। सबके गीतों में कोई ना कोई अजीब सा एहसास लग रहा है, मिक्स वाली फीलिंग आ रही। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप सभी उदास हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं, या फिर बस ऐसे मूड ऐसा है किसी को याद करें, या फिर मौसम के हिसाब से बस गाना सुनना चाहते हैं। आखिर लोचा क्या है मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये सारी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। एक लिसनर, दो लिसनर, तीन लिसनर, अरे भाई सबके सबके गानों को अगर देख लिया जाए तो सबका मूड कहीं ना कहीं खोया खोया लग रहा है। ऐसे नहीं खोते हैं, खुश रहते हैं, है ना? वैसे खुश तो सब रहते हैं, as usual always, you know guys, I love you guys love me, so enjoy करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, so enjoy करेंगे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों हमारे पास में जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। एंजॉय करेंगे अनिल वर्मा जी की फरमाइश सैदापुर से। और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना सावन का महीना पवन करे शोर और दिलवा रे झूमे इसे जैसे बनवा नाचे मोर। हाँ वैसे मेरा भी दिल छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी खुशियों पे ऐसे झूमने लगता है जैसे सच में बनवा नाचने लगता है मोर। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लता जी की और मुकेश जी की आवाज में अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ऐसे सावन लग गया क्या दोस्तों? अगर नहीं तो कब से स्टार्ट है? जल्दी से अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाइए खटखटा खटखट और तुरंत से चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आहा
1: सावन का महीना
0: आई लव सावन आई लव भोले बाबा।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जियरा दिल झूमे इसे जैसे बनवाना चिनोर। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सावन की प्लेलिस्ट का सुपर डुपर डुपर डुपर हिट वाला नगमा। जानते हैं किसकी फरमाइश पर? अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है सैदापुर से। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सावन महीना मुझे बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे बहुत गर्मी है मुझे कोई मतलब नहीं है, बहुत ठंडी है मुझे कोई मतलब नहीं है, बहुत बरसात है मुझे कोई मतलब नहीं है, पतझड़ भी बहुत हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, धूप भी बहुत है मुझे कोई मतलब नहीं है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों अगर सावन है तो मुझे बहुत मतलब है। सावन कब शुरू हो रहा है कब खत्म होगा, पूरा का पूरा सावन का पूरा महीना पता नहीं क्यों मेरे लिए पूरा सेलिब्रेशन जैसा होता है। हर एक दिन ऐसा लगता है खुशियां लेके आई हैं, क्यों डोंट नो, पता नहीं क्यों कनेक्शन है डोंट नो। इतनी मैं डिवोशनल भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी क्या है डोंट नो, लेकिन आई लव सावन। वैसे दोस्तों सावन अभी शुरू नहीं हुआ है, इट्स कुमार का कहना है कि उन अकॉर्डिंग टू उनकी मम्मी 30 जुलाई से सावन शुरू होगा। और मैंने भी गूगल किया तो गूगल के अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होगा सावन और 28 अगस्त को शुक्रवार।

को समापन हो जाएगा हमारे सावन का। तो इस सावन में आप लोग से भी कहना चाहूंगी कि खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में बबीता की गोंडा की से। बबीता को गोंडा से सुनना है गाना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा क्या। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। मिलते हैं सीधे 9 बजे। पेट पूजा जरूर करके आइएगा, जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है महफिल में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बौछार करेंगे, है ना। गम तो हर दूसरा इंसान देता है और गुस्सा तो हर पहला इंसान होता है, क्यों सही कहा मैंने।

0: नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 9 3 6 2 8 1 7 9 3 0 8 4 9 1 5 5 2 3 7 1 4 और 8 4 3 3 4 5 2 0 4 1 4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, और ये आपका शो है फरमाइशी, जहां गीत बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। सो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जज्बात संभालने में वक्त लगता है, जज्बात संभालने में वक्त लगता है, ख्यालात संभालने में वक्त लगता है। यूं ही नहीं हो जाती मोहब्बत अनायास, किसी को अपनाने में बड़ा वक्त लगता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कहानी नहीं होती, दिल का दर्द छुपाने में वक्त लगता है। यकीन यूं ही किसी पर ठहरता नहीं, दिल का दर खुलवाने में वक्त लगता है। रिश्ते लफ्जों से नहीं एहसासों से बनते हैं, हर एहसास निभाने में वक्त लगता है। जो उम्र भर का हमसफर बन जाता है, उसे रूह में बसाने में वक्त लगता है। मोहब्बत कोई मौसम नहीं जो बदल जाए, मोहब्बत कोई मौसम नहीं जो बदल जाए, इसे मुकम्मल बनाने में वक्त लगता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अभी हमने एंजॉय किया था बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, वो फरमाइश थी हमारे ग्रीट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी की, जो कि है मध्य प्रदेश से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना जिसके सपने हमें रोज आते रहे। सो एंजॉय करते हैं लता जी की और महेंद्र कपूर की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर, जो कि है बहराइच से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट फरमाइशी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा।

0: में हमें रोज आते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना छिछोरे यार। सो एंजॉय करते हैं ये तड़कता भड़कता सा है जी हाई बीट वाला नगमा एमपी रीवा से इट्स कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, नाउ बी हैप्पी।
1: अरे हो।

मुझे पता है कि इस गाने को इट्स कुमार ने अपने फरमाइशी की गीत में क्यों ऐड किया है, क्योंकि इन्होंने इस गाने को बहुत पहले ही फरमाइशी की महफिल में ऐड कर दिया था। क्यों, सही कहा ना मैंने दोस्तों? इट्स कुमार की फरमाइश थी एमपी रीवा से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन ये स्पेशल फरमाइश के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इस गाने को शायद इट्स कुमार के गांव के पास में एमपी रीवा में ही इस गाने की शूटिंग हुई है। और जब इस गाने की शूटिंग हुई थी, ये गाना रिलीज हुआ था, तो सबसे पहले इट्स कुमार ने इस गाने की फरमाइश की थी हमारे फरमाइशी प्रोग्राम में, मुझे आज भी याद है। और आज इस गाने को याद सुनने के बाद में मुझे तुरंत याद आ गया कि इट्स कुमार ने इस गाने की फरमाइश इसीलिए की है क्योंकि ये अपने होम टाउन से इस गाने को कनेक्ट कर पाते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना जा जा के कहां मिन्नते फरियाद करोगे, जा मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में निशा की फरमाइश पर ये वाला गाना एंजॉय करते हैं। और निशा है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दिया क्या, अब खाओ कसम इसको ना बर्बाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। हमने एंजॉय किया है ये नगमा दोस्तों निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राही की। नवाबों के शहर लखनऊ से राही को सुनना है गाना जो बीच

मैं खिड़की खोल दूंगी। सो एंजॉय करते हैं सपना अवस्थी का ये गाना राही की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। दो चार ठुमके तो लगाना बनता है। आज नागेश्वर धाकड़ को मैं मिस कर रही हूँ, आई मीन उनके लाल घाघरे को ज्यादा मिस कर।

के होठो पे राजा, कसम से घोल दूंगी अब जब रात में कोई ना जागे, ये सैया मैं खिड़की खोल दूंगी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा गाना दोस्तों, जानते हैं किसकी फरमाइश पर? राही की फरमाइश पर, जो कि है नवाबों के शहर लखनऊ से। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की गोंडा से, उनको सुनना है गाना उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना। सो इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मैदान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो कि होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुनीता जी की गोड़वा घाट गोंडा से। सुनीता जी को गोड़वा घाट गोंडा से सुनना है गाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, इसी के साथ देना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करना है, बहुत सारा मिस करना है, क्योंकि कल है संडे। संडे मीन्स पंडे, पंडे मीन्स हॉलीडे। मैं कल नहीं आऊंगी, कल ढेर सारा मिस करना। फिर से मिलते हैं मंडे को। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। सो आज सैटरडे को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी को एक सिंपल सा जीवन का मंत्र देके जाना चाहती है। मंत्र बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये मंत्र क्यों दे रही हूँ इसका रीजन भी बताऊंगी। जरा सोचिए कि क्या हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं दे रहे हैं? अगर किसी की एक लाइन हमें परेशान कर देती है, किसी का एक गुस्सा हमारा एक टाइम का खाना ले लेता है, हमारी मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है, हमारी पीस को की धज्जियां उड़ा देता है, हमारे मेंटल पीस की इतनी सस्ती कीमत लगाई जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में? सो एक सिंपल सा पंडा है, ये कहना चाहूंगी कि रिएक्ट करना छोड़ो और रिस्पॉन्स देना सीखो। हर बात को दिल पर नहीं सिर्फ कानों के थ्रू सुनो और उसको एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो और जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी की राय से ज्यादा कीमती है। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। बाय बाय, मिलते हैं फिर मंडे को। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रैंडस्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी हाँ, और आज शनिवार है भाई, तो शनिवार सैटरडे स्पेशल, गजलें हमारी, गीत आपके, इस प्यारे से सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो आज गजलें हम आपको सुनाएंगे और गीत आप हमें सुनाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई, पहले हम आपको एक प्यारी सी गजल सुनाएं और इसके बाद आपका गीत सुने। जी हाँ, हमारे साथ नीना जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार सर। जी हाँ, आदाब करते हैं आपको भी, और आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना है भाई, आप सभी श्रोताओं से मिलने की इच्छा भी है, और ये जो तमन्ना है ये कभी कभी मचलती है, और ये कब मचलती है इसका एहसास आपको एक गजल के माध्यम से कराते हैं। जी हाँ, तो अब आप रहिएगा तैयार, क्योंकि इस गजल के बाद हम आपसे गीत सुनने वाले हैं।

0: तो जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इस प्यारी सी गज़ल के बाद ये हमारी गज़ल होगी और इसके पश्चात आएंगे हम गीत पर। तो गीत के लिए हो जाइए तैयार, नाम मैंने बता दिया है, अब बारी है आपकी इस प्यारी सी गज़ल के बाद। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: पापा के बर्थडे

जी हाँ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये प्यारी सी गज़ल हमने आपको सुनाई भाई, और अब गीत की बारी आपकी है। हमेशा दर्द जुड़ चुके हैं अनिल शास्त्री जी, चौरस्पर्श शुभ संध्या आपको, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और साथ में हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी भी हैं, शुभ संध्या सर जी आपको भी चौरस्पर्श, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। और तमन्ना आज़ू, अजब प्रेम की गजब कहानी, आ जाओ मेरी तमन्ना, क्या बात है भाई। और राही नवाबों का शहर लखनऊ, क्या बात है भाई, ये मतलब कौन है भाई। और महेंद्र जी को भी हम देख पा रहे हैं भाई, जो हमको सुनते हैं राजस्थान से। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल है जी। तो गज़लें हमारी हो चुकी हैं और गीत आपके होने हैं, तो आज देखना है कि भाई एक गज़ल के बाद एक गीत होगा, और फिर देखते हैं कि वो गीत किसका होगा। जिसका भी होगा बहुत शानदार होगा, ऐसी हमको उम्मीद है और ऐसा विश्वास भी है, क्योंकि हमारे श्रोता भाई बहुत अच्छा गाते हैं। और

0: जी, और किसी का फोन आ भी चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ।
1: नमस्कार जी।
0: अरे नमस्कार दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है।
0: बहुनी अच्छी हो गई आज फिर?
1: कोई कौन से जिंदगी प्यार का गीत है?
0: कोई भी सुना दीजिए आप।
1: मैं अपने कोई सवाल तो नहीं किया था? अच्छा
0: किया था, लेकिन आप कोई भी सुना सकते हैं।
1: एक गीत है इसे मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में।
0: जी
1: हाँ, तो वही सुना रहे हैं
0: जी। सुनाइए, क्या बात है? पिछली बार भी शुरुआत आपने की थी।
1: चमन चमन सुला बदन पहलू में आ जाओ, जान चमन सोला बदन पहलू में आ जाओ। तुम मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ, जान चमन सोला बदन पहलू में आ जाओ। मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी, मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी, थाम मुझे मैं गिरा मुझे मैं गिरा, लहराए दिल की लगी हाँ, जान दूला बचन पहलू में आ जाओ। तुम मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ, बादल से बरसे नशा भीगी हुई है प्रिया, बादल से बरसे नशा भीगी है प्रिया, बहू में आके मेरे मेरे होश मुझे ना रहा, हाय जान चमन सोला बदन पहलू में आ जाओ। तुम मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। धन्यवाद।
0: क्या बात है, आज तो मौसम को देखते हुए आपने गीत गाया है। हेलो।
1: हाँ,
0: हमने कहा आज मौसम को देखते हुए आपने गीत गाया है। क्या गीत गाया? हाँ, मतलब मौसम है आशिकाना ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मतलब एकदम दर्द कुमार जी आज एकदम रोमांटिक कुमार जी बन गए।
1: हाँ, वो अक्ल में आपने जो वो पूछ गया था जिंदगी प्यार का गीत, तो मैं उसे जवाब देना था।
0: हाँ, तो आप
1: तो हमने कहा कि तो हमने कहा लाओ रोमांटिक ही सुना दें या कहो तो वो भी सुना दें।
0: हाँ, सुना दीजिए।
1: जिंदगी प्यार का गीत है।
0: हाँ, वो तुम्हारा प्रश्न नहीं है।
1: जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी बेवफा है तो प्यार अपने रूठे हैं हमसे तो क्या।

0: हाथ में हाथ ना हो तो प्यार साथ फिर भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। धन्यवाद।
1: क्या बात है भाई, वाह। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। किशोर कुमार की आवाज को भी आपने बखूबी निभाया। आपने किशोर वाला ही गाया है। ये हमने कहा कि आपने किशोर को बहुत अच्छा निभाया। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: और ये सविता शास्त्री ने भाई आपको कहा है, बहुत अच्छा। सुरेश जी, मुस्तफ़ा जी ने भाई बहुत सारे फूल भेज दिए हैं, गुलाब भेज दिए हैं हमारे सुरेश जी के लिए। और राही, नवाबों का शहर लखनऊ, क्या बात है भाई, नवाबों का शहर तो लखनऊ ही है। और चलिए चलते हैं फिर से एक प्यारी सी गज़ल की तरफ, और गज़ल के बाद फिर। और बहुत ज़बरदस्त सर, इन्होंने दो गाने गाए हैं, इनके पसंद का एक गज़ल तो होना ही चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कोई और जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
0: नमस्कार।
1: अरे दादा चौड़ स्पर्श,
0: अरे खुश रहिए, बहुत बहुत तरक्की कीजिए।
1: जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे दर्द कुमार रोमांटिक कुमार हो चुके हैं, तो क्या रोमांटिक कुमार कहीं दर्द कुमार होने वाले हैं?
0: नहीं, चलिए मैं दर्द वाली गाना नहीं सुनाऊंगा।
1: जी
0: मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गा दूं।
1: जी बिल्कुल,
0: किशोर सॉरी शशि कपूर जी का और गाना है बड़ा प्यारा, लिखे जो खत लिखे।
1: हाँ, वो तेरी याद में।
0: जी हाँ जी,
1: क्या बात।
0: मैं तो लिखता नहीं हूँ।
1: जी
0: मैं तो लिखने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं सोचता हूँ आने वाले लोग, आपने आने वाले लोगों को मिल जाए।
1: नहीं मतलब मौका मिला होगा, लेकिन अब आप आने और कहे कैसे कि मौका नहीं मिला।
0: अब ये घरवा मरवा हो गया।
1: जी दादा।
0: मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कोशिश करता हूँ, अगर सही रहा तो चलिए अच्छी बात है। गाओ।
1: जी जी निसंदेह।
0: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे

तम जा शर्माई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए तो मेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो तुझे।

ये शर्माना ये तन्हाई ये तरस

0: लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो थैंक यू सर, थोड़ी आवाज मेरी फट रही थी।
1: क्या बात है, मतलब इतनी रूहानियत के साथ गाया है कि लगता है कि वो मंजर आपकी आंखों के सामने था। लिखे जो
0: नहीं, लेकिन नहीं नहीं, मेरी थोड़ी आवाज थोड़ा गला बैठा हुआ था, थोड़ा फट रहा
1: है, लेकिन आपने ज्यादा गाया बहुत शानदार
0: भैया। ये आपके आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा बोला, लेकिन आपको लगा कि कहीं बहुत कुछ कमियां थी।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: नहीं आवाज कुछ हमारी फट रही।
1: मतलब वो बारिश का सीजन है तो लगता है कहीं भीगे हैं थोड़ा बहुत आप।
0: नहीं भीगे तो आज हम हैं।
1: हाँ, तो हमने कहा था कि जो है वो गोरखपुर में बारिश हो जाएगी।
0: अरे आज बहुत बढ़िया बारिश हुई भाई, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: बोलने का।
1: हाँ, मतलब ये हमने वादा किया और वादा पूरा किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है दादा, चल स्पर्श।
0: अरे खुश रहिए, कैसे जाए
1: जी भाई। तो ये हमारे
0: सोच रहा हूँ ना
1: जी।
0: हेलो सर, अगर एक इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा एक आध मुखड़ा सुना दूं आपको
1: जी।
0: वो शम्मी कपूर जी का गाना है ये। शायद मैं सुना चुका हूँ क्या
1: जी दादा?
0: तुम बिन जाऊं कहां, सुना चुका हूँ क्या आपको?
1: हाँ, तुम बिन जाऊं कहां दुनिया में आके।
0: नहीं तो फिर एक गाना था उन्हीं का है, शम्मी कपूर जी ने गाया है
1: जी।
0: वो गाना मैं शब्द थोड़ी भूल जाता हूँ,
1: तो लिरिक्स निकाल लीजिए दादा।
0: वही वही निकाल रहा था कि आई थिंक आ भी गया है
1: जी।
0: अगर हमें मौका देंगे तो
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: देखें कि शायद इस समय गला काम करेगा कि नहीं करेगा
1: जी।
0: हाँ, किस रंग बदलती दुनिया।
1: हाँ, हाँ।
0: ये शम्मी कपूर जी ने कहा
1: जी।
0: किस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकलो न करो तुम सज धज कर इंसान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकलो न करो तुम सज धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में ये दिल है बड़ा ही दीवाना छे

0: करो इस पागल को, तुम से शरारत कर बैठे नादान की नीयत, ठीक नहीं तू रंग बदलती दुनिया में।
1: सॉरी एक्चुअली गला काम नहीं कर रहा था।
2: नहीं नहीं दादा कोई बात नहीं, लेकिन जितना गाया उतना बहुत शानदार गाया।
1: नहीं मेरे को कमी लगी तो इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ। ओके सर थैंक यू।
2: ठीक है दादा चलो स्पर्श
1: खुश रहिए।
2: जी हाँ तो ये हमारे साथ हमारे दादा श्री अनिल शास्त्री जो आई है। अब आपको सुनाते हैं भाई गीत हो चुका है, अब आपको एक प्यारी सी गजल सुनाते हैं और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणथली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

सोचने की बात है कि पता है कि उजड़ जाएंगे लेकिन फिर भी इश्क में पड़ जाते हैं। जब इश्क की बात चलती है कभी तो मुझे एक छोटा सा छोटी सी लघु कथा याद आती है कि आप सभी ने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है, शमा जलती है, तो उसके आसपास बहुत सारे परवाने आकर रहते हैं। कुछ देर के लिए आते हैं, छटपटाते हैं, उड़ते हैं और उसके पश्चात उसी में जलकर राख हो जाते हैं। किसी ने एक बार परवाने से पूछ लिया कि तुम्हें पता है कि अगर वहां जाओगे तो जल जाओगे, तो फिर क्यों जाते हो? पता है ना कि जल जाओगे। परवाने ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम जाते हैं और एक ही झटके में जल जाते हैं, लेकिन शमा पल पल जलती है। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। तो हमारा तड़पना उसके तड़पने से कम है। उसको तो तिल तिल करके जलना है, हमको तो एक झटके में। अब सोचिए, एक झटके में किसी इंसान की जान चली जाए और उसे तिल तिल करके मारा जाए तो ज्यादा तकलीफ किसको होगी? उसे जिसे आप तिल तिल करके मरते हुए देख रहे हैं। अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का, और वो नजरिया ही हमें वहां तक पहुंचा पाता है। तो एक गीत भी है, शमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जी हाँ, तो शमा के मना करने के बावजूद भी पतंगा नहीं मानता। ये इश्क है, इसे प्रेम कहते हैं। कभी आसमान वाले ने चाहा तो सोमवार को हम प्रेम पर ही आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही प्यारे हमारे श्रोता श्री निरंकार मिश्रा जी, जो प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के। और बहुत अच्छा लगा सर आपका आना यहाँ पर, आपको भी प्रणाम और शुभ संध्या। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई क्या बात है, आज शायद हमारे राजा, अच्छा अच्छा जी भैया ठीक है भाई, अब ये तो भाई ये व्यक्तिगत बात है। प्रोल मिश्रा जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या प्रोल जी आपको। और हम भी सुने जा रहे हैं, अरे साहब गुड नाइट, कैसे गुड नाइट, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। गुड नाइट कहने का अधिकार इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ हमें है। जी वाह क्या गजल है, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। और नजरिया क्या बात है भाई, कायनात जिसे भी हम चाहेंगे कि भाई वो भी कभी कुछ सुनाए। अच्छा अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, मेरे जुकर का जुबा पे स्वाद रखना। जी धर्मेंद्र जी, मेरे प्यार की तमन्ना कभी जिंदगी के खातिर, ये कोई गजल हमको मिली नहीं इसलिए हम इसको नहीं प्ले कर पाए। आप जरा फिर से सर्च कर लीजिए, हो सकता है इसके कुछ शब्द गलत हों। और फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। जी क्या बात है, पता नहीं क्यों धीरे धीरे बरस रहा है, तेज बरसना चाहिए। वाह वाह प्रबल जी क्या बात कही आपने, लेकिन जो चीज धीमे धीमे होती है उसका असर बहुत देर तक रहता है। जी और इस पर भाई उत्तर मिल चुका, न नजर मिली न दीदार हुआ, बस दिल से दिल मिला और बेशुमार इश्क हुआ। क्या बात है भाई प्रबल जी, कहाँ इश्क कर बैठे आप, और शमा से रूठ कर परवाने कहाँ जाएंगे। वाह क्या बात है भाई, वाह वाह। अब लगा कि आप साहित्य के प्रोफेसर हैं, खाक हो जाएंगे दीवाने कहाँ जाएंगे, शमा से रूठ कर परवाने कहाँ जाएंगे। और
मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है, पता नहीं कहाँ तक सच है, कि अगर कोई आपसे खफा होता है, नाराज होता है, तो रिश्ते में थोड़ी सी मजबूती कम है। लेकिन अगर कोई नाराज सा होता है, खफा सा होता है, तो इसका मतलब रिश्ता बहुत मजबूत है। पंक्ति है कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है, खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। तो मतलब जो रिश्ते हैं ना, इनमें थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, थोड़ी बहुत झगड़े, कुछ मीठी नोक झोंक अगर है तो रिश्ते अच्छे होते हैं। और ये जिंदगी की खूबसूरती है कि आप उन रिश्तों को कैसे निभाते हैं। अब देखिए, जो आपका सबसे प्यारा रिश्ता होगा उसमें थोड़ी सी नोक झोंक होती होगी, लेकिन वो दिखावे के लिए होती होगी। तो हम नाराज नहीं हैं, नाराज से हैं, इसका मतलब रिश्ता बहुत खूबसूरत है। जी क्या बात है भाई निरंकार जी, आपने तो भाई श्री निरंकार जी आपने तबीयत प्रसन्न कर दी। और तेरी आँखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मुझे दुनिया में किसी और की चीज़ की तलब नहीं रही। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये बहुत शानदार। और इसलिए भाई कहना जी, धर्मेंद्र मोहन जी, मेरे प्यार की तमन्ना एक में ज़िंदगी के खातिर बड़ी तेज, वो मुझको लगता है महेंद्र कपूर साहब की गज़ल है, मेरे प्यार की तमन्ना गमे ज़िंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग। क्या गज़ल चुनी है आपने, बिल्कुल, और इसको हम भी सुनाना चाहते हैं। मैं जी हाँ, नेहा जी बहराइच से हैं, नमस्कार सर, गुड इवनिंग, आदाब करते हैं नेहा जी आपको। और बुधवार को आप गायब नहीं, तो कम से कम आज शनिवार है तो आपके सुरीले कंठ से कुछ सुन लें। शिल्पी जी हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं भाई, आज कहाँ हैं। और जी तो भाई बहराइच से अब हमको लगता है आवाज़ आएगी। और हर लड़की को देखकर नियत नहीं फिसलती, बस इसी बात का घमंड है। क्या बात है, क्या बात है प्रवल मिश्रा जी, मतलब त्रेता में जो है वो हनुमान जी हुए थे और कलयुग में आप हुए, और बहुत अच्छा लगा हमको, ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बहुत शानदार बात कही आपने। और ऐसे जोक्स अपार्ट, ऐसे लोगों के लिए, मतलब मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो किसी ने ऐसे मजाक में, होता नहीं दोस्तों में, कि नहीं नहीं नहीं नहीं अब सभी लोगों ने दिया है अगर कॉलेज की लाइफ को, तो सबको लगभग लगभग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो पूछा गया कि मतलब, हाँ कहा गया कि लगता है वो पसंद है, उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली मेरा ख्वाब क्या होगी, जिसने हजारों हंसी देखे हों उसकी नीयत खराब क्या होगी। तो साहब, जिंदगी में एक मुकाम पा लेने के बाद इंसान का मन इन चीजों से भर जाता है। डॉक्टर रजनीश, जिनको आप ओशो के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो उसे इस कदर कर लीजिए कि उससे आपका मन भर जाए। और ऐसा ही होता है मेरे साथ। आप देखिए, कभी कभी कुछ लोग जो बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एक दौर उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो बाजार की चीज़ की तरफ देखते नहीं है, कुछ नहीं खाना है, फल खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं खाएंगे। जो मुझे लगता है, इसका मतलब उन्होंने बहुत खाया हुआ होता है, तो जान चुके होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये भी है कि अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, दिल टूटने वाला अगर एहसास नहीं किया, तो शायद
जिंदगी का जो एक बेहतरीन पहलू था वो खो दिया।

और अगर आप रिश्ते बनाते हैं तो फिर बनाए रहिए किसी भी कीमत पर। दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, पहले दिल तोड़ा और फिर कहा जरा मुस्कुरा दीजिए। दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, मैं हंस पड़ा क्योंकि सवाल उसकी खुशी का था। मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने तो वो खोया जो सिर्फ उसी का था। तो अगर कोई आपका दिल तोड़े, कोई आपका अपना हो, तो उसने खोया है, तकलीफ उसे होनी चाहिए, हमें नहीं। हम तो सिर्फ आपके थे, आपने हमें खो दिया। और अगर जिंदगी में कहा भी जाता है कि अक्सर चीजों की कीमत उनके मिलने के पश्चात और इंसान की कीमत उससे बिछड़ने के पश्चात पता चल जाती है, यहां तक मुझे लगता है। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां पर यह कह दिया जाता है जिनके बारे में कि कहने को जिंदगी में कई लोग थे मगर, कहने को जिंदगी में कई लोग थे मगर वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा। जी हाँ, तो कुछ ऐसा, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लास्ट देन टू हैव नेवर लव्ड एट ऑल। क्या बात कही आपने, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत कीजिए और खो जाइए, इससे अच्छा नहीं। क्या बात है भाई, बहुत प्यारी बात कही आपने निरंकार जी। अब लगा भाई हम अंग्रेजी के प्रोफेसर से बातचीत कर रहे हैं। आपका संदेश, एक लाइन जो आपने लिखी वो वास्तव में हृदय को छू लेने वाली है। अब चलते हैं एक प्यारे से गजल की तरफ और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और फिर लौटेंगे आपसे, बात करेंगे इस संगीत में अंतराल के उस पार। और सुनते रहिए रेडियो घनस्लेट 9.6 FM, ये है गोड़ा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, 10:30 हो चुके हैं और शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल दोपहर को 1 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अनुमति, और अगर आप में से कोई आना चाहता है भाई लाइव, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आइए, आपका स्वागत है। 12:30 आप पहुँचिए और इसके पश्चात हम और आप एक दूसरे को अगर रूबरू देखें, बातचीत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप श्रोताओं में से कोई आना चाहते हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, अब अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा ही नहीं बल्कि कई शहरों के दिलों की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: जहां कई राज दफन पड़े हैं, वो राज जो किसी जिंदा लाश की तरह कब्र से बाहर आने को छटपटा रहे हैं। कई लोगों का यह मानना होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिल में कोई कसक लिए मर जाए तो वो पूरी तरह मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। भले उसका शरीर ये दुनिया छोड़ दे पर उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। हम अक्सर भटकती आत्माओं के किस्से सुनते हैं जो हमें दहला देते हैं, पर जरा सोचिए, अगर ऐसी ही किसी प्यासी भटकती आत्मा का सामना आपसे हो जाए तो। आज की कहानी हमें जिसने मेल की है, उसने विशेष तौर पर हमसे गोपनीयता बनाए रखने का निवेदन किया है, क्योंकि जो किस्सा जो इस व्यक्ति के साथ घटा वो इतना डरावना है कि इसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। इंसान, पता है धरती पर सभी जीवों में इंसान किस वजह से और जीवों से भिन्न है? अपनी जानने की इच्छा की वजह से। वो जानने की इच्छा ही तो है जिसने इतने आविष्कारों को जन्म दिया। पर इस जानने की इच्छा ने राजेश को एक ऐसे सच से रूबरू कराया जिसे जानने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। राजेश अक्सर सुना करता था कि सच कड़वा होता है, पर किसी ने राजेश को कभी ये नहीं बताया कि कोई सच इतना डरावना भी हो सकता है। और शायद इस हादसे के बाद राजेश किसी सच को जानने की हिम्मत ना करे।
2: मैं राजेश की बड़ी बहन हूं। मेरे भाई की सबसे बड़ी खूबी उसके सबसे खतरनाक अनुभव की वजह बनेगी, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी उखड़ती सांसें, उसका कपकपाता शरीर, उस दिन की याद आज भी जैसे आज भी मेरे मन को दहला देती है।
1: बॉम्बे के किसी छोटे से मोहल्ले में रह रहे राजेश के परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था राजेश। परिवार बड़ा होने की वजह से राजेश के मां बाप दोनों ही काम किया करते थे, जिसकी वजह से राजेश का ज्यादातर बचपन अपनी बड़ी बहन के साथ ही बीता। राजेश को बचपन से ही हर सवाल का जवाब तलाशने की लत थी। अगर किसी सवाल का भूत राजेश पर सवार हो जाए तो उसका जवाब न मिलने तक राजेश जैसे बेचैन ही रहता। राजेश की इसी आदत ने राजेश को उसके मोहल्ले और स्कूल में बहुत फेमस कर दिया था। राजेश के आसपास के लोगों, उसके टीचर्स को वैसे तो राजेश के सवालों के जवाब देने में काफी मजा आता था, पर कभी कभी राजेश के हर चीज को जानने की तीव्र इच्छा और उसके सवालों की लंबी लिस्ट लोगों और टीचर्स में चिढ़ पैदा कर देती थी। उसे कई बार इस वजह से लोगों से डांट भी खानी पड़ती। पर एक शख्स था जो हमेशा उसके सवालों का जवाब बिना उससे चिढ़े और गुस्सा किए दिया करता था, और वो थी उसकी बड़ी बहन दिया।
2: मेरे भाई को तो जैसे सवाल पूछने की बीमारी थी। कभी कभी तो वो सच में इतने सवाल पूछता था कि हम सब चिड़चिड़ा जाते थे। पर मैं कभी राजेश के ऊपर चिल्लाती नहीं थी, चाहे किताब से चाहे इंटरनेट से ढूंढकर कैसे भी करके उसके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करती थी। कोशिश करती थी कि उसके हर सवाल का जवाब उसे मिले, सिवाय एक के।
1: वैसे तो राजेश को अपनी बड़ी बहन से उसके हर सवाल का जवाब मिल जाया करता था, पर एक सवाल था जिसका जवाब मिलना तो दूर, अगर राजेश वो सवाल करता तो उसे बदले में जोर की डांट मिलती। पर ये डांट राजेश को सवाल से दूर नहीं बल्कि और करीब ले आती। क्या था वो सवाल जिसका जिक्र होते ही राजेश की दीदी जवाब देने की जगह इस सवाल को फिर कभी ना दोहराने की हिदायत देती और उसका खुद का दिल भीतर तक दहल उठता। राजेश जिस घर में रहता था उसके ठीक सामने एक खंडर जैसा टूटा फूटा मकान था। उसे देखकर लगता था मानो वहां सदियों से कोई ना आया हो, और ये सच भी था। सालों से उस मकान में किसी के रहने क्या कदम रखने तक की हिम्मत भी ना होती थी। घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जहां पत्ते कुछ यूं बिखरे रहते थे मानो किसी कब्रिस्तान में।

तरफ देखना तक लोगों के दिल में खौफ भर देता था। सोचिए इस घर का ये हाल दिन में कुछ ऐसा था तो रात में क्या होता होगा। रात में तो ये घर मानो जैसे खौफ का रूप इख्तियार कर लेता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वहां मौत पसरी हुई हो।

पर ऐसा नहीं था कि उस मकान में आज तक कोई गया नहीं हो, पर यह जरूर था कि जो भी गया

0: एक बार की बात है, कुछ लोग इस मकान के बाहर लगे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे।
1: ये हट, ये 10 की,
2: ये 4 के पत्ते हैं। ए साला हार गया तो चिढ़ने का काय को? चल चल, तेरे को एक मौका और देता हूँ, तेरे सारे पैसे वापस करूंगा। वो जो घर देख रहा है ना, बस वहां एक घंटा बिता के आ, फिर ये सारे पैसे तेरे। बोल, तू सच कह रहा है?
1: ए भाई, क्या कर रहा है? तू जानता है ना, उस घर में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। भाई भाई मत जा। ओए ठहर जा। ओ भाई।
0: पर वो नहीं माना और उस घर में चला गया। रात के सन्नाटे में उस घर के दरवाजे की आवाज किसी मौत के आगमन का एहसास करा रही थी। पत्तों की सरसराहट। उस आदमी ने डरते हुए दरवाजा खोला और उस घर में कदम बढ़ाया। कुछ समय तक उसके दोस्तों को अंदर से कोई आवाज सुनाई ना दी। सुनाई दे रहा था तो बस सन्नाटा। उसके दोस्त डरते हुए उसका बाहर इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक

उस खौफनाक रात के बाद तो जैसे इस घर का खौफ और भी बढ़ गया। वहां के आसपास रह रहे सभी लोगों ने अपने बच्चों को खास तौर पर इस मकान के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये घर राजेश के घर के बिल्कुल सामने था, जहां बाकी सभी बच्चे इस घर की तरफ देखने से भी खौफ खाते थे। राजेश अपनी जिज्ञासा के वश में रहते घंटों उस घर को देखता रहता। यह जिज्ञासा समय बढ़ते कम होने की जगह और बढ़ती चली गई। राजेश जब 12 साल का हुआ, तब तक राजेश की दोनों बहनें भी बाहर काम करने लगी थीं। अब राजेश जब स्कूल से लौटता तो उसके घर में कोई ना होता। राजेश और उसके दोस्त दोपहर में उस घर के बाहर बने मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। राजेश कई बार अपने दोस्तों से उस घर के अंदर चलने

0: और उसके दोस्तों के दिल में उस घर का डर बुरी तरह घर कर चुका था। उस घर के अंदर जाना तो दूर, उस घर की तरफ देखते हुए भी वो डर जाते थे।
1: हमारे लिए वो घर सिर्फ घर नहीं था, दहशत का दूसरा नाम था। उस घर का ख्याल दिमाग में आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, पर राजेश हमेशा उस घर की ओर आकर्षित रहता और हमेशा अंदर चलने को कहता, पर हम हमेशा मना कर देते और उसे भी रोक देते। पर उस शाम तो
0: राजेश को कहीं से पता चला कि उस घर में कई साल पहले किसी ने पैसों के लालच में उस घर के मालिक को वहीं मारकर दफन कर दिया था और उसकी आत्मा आज भी उस घर पर कब्जा जमाए बैठी है। उसे इस बात की कसक रह गई थी कि उसके कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। शायद यही वजह थी कि उसकी आत्मा आज भी प्यासी है, जो अपने कातिलों के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती है। ये सुनकर तो राजेश की जिज्ञासा उस घर के प्रति और बढ़ गई। उस रात राजेश अचानक अपनी नींद से जागा। उसने सपने में वही घर देखा और सपने में उसने उस घर में जो देखा वो देखकर वो बुरी तरह कांप उठा। अब राजेश एक पल भी रुक नहीं सकता था। उसने अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया, जिसे सुनकर उसके दोस्त भी बुरी तरह डर गए। राजेश ने उसी रात उस घर में जाकर उस सच्चाई का पता लगाने की ठानी, जिसे सुनकर उसके दोस्तों ने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। पर वो इस बात पर राजी हो गए कि वो बाहर तक जरूर उसके साथ आ सकते हैं। शाम लगभग ढल चुकी थी। राजेश और उसके दोस्त उस घर के पास पहुंचे, जो किसी कब्रिस्तान का दूसरा रूप लग रहा था। राजेश के दोस्त हो बाहर ही रुक गए, पर राजेश अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाए बिना रुकने वाला नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर हॉल में गया। हॉल बुरी तरह मकड़ी के जालों और धूल से भरा हुआ था। एक हल्की सी रोशनी थी जो किसी छोटे से चिराग की थी। इस सुनसान घर में चिराग किसने जलाया होगा? राजेश ये सोच ही रहा था कि अचानक राजेश को लगा कि पहली मंजिल से होकर कोई ऊपर बने कमरे में दाखिल हुआ। वो इतनी तेज था कि राजेश उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। अब राजेश ने डरते हुए सीढ़ियों पर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे ऊपर गया। राजेश कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजा धकेलने वाला ही था कि वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पुराने फर्नीचर के अलावा फिर हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो कहां से आ रही थी? ये राजेश को समझ पाना मुश्किल था। राजेश दूसरे कमरे में जाने के लिए पलटा, पर दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। और अचानक ही उस कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ही जल उठी। अब राजेश बुरी तरह डर रहा था। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा बुरी तरह बंद था। वो दरवाजा पीट पीट के चिल्लाने लगा,
2: प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, अरे दरवाजा खोलो कोई, अरे कोई दरवाजा खोलो, कोई तो मुझे बाहर निकालो यहां से, कोई है, अरे कोई तो दरवाजा खोल दो।
0: पर वहां कौन था जो उसकी पुकार सुनता, और जो था वो तो खुद राजेश से कुछ चाहता था। राजेश ने कमरे की ओर नजर घुमाई और आखिर में राजेश की निगाह उस कमरे की खिड़की के कांच पर जाकर टिक गई। राजेश ने देखा उस कांच पर खून से कुछ लिखा हुआ है। जब राजेश उस कांच के पास गया तो वहां लिखा था, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, ऊपर वाले कमरे में जाओ। ये पढ़कर राजेश की डर की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा कि जो दरवाजा कुछ देर पहले बुरी तरह बंद था अपने आप ही खुल गया। राजेश दौड़कर नीचे की ओर भागा, पर एक आवाज ने उसके कदमों को वहीं जमा दिया।
3: प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो।
0: पता नहीं क्यों पर राजेश वापस लौटा और ऊपर वाले कमरे की ओर गया जो पूरी तरह खाली था। बस एक कांच था जो वहां लगा हुआ था। राजेश उस कांच की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि किस तरह कांच के अक्स पर नजर आ रहे उसके चेहरे पर डर का साया सवार था। तभी उसे कांच पर एक परछाई दिखी जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो पलटा पर वहां कोई ना था, लेकिन जैसे ही उसने फिर कांच की तरफ देखा तो उस पर भी खून से लिखा हुआ था। पलंग के नीचे देखो, राजेश ने डरते हुए पलंग के नीचे झांका तो उसने पाया कि वहां एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। राजेश ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा, जिसमें से तेज बदबू आ रही थी। राजेश के दिल में अब धड़कन नहीं, दहशत धड़क रही थी। उसने कपकपाते हाथों से उस संदूक को खोला और जो नजारा उसने देखा उसे देखकर राजेश संदूक से काफी दूर हटकर गिर पड़ा। उस संदूक के अंदर किसी आदमी का सर पड़ा हुआ था जो अब कंकाल बन चुका था। राजेश इस हादसे से उबर भी नहीं पाया था कि उसे किसी के हाथ का स्पर्श अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने जब अपने पीछे पलट के देखा तो नजारा इतना भयंकर था कि उसकी जबान से चीख तक नहीं निकल सकी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।

0: राजेश को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। वो अब भी बुरी तरह कांप रहा था। उसकी दीदी ने उसे बताया कि उन लोगों ने राजेश को उस घर से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। वो बेहोशी की हालत में भी बुरी तरह कांप रहा था और उसकी भवें भी ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। दो दिन बाद सही से होश में वापस आने पर राजेश ने सभी को पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर पुलिस ने वहां जाकर सच्चाई का पता लगाया और उन्हें पता चला कि राजेश सही कह रहा था। ऊपर के कमरे से पुलिस ने वो संदूक बरामद किया जिसमें उन्हें एक आदमी का सर मिला। घर के गार्डन की खुदाई करने पर पुलिस ने बाकी कंकाल भी उस घर से बरामद किया। बाद में सच सामने आया कि ये लाश उस घर के मालिक की थी, जिसे 15 साल पहले किसी ने मारकर और उसके सर को काटकर लाश वहीं दफन कर दी थी। मारने वाले का भी पता पुलिस ने लगा लिया था कि वो 3 साल पहले खुद ही किसी भयंकर बीमारी की वजह से मर चुका था। उस लाश का क्रियाकर्म कर दिया गया। उसके बाद जैसे खुद ब खुद वहां से बुरी हवाएं गायब हो गईं। राजेश अब पूरी तरह इस खौफनाक हादसे से बाहर आ चुका था। एक रोज वो सुबह उठा और उसने उस घर की ओर नजर डाली। उसने देखा कि उस घर की खिड़की पर कुछ लिखा हुआ है। जब राजेश वो लिखा देखने के लिए खिड़की के करीब गया, वहां लिखा था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर इस बार खून से नहीं।
1: द हॉन्टेड प्लेस। वैसे तो डर और खौफ के कई पर्यायवाची हैं, पर उनमें से सबसे ऊपर है भानगढ़। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में बना भानगढ़ किला उन कुछ ऐसी जगहों में से एक है जिसे खुद सरकार ने हॉन्टेड घोषित किया है। यानी एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले रुकना कानूनन मना है। वैसे तो भानगढ़ से जुड़ी कई कहानियां हैं, पर उनमें सबसे परिचित कहानी उस जादूगर की है जिसका भानगढ़ की रानी पर दिल आ गया था। उसने रानी को अपना बनाने के लिए जाल बिछाया, पर उस जाल में खुद ही फंस गया। रानी ने उस जादूगर को कैद कर लिया। उस जादूगर ने भानगढ़ को खंडहर हो जाने का श्राप दिया और देखते ही देखते सारा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। कहते हैं रात होते ही भानगढ़ का वो वीरान किला जी उठता है। वहां का हर शख्स जो कब का कब्र की आगोश में समा चुका था फिर से जी उठता है। ये सच है या झूठ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि लोग कहते हैं जो लोग इस किले में रात होने के बाद रुके वो आज तक कभी यहां से वापस नहीं निकल सके। कहते हैं भानगढ़ के वीराने में भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। आज हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं पर रात होने से पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि जो रात होने से पहले नहीं लौटते वो भानगढ़ से फिर कभी नहीं लौटते।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। हमारे प्यारे श्रोतागण, आज हम लोग मिल करके याद करेंगे हिंदी फिल्म के संगीत जगत के महान संगीतकार और प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार जी को, जिनका संगीत रूह को एक अजीब सी सुकून देता है। इनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बांग्ला और हिंदी फिल्म संगीत के ये जानी मानी शख्सियत और एक फिल्म निर्माता भी थे और रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ थे। इनको हेमंत दा के नाम से जाना जाता था।

हेमंत दा का बचपन कोलकाता में बीता और प्रारंभिक शिक्षा वहां ग्रहण करने के बाद इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मगर बीच में ही इन्होंने ये पढ़ाई छोड़ दी अपने संगीत के रुझान के कारण। और 1930 में आकाशवाणी के लिए उन्होंने पहला बांग्ला गीत गाना।

1945 में हेमंत कुमार ने बेला मुखर्जी से विवाह किया, जो बंगाल की एक गायिका थी। हेमंत कुमार के पुत्र जयंत और बेटी रेणु थी। आगे चल के पुत्र जयंत का विवाह हिंदी की प्रसिद्ध अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से हुआ।

संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हेमंत दा ने बंगला संगीतकार शैलेंद्र दत्त गुप्ता से ली, उस्ताद फयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। शुरुआती दौर में उन्होंने गैर फिल्मी गीत गाए। 1944 में इन्हें पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में अपनी पहली फिल्म इरादा में गाने का मौका मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत में भी इन्हें गाने का मौका मिला।

हेमंत दा हेमेन गुप्ता जी के बुलावे पे मुंबई आ गए। 1951 में आनंद मठ में हेमंत कुमार ने संगीत दिया। आनंद मठ में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया वंदे मातरम आज भी श्रोताओं में जोश भर देता है। उन्होंने फिल्म नागिन में संगीत दिया और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का भी पुरस्कार दिया गया।

1951 में ही एसटी बर्मन के संगीत निर्देशन में इन्होंने जाल, हाउस नंबर 44 और 16 साल जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए जो काफी लोकप्रिय हुए।

50 की दशक में हेमंत कुमार ने बंगला और हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ गाने गाए। 1959 में फिल्में भी बनाई।

हेमंत कुमार ने अपने सफल करियर में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किया। उन्हें बांग्ला फिल्म नीला आके शेर नीचे के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला। 1989 में वे बांग्लादेश के ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड लेने गए। इन्होंने छोटी छोटी कई कहानियां भी लिखी हैं।

हेमंत दा के गाने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है अपना दिल तो आवारा बेकरार करके हमें न जाइए, याद किया दिल ने जैसे कई हिट गाने गाए और उनका म्यूजिक भी दिया।

हमारे हेमंत दा को द मैन विथ गोल्डन वॉइस कहा जाता था। वे अक्सर एक लंबी सफ़ेद शर्ट के साथ धोती पहनना पसंद करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय संगीतकार पंकज मलिक ही वो शख्स थे जिन्होंने हेमंत दा को अपनी आवाज़ पे भरोसा करना सिखाया था।

हेमंत दा की आवाज और संगीत इतनी जबरदस्त थी कि हर इंसान खुद को उनसे जोड़ लेता था। यही वजह थी जो मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी ने उनके लिए कहा था कि अगर भगवान भी जमीन पर आकर गाते तो हेमंत दा की आवाज में गाते।

1989 को ढाका में एक संगीत कार्यक्रम से लौटने के बाद हेमंत दा बेहद बीमार पड़ गए और बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहू मौसमी चटर्जी के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे, की कौष्टो, इतना दर्द। हेमंत दा की विरासत अभी भी उनके गीतों के माध्यम से हम सबके बीच में

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।